मर्यादित होने के कई सारे गुण हैं, जिसमें एक गुण ये भी है कि प्रभु श्री राम के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आने के उपरांत भी उन्होंने एकमात्र धर्म पत्नी यानी माता सीता का सदैव अनुसरण किया, जिनसे विवाह उन्होंने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर किया था। हालांकि कुछ कम प्रचलित कथाओं जैसे जैन रामायण में उनका उल्लेख अन्य पत्नियों के साथ भी मिलता है, पर मूल वाल्मीकि रामायण और धार्मिक मान्यता के अनुसार वे सीता के प्रति निष्ठावान रहे और उनका जीवन एक पत्नी व्रता का प्रतीक है जिसमें अन्य रानियों का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान श्री राम की एकमात्र पत्नी देवी सीता थी जो राजा जनक की पुत्री थी, जो की आदर्श पत्नी और धर्म पत्नी का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोक कथाओं और जैन रामायण जैसे ग्रंथ में राम के कई विवाह जैसे उत्तरा, वरुणी और लक्ष्मी के साथ बताए गए हैं, लेकिन ये मुख्य धारा की धार्मिक मान्यताओं और वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। राम ने सीता के प्रति अपनी निष्ठा यानी एका पत्नी व्रता का पालन किया और उनके जीवन को आदर्श के रूप में देखा जाता है, जहाँ वे केवल सीता के प्रति समर्पित थे। तो आइए हम भी अनुसरण करते हैं सियावर रामचंद्र का।

यूं तो श्री राम के बहुत सारे गुण हैं, पर श्री रामचंद्र की खासियत उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, आदर्शवादी व्यवहार, विनम्रता, धैर्य, न्यायप्रियता और प्रजावात्सल्यता में निहित है, जिन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा के रूप में हर रिश्ते में अनुकरणीय व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही अपने शांत, सौम्य और तेजस्वी चरित्र के कारण चंद्र कहलाए, जो शीतलता और प्रकाश का प्रतीक है।

अब मैं चर्चा करना चाहूंगी श्री राम प्रभु के उन गुणों के बारे में जो आज भी अनुसरण किए जाते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रचलित गुण मर्यादा पुरुषोत्तम होने का। वे हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन करते थे, जिससे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा, उन्होंने हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित किए, जैसे पिता की आज्ञा का पालन यानी वनवास, भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से प्रेम और एक निष्ठावान मित्र यानी सुग्रीव और निषाद राज की मित्रता, धैर्य और सहनशीलता, कठिन से कठिन परिस्थितियों जैसे वनवास और सीता के हरण में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, विनम्रता और सौम्यता। राजा होकर भी वे अत्यंत विनम्र और मिलनसार थे, उनका स्वभाव शीतलता प्रदान करने वाला था, इसलिए उन्हें चंद्र यानी चंद्रमा कहा गया। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक, वे एक न्यायपूर्ण और प्रजा के हित चाहने वाले राजा थे। सत्यनिष्ठा और वचन के धनी, वे अपने वचनों का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह पिता के वचन का पालन हो या फिर मित्र के साथ किया गया वादा। परोपकारी, वे दूसरों का भला करने वाले संत हितैषी थे। तेजस्वी और शक्तिशाली, वे सूर्य के समान तेजस्वी थे और दानवों का नाश करने वाले थे, लेकिन उनका तेज सौम्यता से युक्त था। कुशल संचारक और अनुशील, वे स्पष्ट बोलते थे और हर परिस्थिति के साथ खुद को ढाल लिया करते थे। तो इतने सारे गुणों से युक्त रहा जीवन हमारे प्रभु श्री राम का। उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इन आदर्शों से कुछ तो चुरा लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं श्री राम प्रभु के एक और गुणगान यानी भजन की ओर।

श्रोताओं, आपने श्री राम प्रभु का एक नाम बहुत ज्यादा प्रचलन में सुना होगा, रामचंद्र। आखिर इसका मतलब क्या है? रामचंद्र का मतलब है राम जैसा चंद्रमा, जो भगवान राम यानी विष्णु के अवतार और रामायण के नायक, और चंद्रमा यानी चंद्रमा शब्द को मिलाकर बना है। ये नाम दिव्य, शांत, आकर्षक और पवित्र गुणों का प्रतीक है, जो भारत में एक लोकप्रिय नाम और उपनाम है। राम दो शब्दों से मिलकर बना है, रमना यानी आनंद देना और दूसरा रम यानी समा जाना, जिसका अर्थ है परमात्मा या सर्वव्यापक। चंद्र, जिसका अर्थ है चंद्रमा यानी शीतलता, सौंदर्य और चमक। जिस नाम का अर्थ ही इतना सुंदर हो, सोचिए वो स्वरूप कितना प्यारा होगा।

श्रोताओं, ये नाम यानी रामचंद्र भगवान राम की शांति, सुंदरता और दिव्य गुणों को चंद्रमा के साथ जोड़ता है, जो उन्हें सुखदायक और आकर्षक बनाता है। ये नाम धार्मिकता, वीरता और पवित्रता का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। ये दक्षिण भारत में एक आम नाम है, एक उपनाम है, खासकर तमिलनाडु और केरल में, और पूरे भारत में लोकप्रिय भी है। ये भगवान राम के प्रति भक्ति और सम्मान को दर्शाता है।

वैसे तो श्री राम एक पूरा युग अपने अंदर समेट के चलते हैं। त्रेता युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता माने गए हैं प्रभु श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। उन्हें मर्यादा

प्रतागण जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए।

इनके कुछ और उपनाम भी हैं, जैसे राघव, दशरथी और रामलला, जिनमें सबसे प्यार से अगर हम किसी नाम से बुलाते इन्हें तो वो है रामलला, क्योंकि आज भी हम उन्हें एक तन्हे से, सौम्य, प्यारे से, कोमल बालक के रूप में देखना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का अवतार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर धन की स्थापना की और दुष्ट रावण का संहार किया। संक्षेप में कहें तो भगवान राम हिंदू धर्म के एक केंद्रीय चरित्र हैं, जो नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं, जिनकी कहानी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार है।

राम यानी अयोध्या की पावन भूमि पर जन्मा एक बालक जिसके चेहरे पर करुणा, हृदय में धैर्य और आचरण में धर्म था। वनवास मिला पर राम ने प्रश्न नहीं किया, सिंहासन छूटा पर सत्य नहीं छोड़ा, राज्य गया पर मर्यादा नहीं गई। वन में रहकर भी राम राजा थे क्योंकि उनका राज मन पर था, किसी अन्य पर नहीं। श्रोताओं, अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आज का राम। आज के युग में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रामू। पिता ने वादा किया था मेले ले जाएंगे, पर अचानक काम आ गया। रामू उदास हुआ पर बोला, पापा आप काम कीजिए, देश और घर पहले है। माँ ने पूछा, बेटा गुस्सा नहीं आया? रामू बोला, राम जी ने भी तो वनवास स्वीकार किया था। यही है आधुनिक युग का राम, कर्तव्य पहले, भावना बाद में।

श्रोताओं, श्री राम के जीवन से जो सीख मिलती है वो कुछ यूं है, माता पिता का सम्मान करें। आज के बच्चे सवाल करते हैं, राम ने स्वीकार किया था, सत्य का साथ दें। आज लोग सुविधा देखते हैं, राम ने धर्म देखा था, त्याग की भावना, आज मेरा अधिकार चलता है, राम ने मेरा कर्तव्य सिखाया, नारी सम्मान, सीता के लिए समुद्र पार किया, आज समाज को वही सम्मान चाहिए। तो अगर अपने जीवन को किसी काबिल बनाना है तो थोड़े से आदर्श हमें श्री राम के जीवन से अपने जीवन में उतारने चाहिए।

दोस्तों, आज का युवा कहता है मेरे सपने पहले, राम कहते हैं मेरे कर्तव्य पहले। आज का समाज कहता है जो आसान हो वही सही, राम कहते हैं जो सही हो वही करो। अगर हर घर में एक राम हो जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि राम को मंदिर में नहीं मन में बसाना है। राम दीप नहीं जीवन की लौ है, राम कहानी नहीं संस्कार है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे एक प्रश्न करूं। प्रिय श्रोताओं, आज सोचिए, अगर राम आज होते तो क्या वे मोबाइल छोड़ देते? क्या वे गुस्सा छोड़ देते? क्या वे सत्य का साथ देते? उत्तर मन से दीजिए, क्योंकि राम आज भी आपके और हमारे भीतर ही जीवन

चलते चलते यही प्रार्थना है कि हम सब अपने जीवन में थोड़ा सा राम बन सके। मैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा फिर मिलूंगी एक नई पहली किरण के साथ, जहां जीवन को दिशा मिले और मन को शांति। जय श्री राम। राधे राधे। खुदा हाफिज। रब राखा तो सब राखा।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की

0: क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग, कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज गोंडा।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: अरे झब्बू।
1: हाँ सर।
0: अरे एक सवाल का जवाब दो।
1: बताइए सर।
0: ये बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है?
1: अरे जमीन पर सर।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

आई होप कि आपने इस गाने का अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर कौन सा सॉन्ग है ये। पता है ना कौन सा सॉन्ग है? अगर पता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इस सॉन्ग को एंजॉय आप करेंगे बहुत आराम से, जैसे चाय को करते हैं सिप सिप, उसी तरह से ये सॉन्ग एंजॉय करते हुए जब हम वापस आएंगे। तो आने के बाद आपको हम बताने वाले हैं आज का थॉट ऑफ द डे आखिर क्या है और क्या पैगाम लाया है ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में।

0: हाँ जी, सुबह ही फाइनली वक्त आ गया है आपको बताने का कि आज का मॉर्निंग वाला थॉट ऑफ द डे क्या आया। बिल्कुल आज की मॉर्निंग की तरह। अब आज की मॉर्निंग तो आपने देख ली है। क्या कहा, अभी बाहर भी नहीं देखा? अरे उठ जाइए जनाब, वक्त हो गया है आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो का। सो चलिए भाई, आपको बताते हैं कि आज का मॉर्निंग वाला थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का थॉट आपसे क्या कह रहा है आपके अपने गुड मॉर्निंग गुंडा शो में, क्योंकि आज जो दिन है वो है ट्यूसडे, यानी कि मंगल का दिन। सो थॉट भी कुछ वैसा ही होने वाला है आपके ट्यूसडे स्पेशल शो जैसा।
1: Now you're listening Good Morning Koda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई कुछ ऐसे शख्स भी देखे हैं क्या, जब वो बोले तो आप समझ ना पाए कि क्या बोला है और क्या कहा है? इसलिए नहीं कि उन्हें बोलना नहीं आता, या इसलिए ये कि आप उस वक्त अलग मूड में थे, कहीं और खोए हुए थे? नहीं, खोए तो थे आप, लेकिन सामने वाले की बातों में नहीं, बल्कि उसके कामों में। होता है कि कई बार आपके कामों को इतना गहरा प्रभाव होता है कि सामने वाला आपकी कही बातें नहीं सुन पाता। जरा सोचिए, ऐसे कौन लोग होते हैं जिनके काम, जिनकी हरकतें बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इतनी अलग होती है कि आप उनकी कही हुई बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते, और जब वो पूछते हैं या कहते हैं, सवाल करते हैं, तो आप कहते हैं सॉरी सुना ही नहीं मैंने, और फिर सामने वाला पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कहाँ है ध्यान, क्या हुआ, आप कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, ध्यान नहीं, यहीं पे होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका काम इतना शानदार होता है कि शायद हम उनके काम में इतना तल्लीनता से उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते समझते हैं, कि हम भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनका जेस्चर, और जो कुछ भी वो उस वक्त उस लम्हे में कर रहे होते हैं, इतना अच्छा भी कई बार कई लोगों का काम होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, और शायद आपको भी ऐसा कोई मिला हो, या आप किसी के लिए ऐसे हों जो शख्स आपको सुन तो ना पाता हो, लेकिन आपके काम को देखकर, आपकी हरकतों को देखकर वो एकदम तल्लीन हो जाता हो और उसके बाद सुन ना पाता हो। सो ये बड़ा ही प्यारा थॉट है, उन लोगों को ये शायद डेडिकेट कर देने वाला है जो लोग ऐसे हैं। अगर आपके लिए भी ऐसा कोई शख्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी बातों को कम सुन करके आप उनके कामों को देख करके बहुत मुतासर होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, तो ये थॉट आप उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। फिलहाल मेरी लाइफ में ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी को ये थॉट डेडिकेट कर रहा हूं कि भाई आपके कामों का इतना ज़्यादा असर गहरा होता है कि मैं आपकी कही बातें सुन ही नहीं पाता। यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। और कितने प्यारे होते हैं वो लोग, क्योंकि बातें तो पूरी दुनिया कर रही है, बता तो हर कोई रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों से, अपनी हरकतों से, अपनी एक्टिविटीज से लोगों के दिलों में रह जाते हैं। उनका कहना नहीं होता है किसी चीज के बारे में बहुत, लेकिन उनकी छोटी छोटी कोशिशें, उनका बहुत छोटा सा जेस्चर भी नजर आता है, और वो दिखाता है कि वो बोलते नहीं है इस चीज के बारे में, लेकिन वो खुद हैं ऐसे। एक दौर कोई कहता है कि सभ्य होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बोलने देना चाहिए, लेकिन ऐसा करता कौन है? वेरी फ्यू पीपल, राइट? हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं जिनमें से हम कुछ को बताते हैं कि यार ये बंदा बड़ा बढ़िया, या ये बंदी क्या बात है इसमें। क्यों? क्योंकि वो बोलने पे यकीन नहीं करते, वो अपने कामों से करते हैं, इसीलिए हम शायद उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि आज के दौर में रिश्ते नहीं हैं, कोई समझता नहीं है, कोई अपना देख रहा है, ऐसे वक्त में हम जब ऐसे शख्स से मिलते हैं, ऐसे शख्स को देखते हैं कि बिना किसी परिणाम के वो किसी की मदद कर रहा है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इंसान अपना बहुत कुछ दे रहा है, तो हमको लगता है कि यार ऐसा शख्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि हमको ये पता होना चाहिए कि ये शख्स आप में भी है, मुझ में भी है। शायद किसी एक के लिए हो, या दो तीन, या कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन है। और ये जो खूबी है, ये बड़ी प्यारी है,
इसका प्रभाव इतना होता है कि कामों में लोग खो जाते हैं और आप अगर कुछ बोलते हैं तो उसको सुन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके कामों से वो इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आपकी कही हुई बातें बहुत आगे होती है, वो आप तक पहले ही पहुंच चुके होते हैं। सो ये है आज का थॉट ऑफ द डे। सो चलिए अब चलते हैं अपने अगले गाने की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आज के ट्यूसडे मॉर्निंग थॉट ने आपके दिन को काफ़ी स्पेशल बनाने में हेल्प की है, और ये जो स्पेशल फीलिंग है इसको हम पूरे दिन लेकर के आज चलने वाले हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान आपके गोंडा FM पर। FM वो जो आपको फील होता है।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, और आपका एक बार वापस से वेलकम करते हैं और साथ ही एक बार मॉर्निंग विश करते हैं फ्रिक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का। फिलहाल जो लोग एप्लीकेशन से सुनते हैं यानी एंड्रॉयड यूज़र्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और आईफोन यूज़र्स ऐप स्टोर से डाउनलोड करके, उसी ऐप पे चैट का ऑप्शन मिलता है जो कि लाइव आपके आरजेस तक आप जो कुछ लिखते हैं वो पहुंच जाता है। फिलहाल हमारे कुछ लिसनर्स ने कुछ बातें लिखी है, मैसेजेस आ गए हैं। सो मैसेजेस में आपकी तरफ से आई हुई विशेज और आज के थॉट का रिएक्शन, चलिए दोनों बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Kota, with your favorite, Ajay Khan.

चैट बॉक्स पे आज सबसे पहले बाजी मारनी हमारी प्रीति जी ने बहराइच से, जल्दी से आके बजर प्रेस कर दिया और लिखा, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड इसके बाद जो है आशु जी हैं लखनऊ से, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। हमारे धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवास विकास और आपने भी लिखा है, अदनान सर गुड मॉर्निंग, सारी दुनिया की दौलत मिलकर भी हम एक ज़िंदगी नहीं ख़रीद सकते, फिर भी दौलत के खातिर पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं। क्या बात कही, वाह वाह वाह वाह, कि भाई हम सब मिल करके भी एक दौलत को मिला करके भी एक ज़िंदगी नहीं ले सकते, ख़रीद सकते, फिर भी दौलत के खातिर पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं, क्या बात है। एंड आपने लिखा है कि भाई चैट रूम में आने वाले सभी लोगों को आपकी तरफ से नमस्ते, थैंक यू सो मच। सो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज मौसम देख करके न जाने क्यों बड़े अच्छे से ख्याल आने लग जाते हैं, और स्पेशली जब आपको पता हो कि भाई आपका निकलना आप कहीं होने वाला है और कहीं आप जाने वाले हैं, तो ऐसा लगता है जिस जगह आप जाने वाले हैं वहाँ का आप प्लानिंग करने लग जाते हैं कि वहाँ पहुँच करके सबसे पहले आपको क्या खाना है, क्या होने वाला है जो आपके इस मॉर्निंग को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बना देगा, और भी ज़्यादा टेस्टी बना देगा।

हाय क्या बात है भाई, इतने प्यार से अगर कोई कहेगा तो मोहब्बत होना तो लाजिम है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग चौकार जी अदनान। इसलिए नहीं कि कुछ और बात है, बल्कि बस इसलिए कि आपको बताना है कि भाई वापस से हम आ रहे हैं लेकर के आपकी गोंडा अपडेट्स, यानी सिटी में क्या कुछ चल रहा है ये बताने के लिए। सो आर यू रेडी? ऑब्वियस सी बात है कि आप रेडी होंगे। सो चलिए फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं अभिजीत सावंत की आवाज़ में, और उसके बाद आते हैं बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है गोंडा में आरजे अदनान की आवाज़ में।

0: सुबही, चलिए इसी बातचीत के बीच में हम आपको बता दें कि आ गई है आपकी सिटी की अपडेट और आपको ले चलते हैं अपडेट्स की तरफ, ताकि हम भी जान पाए कि हमारे शहर में क्या कुछ चल रहा है और हमारे काम की जो चीज़ें हैं उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और साथ ही उन तक हम ज़रूर ये बातें पहुंचा दें जिनके काम की हमें लग रही हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

वो बच्चे जिनका एडमिशन सिक्स्थ में नवोदय में होना है उनके लिए अपडेट्स है उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया है। सो प्रभारी प्राचार्य ने बताया भी है कि जो भी इंटरेस्टेड और पात्र स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्रा, 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो ज़िले के निवासी और सेशन 2026-27 में कक्षा 5 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आवेदन के पात्र हैं। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ज़रिए ही किया जा सकता है। चलिए दूसरी बात जो आ रही है वो आ रही है निषाद राज बोट सब्सिडी योजना का आवेदन भी शुरू हो गया है। सो मत्स्य विभाग ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना की लिए जो विभागीय पोर्टल है दोबारा खोल दिया है। उसमें जो पात्र लाभार्थी हैं 9 से 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की जो इकाई लागत है, पात्रता है, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है वो विभागीय पोर्टल पर अवेलेबल है। सो पहले के सालों में रद्द या फिर अभी तक जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मत्स्य पालक जो है विकास अभिकरण विकास भवन या मोबाइल नंबर जो कि बता रहा हूँ मैं, उसको भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग हैं यानी मछली पालन करते हैं उनके लिए निषाद राज बोट सब्सिडी योजना चल रही है। नंबर है 6393935329 6393935329 ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। नंबर एक बार वापस से हम बता रहे हैं 6393935329 ये निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के लिए नंबर दिया जा रहा है। वो लोग जो मछली पालन से जुड़े हुए हैं और सब्सिडी के लिए चाहते हैं तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सारा प्रोसेस समझते हुए आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो लगातार उफनाती सरयू का जो जलस्तर है वो बढ़ने की आ रही है। खतरे के निशान से महज 97 सेंटीमीटर दूर है कटान से, चूंकि कई बीघे की फसल जो है अभी तक बर्बाद हो चुकी है। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के चिंतित हैं हमारे आसपास के जो सीमावर्ती किसान हैं, स्पेशली उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं इससे। इसके अलावा आपको बता दें फिलहाल प्रशासन ने तालाब और झील के पास जाने से मना किया है, क्योंकि ज़िले में मगरमच्छ के हमलों की बढ़ती जो घटनाएं हैं उसको देखते हुए वन विभाग के लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। सो प्रभागीय वन अधिकारी यानी DFO ने भी तालाब झील नदी और बाकी जलाशयों के किनारे जाने वाले लोगों से खास करके बहुत अलर्ट रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर हादसे की वजह बन सकती है। सो DFO ने बताया कि हाल ही के दिनों में मगरमच्छों के हमले की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में जलाशयों के आसपास रहने वाले जो ग्रामीण हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए बोला है। ख़ासकर सुबह और शाम के वक्त मगरमच्छ ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, सो इसलिए सुबह और शाम का वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने का है। एंड इसके अलावा बच्चों को आपको अकेले नदी में नहीं जाने देना है, तालाब हो झील हो, क्योंकि अगर किसी जलाशय में मगरमच्छ दिखाई भी देता है तो उसे भगाने या पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। दूर खड़े हो जाएं और इसकी जो सूचना है वो तत्काल आप वन विभाग को दे दें, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और वो जो भी मगरमच्छ है या जो भी जीव है जलिए उसको भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाए। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां तार टूट कर गिरने से मौत हुई है। अभी फिर एक बुज़ुर्ग की मौत हो चुकी है। ये घटना है मुजहना गोंडा से आई है, विशंभरपुर गांव के पास में हादसा हुआ है। सो 4 दिन से टूटी पड़ी थी हाई टेंशन लाइन, उसकी चपेट में आकर के बुज़ुर्ग की मौत हो गई है। सो बताने का सेंस बस इतना सा है कि इस वक्त ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जब भी आप कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे हों और स्पेशली आप देख लें ऊपर कि तार डिस्टर्ब्ड है, नीचे आया हुआ है, ज़मीन पर है,
तो प्लीज़ उस रास्ते को आप चूज़ ना करें, सेफ्टी के सारे मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आगे जाएं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, इसलिए ऐसी घटनाओं के प्रति हम आपको लगातार बताते रहते हैं ताकि आप में भी कहीं ये बात आ जाए कि भाई निकलते हुए अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंश्योर करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसके साथ ही साथ आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो बताती है कि हर दिन 14 लोग हो रहे हैं साइबर ठगी के शिकार। जी हाँ, सो ज़िले में साइबर अपराध अब रोज़मर्रा की बड़ी चुनौती बन चुका है। इस साल अब तक लगभग 6.5 महीने में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP पर 3,100 शिकायतें दर्ज हुई है, यानी औसतन हर रोज़ 14 से ज़्यादा लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस की जो सक्रियता से है, इस अवधि में करीब 6.82 करोड़ रुपए रिफंड भी कराए गए हैं, यानी 6.82 करोड़ रुपए। साइबर सेल के अधिकारियों के हिसाब से पहले ठग बैंक KYC, बिजली बिल, OTP या APK फाइल भेजकर लोगों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब उनका पूरा फोकस इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन ट्रेडिंग पर आ गया है। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए लोगों को कम वक्त में कई गुना मुनाफे का सपना दिखा करके लाखों करोड़ों रुपए ठगी की जा रही है। 2024 में अगर हम बताएं तो 3,147 कंप्लेंट्स आई थी, इनमें से 2,10,00,000 रुपए वापस कराए गए थे। सो बदल गया है इस वक्त साइबर ठगी का पूरा नेटवर्क, आपको हम बता दें। चूँकि साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक अब ठग सीधे बैंक खाते या OTP नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता है कि आप जानते हो। सो पहले सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से विज्ञापन दिखाकर लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता है कि भाई आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, फिर वहाँ पर फर्जी स्क्रीनशॉट और बाकी लोगों की मुनाफे की तस्वीरें साझा करके माहौल बनाया जाता है कि वाह देखो भाई किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद पीड़ित को जो है एक ऐप या वेबसाइट पर अकाउंट खुलवाया जाता है जहां निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सो कई मामलों में शुरुआती छोटी रकम निकालने भी दे दी जाती है ताकि भरोसे को जीता जा सके और मजबूत हो सके। इसके बाद बड़ी रकम जब इन्वेस्ट कराते हैं तो उनका निकलना बंद हो जाता है, यानी वो फिर वहां पे फ्रॉड हो जाता है। सो महिलाएँ हैं या बिजनेसमैन हैं या सरकारी कर्मचारी ज़्यादा निशाने पर हैं। साइबर सेल के हिसाब से ठग जो हैं अलग अलग वर्गों को अलग अलग तरीकों से निशाना बनाते हैं। महिलाओं को घर बैठे कमाई और पार्ट टाइम जॉब का लालच दिया जाता है। व्यापारियों को कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा और सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा आय का सपना दिखा करके इसमें इन्वेस्ट कराया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारी और जो पेशेवर लोग हैं उनमें भी

लिंक पर क्लिक करने से आपको बचना होता है। अगर किसी तरह की साइबर ठगी हो जाए तो बिना देर करे हुए 1930 यानी 1930 साइबर हेल्पलाइन पर या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना होता है। साथ ही जो संबंधित बैंक है उसको तत्काल आपको इन्फॉर्म करना होता है ताकि खाते को फ्रीज करके बची हुई जो आपकी रकम है उसको बचा लिया जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआती कुछ घंटे साइबर धोखाधड़ी मामलों में सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, यानी स्टार्टिंग का जो टाइम होता है। सो करना क्या होता है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी और प्लेटफॉर्म का जो है वो वेरिफिकेशन करना होता है। सिर्फ और सिर्फ जो अधिकृत हैं यानी जो ऑथराइज्ड ऐप हैं उनको ऐप स्टोर से ही या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। साइबर ठगी होते ही 1930 पर कॉल करना है फौरन बैंक और एनसीआरपी पोर्टल पर तुरंत आपको शिकायत दर्ज कराना होता है। अनजान लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि ये अनजान लिंक हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार किसी दोस्त की आईडी से आए। और ये हमने आपको बताया था कि वेब व्हाट्सएप को किस तरह से निशाना बना करके ख़ास लोगों को भेजा जाता है जिससे कि वो यकीन करके और खोल दे तुरंत और उससे उनके सिस्टम को रिमोट कर लिया जाता है, सारी जानकारी फिर वो निकाल लेते हैं और देख सकते हैं। सो ज़्यादा मुनाफे की लालच में बिना जांचे पैसा निवेश आपको नहीं करना होता है क्योंकि यही होता है कम वक्त में आपको ज़्यादा फ़ायदा देने की बात बताई जाती है और कहीं ना कहीं इसीलिए हम ऐसे साइबर जो अपराधी हैं उनके जाल में भी कई बार आ जाते हैं। सो फिलहाल इसके साथ ही साथ अगली जो अपडेट है वो जानकी नगर में उमड़ी थी भीड़ और इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया गया था क्योंकि खाद के लिए घंटों इंतज़ार भी किया था और कई किसानों को खाली हाथ भी लौटना पड़ा था क्योंकि अलीपुर में जो है ई पॉस मशीन वो ख़राब हो चुकी है। फिलहाल माधवगंज और धानीपुर में शुरू हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड अब चलते हैं इसके बाद अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो है योग शिविर की। आज सुबह 7 बजे राम जानकी धर्मशाला रानी बाजार में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। सुबह 10 बजे से आवास विकास कॉलोनी में ताइक्वांडो पदक जीतने वाले बच्चों को सम्मानित किए जाने का भी एक प्रोग्राम ज़रूर रखा गया है। और इसके अलावा फिलहाल 747 यंगस्टर्स में 107 को मिला है नियुक्ति पत्र। जी हाँ, ITI में जो हमने बताया था रोज़गार मेला उसमें 12 कंपनीज़ ने करीब 500 वैकेंसीज यानी 500 पदों के लिए इंटरव्यू लिए हैं जिसके बाद 12 कंपनियों के इसमें पार्टिसिपेशन को बताया था हमने। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि पॉलिटेक्निक से जुड़ी दूसरी अपडेट आ रही है जिसमें दूसरे फेज़ में 332 सीटों का आवंटन किया गया है। सो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यानी JEE CUP की तरफ से पॉलिटेक्निक प्रवेश के दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद 332 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। सीट आवंटित होने के बाद अब जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 14 जुलाई तक निर्धारित शुल्क पर जमा करके अपना प्रवेश करा सकते हैं। इससे बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स मनपसंद अपने संस्थान और ट्रेड में एडमिशन का मौका उनको मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक में इस साल 5 मेन शाखाएं हैं जिसमें इंजीनियरिंग शाखाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। हर एक ब्रांच में 75-75 सीटें अवेलेबल है और पहले चरण की जो काउंसलिंग है उसमें 142 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है जिसमें कुछ छात्र छात्राओं ने बेहतर कॉलेज या ट्रेड मिलने की उम्मीद में फ्लोट ऑप्शन चुना था। दूसरे फेज़ में इन स्टूडेंट्स को भी शामिल करते हुए शासन ने कुल 332 सीटों का आवंटन किया है। सो प्रभारी प्रधानाचार्य जी ने बताया है कि पॉलिटेक्निक में जो है क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन और मॉडर्न रिसर्च और बेहतर कैंपस प्लेसमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो डिप्लोमा के बाद रोज़गार के साथ साथ आप हाई लेवल एजुकेशन में भी कई सारे उसमें मौके मिलते हैं। सो इस साल भी पॉलिटेक्निक का जो पाठ्यक्रम है उसके प्रति स्टूडेंट्स का रुझान पहले की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो ये बातें हैं एंड साथ ही साथ आपको हमने कई सारी बातों को बताया। आई होप कि ये
जो अपडेट्स हैं इसमें से काफ़ी

आपकी काम की है और जाहिर है आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा भी उठवाते हैं। सो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ले चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और अब बातों का पिटारा तो खुल चुका है, कई सारी बातें जो आपको हमें बतानी है इसी ट्यूसडे मॉर्निंग शो में। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो भाई, फिलहाल इतनी सारी बातों के बीच में मुझे लगा क्यों ना आपको ले चला जाए बॉलीवुड की तरफ। सो अभी है बहुत सारी ऐसी कई सारी मूवीज़ आया करती है जिनको हम अपने किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर मूवी के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल, वहाँ देखते हैं। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं किसी भी हालिया मूवी रिलीज जो ही होती है उसके बारे में, तो हमको एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि भाई हमारे टेस्ट की मूवी है या नहीं। तो आइए चलते बताते हैं तुम्बाड मूवी में आलिया की एंट्री के बारे में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो बता दे भाई, तुम्बाड़ 2 जो कि अभी बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म तुम्बाड़ 2 का हिस्सा बन गई हैं और मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। सो फिल्म में आलिया एक अहम किरदार निभाएंगी। इससे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म से जुड़ने की घोषणा की थी। सो तुम्बाड़ का बनना था हिस्सा इनके लिए ख़ास, चूँकि फिल्म से जुड़ने पर आलिया भट्ट ने कहा कि पहली बार तुम्बाड़ देखने के बाद से ये फिल्म मेरे जहन पर बसी हुई है। बहुत कम फिल्में ऐसी दुनिया रच पाती हैं जो आपको पूरी तरह भीतर भींच लें। सो इससे भी कम फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज़ के कई साल बाद भी लोगों के दिलों और दिमाग पर बनी रहती है। ऐसे में उस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद ख़ास है। सो आलिया ने आगे कहा कि मैं सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। लंबे वक्त से मैं दोनों कलाकारों की प्रशंसक रही हूँ। अब बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब दर्शक देखेंगे कि हम सब ने मिलकर क्या बनाया है। सो आपको बता दें कि भाई तुम्बाड़ 2 में आलिया भट्ट पहली बार सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नज़र आने वाली हैं। सो कई सालों बाद लौटे हैं बोकाड़िया। जी हाँ, रक्तांचल 3 में भी होने वाली है रिलीज। सो आपको बता दें कि हॉलीवुड फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी 17 जुलाई 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। सो इसी हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म पर भी कई नई वेब सीरीज और फिल्में जो है वो हमारे दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है। सो आपको बताते हैं, इस हफ्ते OTT पर कई नई वेब सीरीज और फिल्में दस्तक देंगी जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा की भरमार होगी। तो चलिए वन बाय वन करके आपको हम बताते हैं। यानी कहीं ना कहीं वेब सीरीज अगर आप देखने के शौकीन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते कौन कौन सी नई वेब सीरीज आ रही है और किस किस जॉनरा की है। यानी जो आपका फेवरेट जॉनरा होगा, मन पसंदीदा, उसको आप देखेंगे। ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक भी हम लेना चाहेंगे और उसके बाद वापस से आकर बताते हैं कि भाई आप कौन कौन सी ऐसी मूवी है वेब सीरीज में जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत बड़ी एक ऑडियंस है जो वेब सीरीज देखना पसंद करती है और वेब सीरीज का भाई अपनी स्पेशलिटी है, कई सारे पार्ट्स में भी होती है और अपने तरफ बांधे रखती है। सबसे अच्छी बात ये रहती है। सो ऐसी कई सारी वेब सीरीज़ को शायद आप भी जानते हों और स्पेशली जब हम बात करते हैं पंचायत जैसी वेब सीरीज़ तो देखा ही हुआ होता है आपने, मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ भी आपने देखा ही हुआ होता है। सो ऐसे कई सारी वेब सीरीज़ इस हफ्ते आ रही है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, कौन कौन सी है आइए बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, मत आजमा रे।

0: हाँ जी, सो भाई हमने कहा था आने के बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन सी इस वीक वेब सीरीज आ रही है। आपको जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप भी दिलचस्पी के साथ देखते हैं वेब सीरीज अपने जॉनरा की जो आपका फेवरेट है, सो चलिए बताते हैं कि आखिर किस जॉनरा की कौन सी वेब सीरीज इस वीक OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है धमाका मचाने।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो सबसे पहले हमने आपको बताया रक्तांचल सीजन 3। जी हाँ, रक्तांचल सीजन 3 इस हफ्ते रिलीज हो रही है। रितम श्रीवास्तव की निर्देशित ये सीरीज 16 जुलाई 2026 से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी। सो इसकी कहानी जो है वो सिद्धार्थ ने लिखी है। पूर्वांचल के माफिया की असल कहानी पर बनी इस वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2020 में और दूसरा 2022 में आया था। इस तीसरे सीजन को दर्शक बिना किसी सब्सक्रिप्शन के सीरीज एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरी बेगम। 80 और 90 दशक में तेरी मेहरबानियां और आज का अर्जुन जैसी हिट फिल्में देने वाले निर्माता, लेखक और निर्देशक केसी बोकाड़िया लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। सो इनकी मूवी तीसरी बेगम वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी। ये 18 जुलाई 2026 से स्ट्रीम होगी। इसके बाद मर्डर 121। जी हाँ, इसने तो नाम से ही साफ कर दिया है कि ये एक मर्डर मिस्ट्री है। सो अमेरिका के दशकों पुराने अनसुलझे मर्डर केस पर आधारित ये इन्वेस्टिगेशन सीरीज फिलहाल सिर्फ 3 एपिसोड के साथ रिलीज हो रही है। इसमें एलेक्स कैंपबेल लीड रोल में है और 13 जुलाई से ये सीरीज प्राइम वीडियोस पर रिलीज हो रही है, यानी कल से हो गई है। एंड इसके अलावा आपको हम बता दें, राइड और डाई। सो ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है। दो दोस्तों की जिंदगी पर बनी ये सीरीज 15 जुलाई से यानी कल से अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकेगी। इसमें हन्ना वार्डिंगहैम और ऑक्टेविया स्पेंसर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके बाद है डिजायर। जी हाँ, ओटीटी लिस्ट में डिजायर भी है। ये 17 जुलाई को 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस फिल्म में लुडविका पालेटा और जोस मारिया याजपिक जैसे कलाकार हैं। सो ये फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी पर बेस्ड है जिसमें एक स्विमिंग कोच के आने से गहरा और ख़तरनाक भावनात्मक मोड़ आता है। इसके अलावा आपको बता दें 23,000 लाइव्स। जी हाँ, ये जर्मन ड्रामा फिल्म है जो 17 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ये फिल्म जुगेंड रेटेट नाम के युवाओं के ग्रुप पर सच्ची कहानी पर बेस्ड है जिन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए एक पुराना जहाज खरीदा और भूमध्य सागर में 23,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी। सो इस बार इस हफ्ते जिस तरह से रिलीज़ हो रही है ये वेब सीरीज़ अलग अलग जॉनरा की, सो इसमें ज़्यादातर में हमको क्राइम और सस्पेंस मिलने वाला है। इसके अलावा डिज़ायर जैसी मूवीज़ भी है और 23,000 लाइव्स अमेजिंग स्टोरी है, रियल लाइफ पर बेस्ड है। आई होप कि भाई इस हफ्ते भी जो वेब सीरीज़ के दीवाने हैं वो वेब सीरीज़ देखने वाले हैं और इस बार वेब सीरीज़ अलग अलग फ्लेवर में आपको मिलने वाली है, यानी आपको एंटरटेन करने वाली है। फ़िलहाल बने रहिए आप गोंडा FM पर क्योंकि आपका एंटरटेनमेंट चलता रहेगा और बहुत सारी बातें भी चलती रहेगी अपने गुड मॉर्निंग गोंडा में RJ अदनान के साथ इस शो में, क्योंकि अभी कई सारी बातें हैं जो आपसे हमें करनी है, आपको बतानी है आपके ही गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स, ऑलवेज। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की ये बातें, अलग जो अनसुनी अनकही बातें हैं। लेकिन उससे पहले ये सॉन्ग।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
7: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
8: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
7: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
9: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
10: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: एक चीज की जो भरमार है वो है स्ट्रीट फूड की। हम कहीं भी अब जा रहे हैं, फिलहाल हमने ये देखा था बड़े शहरों से शुरू हुआ था और आसपास में बताया था लखनऊ में ये कल्चर बहुत तेजी से बहुत पहले फैल गया था कि भाई रोड साइड किनारे ठेले लगे हैं और शाम में होते ही वहाँ भीड़ लग रही है, लोग खा रहे हैं। 1090 एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसी तरह से गोंडा में भी अब कई सारे एरिया हो गए हैं, स्पेशली आप जब लखनऊ रोड पर से चाय विभाग के पास में होते हैं तो वहाँ देखते हैं, आप अम्बेडकर चौराहे के पास में देखते हैं, आप रानी बाज़ार के पास में भी देखते हैं, यानी अलग अलग तरफ किसी भी रोड पर जाइए एक एरिया ज़रूर अब हर रोड पर मिल रहा है जहाँ स्ट्रीट फूड का कल्चर है। रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कई बार तो भाई सेल्फी लेने और कंटेंट बनाने के लिए भी हम निकल पड़ते हैं अपने शहर के कई सारे रेस्टोरेंट्स में या फिर जाते हैं ठेलों पर खाते हैं। लेकिन अब बात है काम की। काम की बात क्या है कि अगर गंदा खाना कोई बना रहा है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि गंदा खाना मतलब सीधा सीधा आपकी हेल्थ से खिलवाड़, जितने लोग उसको खा रहे हैं उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। सो अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं तो आप सोचते हैं करना क्या है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज कि ऐसा देखने के बाद आपको करना क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

सो भाई गंदा खाना अगर कोई बना रहा है तो उसको महंगा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि FSSAI के एक ऐप पर अगर एक फोटो अपलोड कर दिया तो एक्शन ले लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। सो, जैसा कि हमने बताया भाई, हम लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं खाने पीने निकलते हैं। सो, फिलहाल इसी को देखते हुए कि लगातार मिलावट हो रही है या गंदा खाना है, सो, कई बार ऐसा होता है कि खाने में ऐसी कोई मिलावट नहीं है, ऐसा कुछ मिलाया नहीं जा रहा, लेकिन गंदगी से बनाया जा रहा है। अब गंदगी से बनने का मतलब इतनी सारी बीमारियाँ हैं जिससे कि बहुत बड़ा ख़तरा आता है हमारे उस खाना को खाने से जो गंदगी से बना हो। स्पेशली जाहिर सी बात है घर में तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन कई जगहों पे, कई स्टॉल्स में, कई ठेलों पर, कई रेस्टोरेंट्स में, कई होटल्स में ऐसा भी देखा गया है कि भाई कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है। मतलब आए दिन कोई ना कोई वीडियो, तस्वीर वायरल होती रहती है। सो फिलहाल इसी के मद्देनज़र रखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलावटी और अस्वच्छ जो भोजन है उसके खिलाफ कार्रवाई को तेज़ करने के लिए फूड सेफ्टी कॉन्टैक्ट ऐप लॉन्च किया है। क्या है ऐप का नाम? फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। जी हाँ, FOOD फूड, SAFETY, CONNECT ऐप। सो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए होगा क्या? दरअसल इस ऐप के जरिए आम नागरिक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और स्ट्रीट फूड स्टॉल पर मिलने वाले गंदे या ख़राब खाने की शिकायत सीधे फूड सेफ्टी विभाग तक पहुंचा सकते हैं। अगर खाने में मिलावट, ख़राब क्वालिटी, गंदी रसोई, मक्खी, कॉकरोच की मौजूदगी या बिना साफ सफाई के खाना बनाने की तैयारी की जा रही हो तो उसकी फ़ोटो और बाकी जानकारी ऐप पर अपलोड की जा सकती है। सो शिकायत दर्ज करने के लिए ऐप्स इंस्टॉल करके संबंधित जो स्थान है उसकी फ़ोटो, उसका पता, शिकायत का जो डिटेलिंग है कि इसमें करना क्या है, उसको सबमिट करना है। शिकायत सीधे जो जुड़े हुए क्षेत्र के फूड सेफ्टी अधिकारी हैं वहां तक पहुंच जाएगी। FSSAI का मानना है कि इस पहल से मिलावटी और गंदा खाना बेचने वालों पर तेज़ी से कार्रवाई होगी और होटल रेस्टोरेंट में साफ सफाई और उसकी क्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। इससे कंज्यूमर्स की जो पार्टिसिपेशन है बढ़ेगी और देश में फूड सेफ्टी सिस्टम और मजबूत होगा। सो पहल तो ये एक अच्छे कॉज के लिए बनाई गई है और उम्मीद है कि ऐसा कुछ अगर हम कभी देखते हैं, कहीं कोई गंदगी देखते हैं या कोई मिलावट करते हुए देखते हैं, तो पहले से ही हमारे फ़ोन में फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप होना चाहिए। जी हाँ, अगर ये ऐप है तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स ये हमारे लिए बहुत काम का होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई हम भी निकलते हैं और अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे हम भी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम गंदा खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, राइट? तो इसलिए इससे बचने के लिए हम इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स तक, उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचा सकते हैं जो खाने के बहुत शौकीन हैं और स्पेशली अक्सर वो बाहर भी खा लिया करते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप इस तरह से कुछ भी देखते हैं, कोई गंदगी देखते हैं या कोई मिलावट करते हुए पाते हैं, उसकी आप वीडियो या आप फोटो कैप्चर कर लेते हैं, तो आप इस ऐप पर आ कर के ऑफकोर्स कर सकते हैं शिकायत। इस ऐप पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी यहाँ पर आप बता देंगे कि क्या हुआ है, उसकी फ़ोटो, उसकी जगह, और जो भी संबंधित क्षेत्र के फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उन तक ये बात पहुँच जाएगी। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है और ऑपरेटर जी के ज़रिए FSSAI का फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाल दिया गया है, यानी नाम लिख दिया गया है। इसको आप प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर ऐसे किसी भी जगह निकल के खाना खाते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ देखते हैं तो आप इसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इस तरह से आपकी ही नहीं, उसके बाद उस हॉस्टल और रेस्टोरेंट में जो भी कार्रवाई होगी उसकी वजह से वहाँ खाने के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी का इसमें फ़ायदा होगा। यानी उसके बाद जब इंसान एक बार उस पर कार्रवाई होती है तो
कहीं ना कहीं फिर उसको अपनी चीज़ों को बेहतर करनी ही पड़ती है और इससे क्वालिटी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, तो इसलिए शायद हमको इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए। फिलहाल आई होप कि ये जानकारी बहुत ज़्यादा आपकी काम की है, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी ज़रूरतें सच में पड़ जाती हैं। और ये बात तो सही है कि हम भी अक्सर निकलते हैं और खाते रहते हैं, सो कई जगह आपकी अगर कहीं निगाह पड़े कि कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप उसकी सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं। और हमने आपको बता ही दिया कि भाई कंप्लेंट कैसा होना है, यानी फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर जा करके आपको उसमें डिटेल्स देनी है और उसके बाद वो सीधे पहुंच जाएगा उस संबंधित रेस्टोरेंट या ढाबे या होटल या स्ट्रीट फूड, कोई ठेला कुछ भी ऐसा है, वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। और इस तरह से आप उसकी सफ

मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या बात है। सो भाई कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जो कई कई दिन बाद तो आते हैं लेकिन एक पूरा दौर अपने संग लेकर के आते हैं। उसी में से एक ये सॉन्ग भी अभी जस्ट आपने सुना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी से। फिलहाल अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो होती हैं आपके लिए हैरान कर देने वाली लेकिन ज़रूरी ज़रूरी। सो चलिए हम ऐसी ही एक बात आपके लिए लेकर आए हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

So, कुछ ऐसे मैचेस होते हैं, कुछ ऐसी टीम्स होती हैं जिन पर हमारी निगाहें तो कम जाती है लेकिन वो इतिहास रच देती है। ऐसी ही है एक अपनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। जी हाँ, सो क्रिकेट के इतिहास में आज भारत ने एक नया लेसन जोड़ दिया है। क्रिकेट के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मैदान लॉर्ड्स पर अपनी पहली बार टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने मेज़बान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि 142 साल पुराने लॉर्ड्स के इतिहास में महिला टेस्ट क्रिकेट की नई शुरुआत थी और इसकी पहली विजेता बनी टीम इंडिया। सो इस ऐतिहासिक जीत में भारत के कई खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड्स भी बनाए। यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बनी, जबकि क्रांति गौड़ इस मैदान के टेस्ट ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। सो गेंद और बल्ले दोनों से भारत ने प्रदर्शन किया जिसने इस मुकाबले को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। सो ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि इंग्लैंड से मिली एक बड़ी जीत नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की उस नई पहचान का एक चिन्ह है, एक प्राचीन है, जो आज की दुनिया की सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान पर पूरे गर्व के साथ दर्ज हो चुकी है। तो ज़रा सोचिए, 142 साल बाद लॉर्ड्स के इतिहास में पहला महिला टेस्ट क्रिकेट हुआ जिसकी शुरुआत इंग्लैंड और भारत के साथ मैच से हुई और भारत ने 270 रन से इस ऐतिहासिक मैच में अपनी जीत दर्ज कर दी है। सो बताया ना, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको पता तो नहीं चलते हैं लेकिन अक्सर में ये बन जाते हैं। सो ऐसी ही है फिलहाल हमारी भारतीय क्रिकेट महिला टीम जो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसी का नतीजा है कि आज इतने पुराने मैदान पर, इतने बड़े मैदान पर एक बहुत बड़ा इतिहास हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। आई होप कि आपको भी ये बात ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी दिल से खुश होंगे कि वाह क्या बात है, जीते रहो महिला क्रिकेट टीम।

0: डियर स्टूडेंट्स, आज आपके स्कूल का पहला दिन है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
1: टीचर, मैं पूछूं क्या?
0: बिल्कुल।
1: तो टीचर, ये बताइए कि यहाँ पे छुट्टियाँ कब शुरू हो रही हैं?
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फिलहाल बहुत सारी बातें हैं और इन सारी बातों में कई बातें तो हम आप तक पहुँचा भी चुके हैं। फाइनली आपकी तरफ से कुछ कॉन्टेंट्स भी आ गए हैं, तो चलिए उन कॉन्टेंट्स की तरफ हम रुख करते हैं और बताते हैं कि भाई आज के कंटेंट्स में किसने क्या कुछ लिख भेजा है। सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करने के साथ आपको बताना चाहते हैं कि अभी आपने ट्यून कर लिया है अपना गोंडा वाला एफएम, जिसको हम बोलते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। सो आइए इस छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार वापस से आते हैं और बताते हैं कि भाई आपने क्या कुछ लिख भेजा है अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास।

0: क्या बात है, सुबह ही देखिए ना कितने बढ़िया बढ़िया से मैसेजेस आ गए हैं और साथ ही साथ आपके कंटेंट्स भी। सो कंटेंट्स में हमने जो पढ़ा था उसके बाद भी कई और मैसेजेस आए हैं। सो जस्ट हमने जो पढ़ा था उसके बाद कमल नयन जी हैं, आरजे अदनान सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। महेंद्र देपन राजस्थाना है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू महेंद्र, आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में वेलकम करते हैं, कायनात है। तमन्ना आरजू लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम अदनान सर, वालेकुम अस्सलाम। और धर्मेंद्र जी लिखते हैं, दिल में उतरने के लिए पहले मिजाज मिलना बहुत ज़रूरी है, क्या बात है। लवली सिंह मौजूद हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी सुबह की पहली किरण, हालांकि दिखी नहीं आज तो बदली थी, लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड इसके अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने लगे हैं, आपने तारीफ की और साथ ही कहा क्रिकेट महिला मंडल को मेरी तरफ से अभिनंदन पहुँच गया है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को गाने बहुत पसंद आए, साथ ही आपके लिखे हुए कॉन्टेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फिलहाल कंटेंट में आपने क्या लिखा है, कहां से आया, ये बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो भाई गुंजन जौहरी जी भेजती हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, लिखती हैं आप। मेरे बिखरे सामान के साथ मेरा बीता वक्त भी वापस दे देना। मेरा किरदार बेईमान था, तुम अपनी ईमानदारी से दे देना। जो ख्वाब मेरी आंखों से चुरा कर ले गए थे तुम, उनकी टूटी हुई किरचे भी जिम्मेदारी से दे देना। मेरी हंसी के पीछे जो खामोशियां छोड़ गए, उनका हिसाब किसी दिन फुर्सत में बारी बारी से दे देना। मैंने तो हर शिकायत को दिल में दफन कर दिया यारा, तुम अपनी हर सफाई बस एक बार सादगी से दे देना। जो रिश्ते अधूरे रह गए तेरी मेरी राहों में, उनकी आखिरी याद भी मुझे खुशनुमाई से दे देना। मैं लौट आऊँ जाऊँगी तेरी दुनिया से एक दिन, मैं लौट तो जाऊँगी तेरी दुनिया से एक दिन, बस मेरा खोया हुआ वक्त थोड़ी मेहरबानी से दे देना। क्या बात है, बहुत सुपर, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी वेरी डीप, यू नो, अमेजिंग, कमाल है। इसके अलावा हमारी पुनीता सिंह जी ने भी भेजा है लिख करके, क्या लिखती हैं आप। न जाने इन खूबसूरत लड़कियों को क्या हो रखा है, न जाने इन खूबसूरत लड़कियों को क्या हो रखा है, आजकल अपने पति के अंदर एक खतरनाक डर बना रखी हैं, आजकल अपने पति के अंदर एक खतरनाक डर बना रखी हैं। अमीरों जैसे हस्बैंड को छोड़ अब वो छपरियों के पीछे भाग रही हैं, अमीरों जैसे हस्बैंड को छोड़ अब वो छपरियों के पीछे भाग रही हैं, कभी नीले ड्रम तो कभी कत्ल तो कभी ऊंचाइयों से गिरा रही हैं। अपने आशिकों के साथ मिलकर ये खौफनाक साजिशें रच रही हैं, अपने आशिकों के साथ मिल ये खौफनाक साजिशें रच रही हैं। इंटरनेट खोलो तो हर तरफ पति पत्नी और वो का ही तमाशा दिख रही है, न जाने वो क्या अपनी ज़मीर और ईमान किसी अंधेरे बाजार में बेच कर आ रही है। चंद दिनों के आशिक की खातिर सालों के पवित्र बंधन का सरे आम कत्ल किया जा रही हैं। एक तरफ आज भी मासूम लड़कियां दहेज रेप और जुल्म की आग में जल रही हैं, बेबस लड़कियों के मरने की खबरें आज अखबार के किसी कोने में सिमट कर रह जा रही हैं, तो दूसरी तरफ चंद शातिर बीवियों की खौफनाक साजिशें पतियों की मौत की खबरें तेजी से फैला रही हैं। क्या बात है। सो ये जो है, ये एक सामाजिक ताना बाना जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, उसके बारे में लिखा है पुनीता सिंह जी। बहुत कम हिम्मत हो पाती है इतना अच्छे से लिखने की लोगों की। आपने उन लोगों को भी बताया जिन्होंने ऐसा काम किया है, और आपने उनका भी पक्ष रखा जो कहीं ना कहीं जिन पे जुल्म हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लिखावट हमेशा जारी रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, लिखना बहुत बड़ी बात होती है, इससे सब कुछ हम बाहर एक्सप्रेस कर पाते हैं। फिलहाल आपको गुंजन जौहरी जी, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, और साथ ही हमारी पुनीता सिंह जी का लिखा हुआ कैसा लगा बता सकते हैं। फिलहाल मोहित मरवा आ गए हैं। मोहित वर्मा ने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू मोहित। एंड महेंद्र देपन राजस्थाना ने लिखा है वाह क्या लिखा है लिखने वाले ने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिलहाल ये पुनीता सिंह जी ने लिखा है जो कि हम तक पहुंचाया इंस्टाग्राम पर। अगर आप भी लिखते हैं इस तरह से कोई कविता, कोई जोक, कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई शेर, तो हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। फिलहाल आज का शो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और एंजॉय करते रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा के बाद बैक टू बैक शोज आपके गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड।

0: अयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब
10: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
12: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
11: 89.6 FM के श्रोतागण, आज हमारी गांव की गूंज की टीम एक नए ऐसे गांव में है जहां मिट्टी खुद संगीत को पैदा करती है। हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के उस सुंदर और ऐतिहासिक गांव पिपराइच में।
13: तो चलिए चलते हैं, आज बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं उस गांव में और वहां जा कर के भोजपुरी गाने गाते हैं, क्योंकि भाषा वही अच्छी लगती है जहां जन्मी हो।
14: आओ आओ सब लोग, समता, जया, गीता दीदी, अरे इधर आइए आइए। सबसे पहले मिलते हैं यहाँ की दादी माँ से।
11: दादी माँ नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। दादी जी, हम लोग आज यहाँ भोजपुरी गीत सुनने और सुनाने आए हैं और साथ में सीखने भी आए हैं।
14: बिटिया, भोजपुरी यानी खेतों की हरियाली का स्वर, गंगा घाट से निकली आरती का स्वर, सावन की कजरी और बेटी की विदाई में निकला करुणा और आशीर्वाद से भरा हुआ
11: गांव के गूंज के प्यारे श्रोतागण, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भोजपुरी आखिर है कहाँ की भाषा।
14: भोजपुरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार के पश्चिमी और उत्तर हिस्से और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
13: हाँ हाँ बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़ जैसे जिलों में भी भोजपुरी की मिठास हर घर घर में पाई जाती है।
14: और बिहार में छपरा, आरा, बक्सर, सिवान, सारण, वहाँ तो हर गली में भोजपुरी के लोकगीतों की गूंज सुनाई देती है।
11: और मालूम है आपको, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और नेपाल तक भी भोजपुरी बोली जाती है। यह सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि प्रवासी भारतीयों की पहचान है।
14: तो आओ चलें, हम सब मिलकर एक प्यारा सा भोजपुरी गीत गाते हैं।

0: तुम लोग जानती हो ना, भोजपुरी का नाम पड़ा है भोजपुर क्षेत्र के नाम पर, जो बिहार में स्थित है।
1: इस भाषा में संस्कृत, हिंदी और मगही का सुंदर संगम मिलता है।
2: भोजपुरी गीतों में जीवन के हर रंग हैं, जन्म, विवाह, खेती, तीज त्योहार, होली और छठ भी।
3: छठ पर्व के गीतों की बात ही अलग है, उसमें आस्था और माँ गंगा के प्रति समर्पण झलकता है।
1: तो चलिए चलते हैं, क्यों ना हम लोग भी एक प्यारा सा सुंदर सा भोजपुरी गीत गा लें।

0: अरे देखिए ना, भोजपुरी गाते बतियाते हम लोग कितनी दूर निकल आए, और वो देखिए हम लोग तो खेतों के पास आ गए हैं, जहाँ हमारे किसान भाई कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और साथ में सुंदर सुंदर भोजपुरी गाने भी गा रहे हैं।
1: क्योंकि गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए थकान भी भाग जाती है और मन भी खुश रहता है। पसीने की हर बूंद अमृत सी लगती है और माटी की सुगंध तो बस मन में बस जाती है।
2: मालूम है किरण, पहले शादी में 3-3 दिन तक लोकगीत चला करते थे।
1: अच्छा,
2: दुल्हन की बहनें, भाभियां, सहेलियां सब मिलकर खूब गीत गाती थी, बड़ा मजा आता था।
3: और होली पर तो सब लोग एक साथ गाते हैं और खूब भर भर कर गुलाल और रंग भी खेलते हैं।
1: सच में कितना ज्यादा मजा आता होगा। आओ हम लोग भी मिलकर कुछ भोजपुरी गीत गाते हैं। आओ सब लोग, अरे बुला रही हूँ, आओ आओ।
4: दिन भर चाहे जहाँ रहूं हमारे पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहूं

0: लोग पिपराइज गांव के घाट के पास खड़े हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और जैसे लग रहा है कि हवा में भी संगीत खुला हुआ है।
1: सच कहा तुमने समता, इस घाट को देखते ही एक ही पर्व याद आता है।
2: क्या
1: पूछो? कौन सा?
2: कौन सा?
1: छठ महापर्व है ना। कितना सुंदर है यहाँ का दृश्य। देखो जगह जगह पे दीपक जल रहे हैं, चूल्हे पर लोगों के पकवान पक रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं रुक जाऊं, बस जाऊं।
0: छठ पर्व पर पानी, सूर्य देवता की पूजा, माँ गंगा का आशीर्वाद और भोजपुरी गीतों की मधुर धुन सुन करके कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले नहाए खाए, फिर खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ। और इन 4 दिनों में पूरे गांव में जो गीत गूंजते हैं ना, वो तो मन को छू ही लेते हैं। क्यों गीता दीदी, मैं सच कह रही हूँ ना?
1: बिल्कुल एकदम सत्य कहा है तुमने किरण। मालूम है किरण, मुझे बचपन से एक गीत बहुत पसंद है जो छठ के समय हर घाट पे सुनाई देता है। केलवा के पात पर उगेला रा सूरज देवा, सुना है ना?
2: हाँ सुना है।
1: तो चलो गाते हैं ना इस गीत को।
2: चलिए गुनगुना लेते हैं थोड़ा सा।
3: केलवा

0: करेलू संग बरतिया से झाके झूके।
1: मजा आया ना?
2: यही गीत मुझे बहुत पसंद है।
0: मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
3: और पता है, छठ का सबसे सुंदर दृश्य तब होता है जब डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है।
1: हाँ, जीवन भी तो हमें यही सिखाता है ना, हर परिस्थितियों में श्रद्धा और कृतज्ञता होनी चाहिए। ये गीत पीढ़ियों से गाए जा रहे हैं और हर बार वही पवित्रता, वही भावना लेकर आते हैं।

0: अब शाम की परछाइयां लंबी हो रही हैं। सूरज अपनी लालिमा को समेटकर घर की ओर वापस लौट रहा है। दूर मंदिर से सुनाई दे रही है शंख की ध्वनि और चूल्हे से उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि गांव अब विश्राम करना चाहता है।
1: भोजपुरी की असली खूबसूरती यही है, इसमें दिखावा नहीं सिर्फ सादगी है। जैसे यहाँ के लोग वैसे ही उनके बोल एकदम खरे और मीठे।
2: मन तो बहुत भारी है पर समय की पाबंदी है। इस पावन मिट्टी को नमन करते हैं और इस सफर को विदा कहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और पगडंडी पर। रव्वा सुनत रहें 89.6 FM इहा गांव की गूंज।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: हो कैसे खेलन जेबो सावन माँ कजेरिया, बदरिया घेरिया इलना नदी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NGMPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, आदाब, स्वागत करते हैं आपका अपने वाले कार्यक्रम ज्ञानस्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजू नदी और लेकर आ चुकी हूं ट्यूसडे का स्पेशल, यानी कि आपके लिए एक रियल लाइफ स्टोरी जो हर बार हम ट्यूसडे में लेकर आते हैं अपनी डायरी से या फिर कहें तो अपने किस्से कहानियों से। दुनिया के अलग अलग कोने से जो कहानियाँ हम बटोरते हैं वो होती हैं या तो थ्रिलर या फिर मिस्ट्री, और कुछ ऐसी क्राइम स्टोरीज जो थोड़ी सी अनडाइजेस्टेबल होती हैं, यानी कि जिनको पचाना बड़ा मुश्किल होता है, जिनकी कहानियाँ कभी सॉल्व नहीं हो पाती। पिछली बार हमने बात की थी हांगकांग की एक ऐसी मिस्टीरियस वुमेन की जो लोगों के लिए खाना मंगाती थी लेकिन कभी दिखती नहीं थी, और जो लोग खाना खाते थे वो जिंदा नहीं थे, वो मरे हुए थे। मरे हुए लोग कैसे खाना खा सकते हैं, ये सोचने वाली बात थी, और इसीलिए आज भी ये केस यूं ही पड़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने हज़ारों कहानियां कवर की हैं जिनकी मिस्ट्री यूं ही कंटिन्यू चली आ रही है। तो आज की कहानी में क्या होने वाला है, किसी के पास कोई आइडिया? फिलहाल आपके पास आइडिया नहीं होगा इसलिए हम बता देते हैं। आज की कहानी हम लेकर आए हैं अमेरिका से, और आप ये मत सोचिएगा मेरी को होस्ट की तरह कि मेरी सारी कहानी इंडिया से बाहर काहे होती है ना सृष्टि
6: मैम? वो तो सोचने वाली बात है क्योंकि सारी मिस्ट्रीज कहानी हमेशा आउट ऑफ इंडिया ही मिलती है।
5: एक्चुअली इंडिया के बाहर मिस्ट्री कंटिन्यू रहती है
6: और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उसको सुनने में एक्साइटेड रहते हैं इंसान की क्या होएगा आगे,
5: है ना? क्योंकि इंडिया के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन जब दूसरे देश की बात आती है तो हमसे तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, और मैं उनके बीच से ढूंढ के निकाल के लेकर आती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ तो शायद आपको सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं।
6: मैम आपकी बात एकदम सही है क्योंकि वो कहानी ऐसी होती है ना कि हम आगे खुद से सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या होगा और क्यों होगा।
5: और मुझे लगता है तुमने मेरी क्राइम स्टोरी इतनी सुन ली है कि अगर मैं अब तुम्हें नॉर्मल स्टोरी भी सुनाती तो उसकी एंडिंग तुम क्रिमिनल की तरह ही करती हो।
6: मैम वो एक माइंडसेट हो चुका है।
5: माइंडसेट हो चुका है, ऑलराइट। फिलहाल के लिए आपको बता दें आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली लाइव आपके अपने FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। मेरे साथ जो मौजूद हैं वो उनका नाम है सृष्टि। सृष्टि इतनी कहानियां मुझसे सुन चुकी हैं, इतनी कहानियां सुन चुकी हैं कि अब ये कहानियों को एक अलग नज़रिए से देखने लगी। अगर मैं इनको कोई नॉर्मल इमेजिनरी या फिर रोमांटिक स्टोरी भी सुनाने बैठ जाऊँ तो ये कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर उसका किडनैपिंग करा देती हैं।
6: मैम वो ना ऐसा लगता है कि ये ऐसा होगा ही क्योंकि अच्छा हो ही नहीं सकता है।
5: अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है भाई, मेरी कहानियों में थोड़ा उल्टा चल रहा है लेकिन अच्छा हो सकता है।
6: लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर वो अच्छे से एंड हो जाती है तो।
5: वाओ, फिलहाल के लिए आप बताइए कि आप तैयार हैं आज की कहानी के लिए, और आइए एंजॉय करते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं तो बने रहिए, लेकर चलूंगी मैं सीधे आपको अमेरिका। वहां से एक ऐसी स्टोरी निकल कर आई है जो सोचने पर आपको भी मजबूर कर देगी, और क्यों ये इतनी ज़्यादा वायरल है इसके पीछे भी आपको आज एक POV यानी कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बन जाएगा। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस कहानी के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञान स्थली लाइफ में, मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सृष्टि।
1: हेलो लिसनर्स,
0: तुम क्यों अपनी आवाज में इतना सस्पेंस डाल रही हो?
1: क्योंकि आपकी स्टोरी इतनी सस्पेंस वाली होने वाली है, उसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।
0: वैसे सृष्टि, सीट बेल्ट बांध लो और लिसनर्स आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि टाइम मशीन में हम चलने वाले हैं 1960 के पास, यानी कि 1960, जब मेरा नामो निशान इस धरती पर नहीं था।
1: मैम, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी ना किसी का,
0: किसी ना किसी का तो था ही, तभी तो ये कहानी है।
1: आखिर ये कहानी है किसकी?
0: 1960 में अमेरिकी सेना में भर्ती हुआ एक इंसान जो 31 साल का था, जिसका नाम था रैंडी, और उसने आर्मी छोड़ भी दी। पूछो क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि उसको शादी करनी थी।
1: शादी करने के लिए आर्मी छोड़ दी।
0: चलिए, तो अब कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। रैंडी 31 साल का एक शख्स जिसको आर्मी में अभी तक काम करना था, लेकिन उसने आर्मी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो किसी से बहुत मोहब्बत करता था और उसके उससे शादी करनी थी। उसने तुरंत ही आर्मी छोड़ी और पहुंच गया अपने घर ये कहने कि चलो भैया शादी कर लेते हैं, घर बसाते हैं, हम रहेंगे, तुम रहोगे, हम दो, हमारे चार, और ऐसा सपना उसने सजा रखा था। जिसने उससे शादी का वादा किया था उसका नाम था विकी। मानना पड़ेगा विकी लड़कियों का भी नाम हो सकता है।
1: मैम, ये लड़कियों का नाम था और उसने शादी करने के लिए ऐसी शर्त रखी थी क्या कि तुम आर्मी छोड़ दो?
0: उसने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। एक्चुअली जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो ना, तो आप चाहते हो कि हर वक्त अपना हर एक लम्हा उसके साथ गुजारो। आप पसंद नहीं करते हो कि एक भी पल जो है वो उसके बिना गुजरे। और जो आर्मी में रहते हैं वो तो जानते हैं कि कितने सालों तक, इवन कितने महीनों तक उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ता है, और वो विकी से बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता था, सो इसलिए उसने आर्मी छोड़ दी थी।
1: ऐसे लोग भी होते हैं
0: जी। तो मैं सृष्टि अब तुम्हें सुनाती हूँ उसके आगे क्या हुआ। विकी और रैंडी जिसने शादी कर ली, और शादी के बस कुछ ही टाइम बाद उनके तीन बच्चे भी हुए। जब ये तीन बच्चे हो चुके थे तब पता नहीं क्यों, लेकिन इनके दिमाग में एक अलग ही अफलातून ख्याल आया था। इन्होंने सोचा था, क्योंकि इनके थॉट्स एक दूसरे से बहुत मिलते थे, और इसी थॉट्स के चलते, यानी कि उनके विचारों के चलते, उन्हें एक दूसरे को पसंद किया था, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था, शादी कर ली थी और अच्छी खासी फैमिली चल रही थी। उसी थॉट में एक ख्याल ये भी आया कि क्यों ना चलो बिना पानी के रहते हैं, बिना बिजली के रहते हैं, बिना किसी चीज़ के रहते हैं, जैसे आदिवासी रहा करते थे ऐसे रहते हैं। और इन लोगों ने सच में अपने घर की जो बिजली थी, जो पानी का पावर था, वो कट करा दिया। ना पानी बाहर से आएगा, ना बिजली आएगी। ये लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, कैंडल्स जला रहे हैं, लैंप और लालटेन जला रहे हैं। पानी लेने के लिए ये बाहर कुएं की तरफ जा रहे हैं, नदियों के पास जा रहे हैं, लेकिन टंकी से पानी नहीं लेंगे क्योंकि हमने कटवा दिया है।
1: इतना स्ट्रगल मैम।
0: अब ये स्ट्रगल उन्होंने जानबूझ के चुना था, प्लस वो अपने बच्चों को भी सेम चीज़ें सिखा रहे थे। बाहर से पानी लाओ, अपना खाना खुद बनाओ, काम घर पे करो, ये करो वो करो, यानी कि दुनिया में जो एक कभी कभी हम डायलॉग मार देते हैं फ्रस्ट्रेट होकर कि मोह माया से दूर हो जाएंगे, एक्चुअल में वो हो चुके थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पीछे ले गए थे, हम लोग फॉरवर्ड करते, उन्होंने बैकवर्ड कर दिया था। जहाँ हम अपनी फैमिली को कोशिश करते हैं दुनिया की हर एक सुख सुविधा देने की, वहाँ पर उन्होंने कोशिश की ये सब हटाओ यार, कुछ नया करते हैं।
1: कुछ ज़्यादा ही नया हो गया,
0: कुछ डेयरिंग सा काम करते हैं।
1: पुराना हो गया।
0: ये कुछ थोड़ा पुराना हो गया। इसी के साथ उन्होंने घर में बंदूकें लाना शुरू कर दी। बंदूकों का एक कलेक्शन हो चुका था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो अपने 14, 12, 9 साल के बच्चे को सिखा रहे थे कि बंदूक चलाते कैसे हैं, और वो बच्चा सीख भी रहा है। कुछ दिन तो इनकी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी, अचानक से फिर एक अफलातून ख्याल आता है, और ख्याल ये था कि चलो यहाँ से चलते हैं, कि दूर पहाड़ पर रहेंगे, आबादी से दूर, और वहाँ पर रहेंगे, शिकार करके अपना खाना पकाएंगे, वही खाएंगे, वहीं रहेंगे।
1: मैम, अब तो मुझे इनके ख्याल से डर लग रहा है।
0: फिलहाल इन्होंने एक जगह भी चूज़ की। अमेरिका में एक जगह है रूबी रिज,

0: रूबी रिज जो एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ तो घने जंगल हैं, पहाड़ और बीच में एक बहुत सुंदर सी जगह है, समतल जगह है। उन्होंने उस जगह को चूज किया और वहाँ पर अपना घर बनाया। और घर भी ये नहीं कि सीमेंट से बनवाया हो या किसी को बुलाया हो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ना, कोई इंजीनियर नहीं, अपने हाथों से लकड़ी तोड़ के, काट के, ठोक के अपना एक कैबिन बनाया था, जिसके अंदर कुछ खास था भी नहीं, ना कोई प्लम्बर, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कुछ कुछ नहीं, सिर्फ वो एक लकड़ी का कैबिन था जिसके अंदर रह सकते हो। वो ये बात थी ना कि सर के ऊपर छत होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया गया था।
1: उनके थॉट्स बहुत ही अलग थे, वो आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं?
0: अब देखो क्या ही चल रहा है उनके दिमाग में। अब ये लोग आबादी से लगभग 150 से 160 किलोमीटर दूर थे, जो उनकी सबसे नजदीकी आबादी थी, यानी कि इंसानों की दुनिया से एकदम दूर। उस जंगल में रह रहे थे अकेले, पूरी फैमिली के साथ। अब ये लोग सुबह उठकर शिकार करने जाते थे, दूर दूर से जानवरों का शिकार करते थे, फिर आग जलाते थे, उन्हें पकाते थे और खाते थे, जैसे स्टोन एज में लोग नहीं रहते थे, पत्थर से आग जलाना, उनको खाना पका करके, सेम जहाँ हम स्वाद के लिए इतनी सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, वहाँ बस वो उसको रोस्ट करते थे। उन्हें फालतू की चीज़ों से कोई मतलब था ही नहीं।
1: मैम वो गलती से हो गए थे इस ज़माने में।
0: हम जो भी कह सकते हैं। रैंडी और विकी, जिनके अभी तक 3 बच्चे थे, और उस पहाड़ पे रहते रहते एक बार विकी दोबारा से प्रेग्नेंट हुई। अब क्योंकि हॉस्पिटल नहीं था, बहुत नज़दीकी आबादी है जिसमें इंसानों की भनक हो, जब वही 160 किलोमीटर दूर था, तो सोचिए हॉस्पिटल कितना दूर होगा। इसीलिए इस बार विकी का जो बच्चा जन्म लेता है वो बिना किसी डॉक्टर के लेता है, उसी केबिन के अंदर, फुल ऑफ स्ट्रगल। उसके हाथ में छोटा सा बच्चा और वो 3 उसके पहले वाले बच्चे, सैमुअल, केबिन, सारा और एक और जो नया नन्हा मेहमान आया था, विकी और रैंडी। अब ये लोग एक ऐसे इंसान से मिले जो उन्हीं की तरह पास में रहता था उसी जंगल में, नाम था रिचर्ड। वो रिचर्ड जो लोगों को इंस्पायर्ड करता था, मोटिवेट करता था, ये अच्छी चीज़ों में मोटिवेट नहीं कर रहा था, वो भी उसके दिमाग में भी ना बड़े ख़तरनाक ख्याल थे। वो वहाँ पर लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि अमेरिका, अमेरिका हमारा है, हम यहूदियों का है, हम जितने भी क्रिश्चियंस हैं हमारा है, गोरे लोगों का है, ये जितने भी बाहर से अफ्रीकन आए हैं, नाइजेरियन आए हैं, इनको उठाओ और फेंक दो इनके देश में, इनको हमारे देश में कोई एंट्री नहीं है। काले गोरे का भेदभाव वहाँ देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि विकी और रैंडी भी कट्टर क्रिश्चियन थे, तो इन्होंने भी उसको ज्वाइन कर लिया। इनके साथ जो इनका दोस्त रहता था, जो अपना परिवार छोड़ के इन्हीं के घर में पड़ा रहता था, उसको भी पता नहीं क्या शौक चढ़ा था, वो भी जाके शिकार करता था, अच्छा खासा खाना पका के मॉल से ला के खा सकता था, बट नहीं, उसको भी शिकार करना है, अपने बीवी बच्चे गए भाड़ में, मैं दूसरों के साथ रहने में खुश हूँ, उसके साथ ये चल रहा था। वो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। पहले तो शुरुआत में विकी और रैंडी क्योंकि शहर से आए थे, तो उन्हें लगता है क्या बकवास कर रहा है, इसके पास दिमाग वमाग है कि नहीं है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वहाँ पर बैठ कर उनका ब्रेन वॉश शुरू हो चुका था। अब तुम्हें भी पता होगा, अगर हम किसी की संगत में बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं, तो उसके विचारों का असर हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है।
1: यस मैम, उसी की तरह हमारी भी थिंकिंग हो जाती है।
0: इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि एक अच्छे इंसान के साथ रहो, क्योंकि अच्छा इंसान आपके विचारों को अच्छा करता है, वहीं पर एक ख़राब इंसान आपके विचारों को भी बदलता है। अभी तक जो विकी और रैंडी बहुत लॉजिकली सोच रहे थे, अब वो अचानक से बदल चुके थे। अब वो भी यही सोचते थे कि हाँ, अमेरिका तो अपना ही है यार, अमेरिका तो अपने फादर का है, अमेरिका तो हम क्रिश्चियंस का है, ये बाहर से जो लोग आए हैं इनको उठा के फेंको, ये काले काले हैं, हम तो गोरे चिट्टे हैं। और इनके अंदर सरकार को लेकर भी एक खुन्नस सी आ चुकी थी, जहाँ पर ये सरकार के लोगों को देखते थे वहीं इनकी नफरत शुरू हो जाती थी। सरकार को ये बात समझ में आ गई कि कुछ लोग हैं जंगल में, रूबी रिज के जंगलों में, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और जानते ही हो, जब सरकार को लगता है कि कोई है जो उनकी कुर्सी छीन सकता है, उनकी सत्ता उनसे दूर कर सकता है, तो उन पर वो नज़र रखना वो ऑब्वियसली शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही काम वहाँ पर भी हुआ, सरकार नज़र रखने लगी। सरकार वहाँ पर जो कहती थी, आपको पता होगा कि अमेरिका में गन्स वगैरह बहुत नॉर्मल है, आज भी मिल जाते हैं, हमारे यहाँ सब्जियाँ जैसे बिकती हैं ना, ऐसे वहाँ पे गन्स बिकते हैं। और इस टाइम भी यही था, लेकिन रूल ये था कि आप अपने गन को मॉडिफाई नहीं करा सकते हो। गन जैसी सरकार आपको देगी, आपके पास गन वैसी ही रहनी चाहिए। अगर आप मॉडिफाई कराते हो तो इट्स योर फॉल्ट, नाउ इट्स इलीगल, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, वो जो है ना कि जेल में जाएंगे, जेल की चक्की पीसेंगे, बस वही वाला हाल उनका हो जाता था। इसके बाद भी दो पुलिस वाले रैंडी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ये गन मॉडिफाई कराना है। पहले तो रैंडी ने मना कर दिया कि नहीं, ये इलीगल है, बट उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ खाने को देंगे, क्योंकि उनके पास खाना पहले से ही नहीं था, वो शिकार करके खा रहे थे, तो इस लालच में वो मान जाते हैं। गन को मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाई करके दे देते हैं, और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। क्योंकि अब यही सरकार के लोग जो अभी तक उनके पास गन मॉडिफाई कराने आए थे, यही उन पर केस दर्ज कर देते हैं कि तुमने तो गन मॉडिफाई किया है, तो इलीगल था, तुमने का ही किया है।
1: मैम मतलब फंसाने का तरीका कितना अच्छा है।
0: अब रैंडी को भी यही लग रहा था कि ये तो मुझे फंसाया गया है। एक तो उसे सरकार के लिए इतनी नफरत पहले से ही थी और अब ये हरकत। फिलहाल रैंडी को जेल ले गए, क्योंकि एक आम आदमी क्या ही कर सकता है। वो जेल गया, उसकी बीवी पागलों की तरह बस उसको छुड़ाने पे लगी हुई थी, तो उसका जो पुराना घर था वो भी उसने गिरवी रख दिया कि भैया ये घर ले लो लेकिन मेरा पति छोड़ दो। रैंडी को पता था अब केस लड़ना पड़ेगा, नहीं तो घर भी जाएगा, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चर क्राइसिस भी आया था अमेरिका में, तो जितने भी किसान थे वो अपने घरों का सामान बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहे थे। वो अपनी बहुत महंगी महंगी चीज़ें बेचकर सिर्फ दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पा रहे थे, और अब इनके पास सिर्फ एक घर बचा था जो शहर में था, उसको भी गिरवी रखा गया था छुड़ाने के लिए। आफ्टर ऑल वो बाहर तो आ गया, बट इसका खामियाजा उसे पता था कि अगर घर नहीं छुड़ाया तो क्या होगा। एक रोज जब इसका बड़ा बेटा सैमुअल, जो 14 साल का था, वो जंगल में शिकार करने निकला था, ये सोचकर कि बाहर जाएंगे और कुछ पकड़ के लाएंगे, प्लस साथ में ले गया था वो अपना पालतू कुत्ता। ये दोनों लोग बाहर शिकार करने जा रहे थे, बाकी सारे फैमिली मेंबर्स घर के अंदर थे, तो इन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है, और जैसे ही वो आवाज़ सुनता है जो उसका कुत्ता था वो एकदम से भौंकने लगता है, और भौंकते भौंकते अचानक से शांत हो जाता है। शांत होने की वजह, उस कुत्ते को किसी ने गोली मार दी थी। जब ये चीज़ उसके बड़े बेटे सैमुअल ने देखी तो उसने सोचा ये क्या है, कौन है, कौन है जो हम पर हमला कर रहा है। और ये बात सोचकर वो तुरंत तुरंत उन झाड़ियों के पास जाता है और देखता है वहाँ पर दो पुलिस वाले खड़े हैं, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, तुमने मेरा कुत्ता मार दिया। जैसे वो ये बात चिल्लाता है तो पुलिस वाले उसको देखते हैं और उसके ऊपर भी गन तान देते हैं। सैमुअल अपनी प्रोटेक्शन प्लस अपने कुत्ते की मौत का बदला लेने के लिए गोलियां चलाना शुरू करता है, और इस पूरे इसमें कम से कम 19 गोलियां चलती हैं, प्लस अब इन लोगों को यानी कि जो पुलिस वाले थे वो 14 साल के बच्चे के ऊपर भारी पड़ गए, और 14 साल के बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। ये बात मीडिया में पहुंची और लोग भड़क गए कि दो पुलिस वालों ने मिलकर एक बच्चे को मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया। पुलिस वालों के पास जब मीडिया गई तो उन्होंने कहा कि देखो हमने कुछ नहीं किया था, हम खड़े थे, इन्होंने फायरिंग शुरू की थी। बट वहीं पर लोग जब मीडिया इन लोगों के पास गई तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने पहले मेरे पे मेरे कुत्ते को मारा, उसके बाद मेरे बेटे को मारा। अब दो थ्योरीज एक साथ रन कर रही थी और लोग भी अलग अलग तरफ से बढ़ चुके थे, एक जो 14 साल के बच्चे की मौत को लेकर बहुत गुस्से में थे, और दूसरे वो जो कहते थे कि नहीं पुलिस ने बहुत सही किया है। अक्सर ऐसा होता है। और अब यहाँ से शुरू होने वाली थी वो स्टोरी जो आपको भी डरा देगी। फिलहाल क्या होता है आगे सोचती है, सोचिए सोचिए, हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव अपनी आर्जुनती और मेरी को होस्ट सृष्टि के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी कहाँ में इस खौफनाक और मंगल वाले दिन यानी कि ट्यूसडे में आपकी स्पेशल ज्ञानस्थली लाइव है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति, सुना रही हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी और लास्ट में आप ये कहेंगे कि ये का था, ये काहे किया
2: जो अभी मेरे साथ हो रहा है।
1: हाँ, ऐसा ही मेरे लिसनर भी करने वाले हैं, मुझे गारंटी है उस बात की, क्योंकि मैंने भी यही किया था। ये का था
2: मैम, क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन स्टोरी सुनने की एक्साइटमेंट ज़्यादा है।
1: तो भाई, क्योंकि सैमुअल मर चुका है, मीडिया भड़क चुकी है, लोग भड़क चुके हैं, और मीडिया का तो काम होता है सच को बाहर दिखाना। पुलिस वालों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो पुलिस वालों ने FBI बुलाई। उसने कहा FBI आएगी और एक पुलिस वाला हमारा भी मारा गया है और अब हम इसमें काम करेंगे।
2: मैम, ऐसा सच में हुआ था?
1: हाँ, क्योंकि सैमुअल ने जिसको गोली मारी थी उसके हाथ में लगी थी और हाथ में लगने की वजह से बहुत सारा खून बह चुका था। खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और अब कोई पुलिस वाला मरा है तो FBI तो बीच में कूदेगी।
2: फिर आगे क्या होता है?
1: आगे क्या होता है, FBI ने साफ कहा कि देखो भैया, अगर इस कैबिन से यानी कि उस लकड़ी के घर से कोई भी बाहर निकला जिसके हाथ में बंदूक, छुरी, चाकू, हथियार दिख गए तो हमारे स्नाइपर उसको भून देंगे। ये बात उन्होंने तय कर दी। रैंडी, उसका पूरा परिवार

0: अब उस केबिन के अंदर लॉक हो चुका था फिलहाल, क्योंकि खाना भी तो जरूरी है ना, एक इंसान बिना खाए कितने दिन रह सकता है। इसीलिए अब उसका दूसरा बेटा बाहर निकला और अब उसने सोचा कि चलो बाहर जाते, शिकार करते, खाना लाते। लेकिन वो जैसे ही बाहर गया, गोलीबाजी शुरू हो चुकी थी। उसको बचाते बचाते उसका पिता रेंडी बाहर गया कि अरे भैया कहाँ होएगा, कहाँ होएगा, कहाँ होएगा, चलो अंदर चलो। और जब देखा कि बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, उसने अपने बड़े बच्चे की लाश उठाई, उसको घर के अंदर लेकर आया, उसने अपने कुत्ते की लाश उठाई, उसको घर के अंदर लेकर आया, और अब अपने बेटे को जिसके सीने में गोली लग चुकी थी, हालांकि उसका उसकी डेथ नहीं होने वाली थी उस गोली से, लेकिन घाव बहुत गहरा हो चुका था। और इन सारे बवालों को सुनकर, इतनी गोलीबारी की आवाज़ सुनकर, उसकी जो वाइफ थी विकी, वो भी अपने घर से बाहर आती है और उसकी फोटो आज भी इंटरनेट पे वायरल है। विकी घर से बाहर आई, उसके हाथ में 10 महीने की बच्ची थी और वो बस बुला रही थी कि आ जाओ घर के अंदर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाना, बस तुम घर के अंदर चलो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। और इतने में ही जब ये लोग घर के अंदर वापस आ रहे थे, तभी इनके मुंह पर बहुत तेज़ी से खून आके गिरता है। अब तुम सोचो कहाँ से खून आया होगा।
1: गोली चली
0: किसके ऊपर?
1: रैंडी के ऊपर।
0: विकी के माथे पर। विकी के हाथ में कोई हथियार नहीं था, उसके हाथ में 10 महीने की बच्ची थी और उसके माथे पर गोली चल चुकी थी, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। रैंडी पागल हो चुका था अपनी उस मोहब्बत को मरा हुआ देख, जिसके लिए उसने दुनियादारी छोड़ रखी थी। उसने तुरंत अपने बेटे को लिया, अपनी बीवी को लिया और अपने उस 10 महीने की बच्ची को उठाया, अंदर चला गया। अब वो लोग अंदर पैक हो चुके थे। मीडिया को अभी तक ये बात पता नहीं चली थी, मीडिया को लगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ सैमुअल की डेथ हुई है, जो कि 14 साल का था। उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे तो विकी भी मर चुका है, केबिन को भी गोली लग चुकी है और इवन रैंडी को भी गोली लगी है उसके हाथ में। ये बात किसी को नहीं पता थी। अब FBI ने एक और काम किया। FBI ने काम किया, बाहर जाकर नेगोशिएशन किया और वो नीचे से खाना लेकर जा रहे थे ऊपर बैठ के कि हाय रैंडी, तुमने खाने में क्या खाया है, देखो हम तो पैनकेक खा रहे हैं, तुम्हें खाना तो बाहर आ जाओ। और रैंडी को अंदर बैठ के लग रहा था कि ये लोग अभी तक मेरे इतने लोगों को मार चुके हैं, घायल कर चुके हैं, ये हमारे जख्मों पर मरहम लगाने आए हैं या जख्मों पर ये नमक छिड़क रहे हैं। वो बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, बस वो चाह रहा था कि बाहर निकलूँ, इन सबको मार दूँ। लेकिन उसे पता था बाहर निकलूँगा तो खुद मारा जाऊँगा, क्योंकि मुझे पहले से ही चोट लगी है और मेरा पूरा हाथ की वजह से वो हिस्सा पैरालाइज हो रहा है। उसका बेटा केबिन, जिसके घाव में अब कीड़े पड़ चुके थे, अब उसने देखा उसकी दो दो उंगलियाँ उसके घाव के अंदर जा रही थी। वो इस चीज़ से परेशान था, वो दर्द में तड़प रहा था। इस कदर उसको दर्द था कि उसने अपने पिता से कह दिया कि ये शॉटगन उठाओ और मुझे तुम जान से मार दो, क्योंकि ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बट उसके पिता ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कहते, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। और तो घर में जो भी सामान पड़ा था उस पर उसको उठा करके उसका एक लेप बनाकर उसके शरीर पर लगाया गया ताकि वो जख्म और ना बढ़े, उसमें और कीड़े ना पड़े। बट क्या, दर्द तो दर्द है ना, एक प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए। काफ़ी दिन गुजर गए थे नेगोशिएशन चलते चलते। अब FBI ने एक और आइडिया लगाया। FBI ने कहा कि ये लोग मारने को तैयार नहीं हैं, तो अब ऐसा करते हैं इन सबको मार ही देते हैं, इनको बाहर बुलाते हैं, ऐसी कुछ बातें करते हैं जिसमें ये भड़केंगे, हम इन पे गोली चलाएंगे, ये हम पे गोली चलाएंगे और हम कह देंगे कि ये गोलीबारी में मारे गए, इन्होंने हम पर गोली चलाने की कोशिश की, तो सेल्फ डिफेंस में हमने इनको मार दिया। ये कोशिश भी नाकाम रही, वो लोग बाहर नहीं आए। उन्होंने उन्हें पता था कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों बाहर बुलाया जा रहा है, वो बाहर ही नहीं आए। अंदर उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश थी जो कि हफ्ते भर से ऊपर हो चुकी थी, सड़ने लगी थी। अब यहां पर एक भाई साहब हैं जो कूद के सामने आए कि हटो हटो बाबू जी, हम बनेंगे, बिचौलिया भी हम ही बनेंगे, हम सुलझाते हैं मैटर, क्या मैटर चल रहा है। जैसे हमारे पड़ोस में होता ना, जब दो लोग लड़ते हैं तो एक आंटी से या अंकल आते हैं जो कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, हमको बताओ, हम सॉल्व कराते हैं, वी आर पंचायतीज।
1: मैम यहाँ पे तो जो ये केस चल रहा है वो सीरियस होता जा रहा है।
0: और उसका नाम था बर्क, जो आता है वो पहले मिलिट्री में रह चुका था, तो उसने आकर पुलिस वालों से और FBI से बात की कि बाबू जी, हम बाबू जी बनते हैं, बिचौलिया बनते हैं, मैं जाके बात करता हूँ, आप क्या ये बातें कर रहे हो, मैं सॉल्व कराता हूँ ये केस, और मैं तो एक सिविलियन भी हूँ, मैं आर्मी में रह चुका हूँ, मैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। FBI वालों ने कहा ठीक है जाओ।

0: एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, करके दिखाओ। वो अंदर गया, उसने बात की और उसने देखा कि यहाँ तो विकी भी मर चुका है, उसकी भी गोली लग चुकी है और उसके पिता को भी गोली लग चुकी है। और अब वो क्या ही कर सकता है, उसने FBI वालों से बात नहीं की। वो इतना बड़ा बाबूजी बना कि उसने मीडिया वालों के सामने आकर सब बोल दिया कि देखो विक्की भी मर चुका है, उसको गोली लग चुकी है, वो मर गई है, उसके हाथ में 10 महीने की बच्ची थी और कैबिन को भी चोट लग चुकी है, उसके घाव में तो कीड़े पड़ गए हैं और उसके बाप को भी गोली लग गई है। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? FBI वालों ने उसको कॉलर से पकड़ा, घसीटते हुए लेगा कि भैया का हम तुमको काहे बुलाए थे कि तुम बिचौलिया बन के केस सॉल्व कराओ, या तुम यहाँ बुलाए थे तो हमारे ही ऐसी की तैसी कराओ, हैं क्या मतलब है इसका? अब वो परेशान था कि मुझे लगा यार तुमने बता दिया होगा मीडिया वालों को, तो मैंने जाके बोल दिया सब, मुझको क्या पता था तुमने कुछ बताया ही नहीं है। मीडिया वाले और लोग दोनों बौखला चुके थे इस बात पर कि यार कैसे कर सकते हैं पुलिस वाले। अब FBI परेशान कि कैसे संभालें लोगों को, और FBI ने कहा हटाओ यार, बवाल तो हो ही चुका है, अब ऐसा करते हैं इनके घर के चारों तरफ गोली चलाना शुरू करते हैं, ये कहीं ना कहीं मारे ही जाएंगे। फिर वो बार बोला नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ वापस से बात करने, बात करके आऊँगा। और वो वापस से बात करने गया। इस बार रैंडी को उसे समझाया कि देखो भैया अगर तुम घर के अंदर रहोगे तो सबके सब मारे जाओगे, घर के बाहर चलो, तुम्हारे हाथ का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारे बेटे के जख्मों पर इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये मारा जाएगा, और घर से बाहर नहीं निकलोगे तो भी लोग तुम्हें मार देंगे, तुम खुद को सरेंडर कर दो। और ऑफकोर्स उसने खुद को सरेंडर कर दिया। जैसे वो बाहर निकला ना, उस बर्ग ने उसके तीनों बच्चे ले लिए, खिलाओ बच्चे दो, तुम जाओ जेल, बच्चे जाएंगे दादी के घर। और ऐसा करके उसने रैंडी को 2 सालों की जेल करा दी, केविन को 18 महीने की जेल हुई। और 2 सालों बाद जब ये रैंडी वापस आया तो उसने कोर्ट पर एक केस लगा दिया, उसने कहा मुझे मुनाफा चाहिए, मुझे ये जो मेरा नुकसान हुआ है ना इसकी भरपाई कौन करेगा, मेरी बीवी मर गई है, मेरा बच्चा मर गया है, मेरा घर टूट गया है, मेरा बच्चा घायल है, मैं मेरा हाथ चला गया है, इसका जुर्माना कौन भरेगा, मुझे $2,00,000 चाहिए। पर कोर्ट ऐसे कहाँ मानती है कि आपने जितना माना उतना दे दें, कोर्ट ने कहा नहीं 2 नहीं 1,00,000 ले जाओ। और उस वक्त उन्हें $1,00,000 मिल चुके थे। और अब तुम ये सवाल कर रही थी ना कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा घर वर क्यों छोड़ रखा है इन्होंने।
1: हाँ।
0: अब इसके पीछे थे उनके सपने,
1: सपने
0: असल सपने नहीं, रात में आते हुए सपने जो दोनों को सेम सेम आ रहे थे।
1: ये कैसे पॉसिबल है?
0: अब ये ही तो पॉइंट है, तभी तो मैंने कहा था कि जब तुम सुनोगी ना लास्ट में कि क्या हुआ, तुम भी सर पकड़ के कहोगी ये का था।
1: मैम सर पकड़ने का तो सही है, घूमने भी लगाया अभी से ये।
0: चलिए बताते हैं उनके सपनों में क्या था, तब तक के लिए आप बताइए अभी तक की स्टोरी आपको कैसी लगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली लाइफ।

0: और ये गाना कुछ उनके जज्बातों के लिए था जिन्होंने 1960 में अपना एक जोड़ा खो दिया। क्या लगा विकी और रैंडी के ऊपर फिट बैठ रहा है ना?
1: मैम इन्हीं के लिए बना ही है ऐसा लग रहा है,
0: है ना? वो उसकी यादों में ही है अब फिलहाल। तुम्हारा सवाल था कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे।
1: यस मैम, वो ऐसा आखिर
0: जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इन दोनों के विचार बहुत मिलते थे,
1: हाँ।
0: सपने भी मिलते थे,
1: हाँ। और उनको एक ही जैसे आते थे सपने।
0: हाँ, अब ये लोग ना हर सुबह उठकर एक दूसरे से अपने सपने बयां करते थे, मैंने ये देखा मैंने वो देखा, और कमाल की बात ये थी कि दोनों एक ही सपना देख रहे होते थे।
1: ऐसा भी हो सकता है,
0: अब पता नहीं ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बना रखा था, आई डोंट नो, बट बात यही है कि ये लोग सेम सपना देख रहे थे और इनको सपनों में आ रहा था कि देखो भैया डूम्स डे आने वाला है, यानी कि एक ऐसी रात आएगी जिसमें बाहर के आए हुए लोग इन्हें मार देंगे जान से, जो कि आई थिंक सच भी हुआ।
1: क्या मतलब उनके सपने सच हो रहे थे?
0: नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। उनके सपनों में था कि अगर मैं शहर के अंदर रहूंगी, लोगों के आसपास रहूंगी, तो मुझे बाहर से आए हुए लोग मार देंगे। वही जिंदा बचेगा जो यहाँ से दूर रहेगा, लोगों से दूर रहेगा, मोह माया से दूर रहेगा। और इसीलिए इन्होंने बिना बिजली के बिना पानी के रहना चालू किया था, गन्स इकट्ठे करने शुरू किए थे, और एक वक्त के बाद पहाड़ों पर जाकर शिफ्ट हो गए थे ये सोचकर कि बाहर से आए हुए लोग इनको नहीं मार पाएंगे। बट हुआ क्या? हुआ तो इसका उल्टा,
1: ये पूरा अपोजिट हो गया। मतलब उनके साथ एक अलग ही ट्विस्ट हो गया।
0: उनके साथ कुछ ऐसा था जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा।
1: अनएक्सपेक्टेड,
0: बिल्कुल।
1: मैम सोचने वाली बात है, उन्होंने एक सपने पे यकीन क्यों किया?
0: क्योंकि दोनों को सेम सपना आ रहा था, और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो दोनों कट्टर क्रिश्चियंस थे, तो उन्हें लगता था उनके सपनों में गॉड उन्हें आकर कुछ साइन दे रहे हैं। हालांकि विकी की मौत के बाद, अपने बड़े बेटे को खोने के बाद, 2 साल जेल में रहने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो जनाब वापस से शहर के अंदर एज अ सिटीजन, एज अ सिविलियन शिफ्ट हो चुके थे, पहले ही हो लेते।
1: क्या ही मिला ऐसा करके उन लोगों को?
0: शायद कभी कभी ना जिंदगी में सबक बहुत ज़रूरी होता है।
1: मैम ये सबक कुछ ज़्यादा ही हो गया लेकिन।
0: और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करते नहीं हैं, बस कुछ हो जाता है ऐसा जिसका ना कोई जवाब है, जिस पर सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्यों
1: आखिर ऐसा क्यों किया?
0: और एक क्यों का जवाब ना 90% नहीं मिल पाता। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो आखिर में रह जाता है वो होता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया।
1: हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
0: हर चीज में क्यों होता है, और इस क्यों का जवाब
1: किसी के पास नहीं होता।
0: बस एक ही चीज होती है, और वो होती है कैसे आप इस चीज को, इस समय को एक्सेप्ट करोगे। बस इतना काफी है। फिलहाल हमारे साथ चैट बॉक्स में कमल नैन जी जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं आरजनदी मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू एंड सृष्टि जी। आज सृष्टि जी आपको भी गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून।
0: तमन्ना अर्जू हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आप दोनों मैम को, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप। महेंद्र जी जुड़े हैं जो हमें सुनते हैं राजस्थान से, और लिख रहे हैं मैम जी सच में गानी बहुत अच्छी लगी, मैं उस कहानी में खो गया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: मैम ये बात कहीं ना कहीं सच थी।
0: आप बताइएगा ज़रूर आपको आज का शो कैसा लगा, आज की कहानी कैसी लगी, और अगली कहानी के लिए एक्साइटेड रहना, क्योंकि अगली कहानी में होने वाला है फिर कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। मेरी कहानियाँ बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, उम्मीद से परे।
1: मैम उनको सुनने में एक अलग ही मजा है, और फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो तो क्या ही बोले,
0: है ना?
1: हाँ।
0: मुझे भी बहुत पसंद है कहानियाँ सुनाना।
1: आपको सस्पेंस में डालना पसंद है?
0: ओ ये तो मेरा टैलेंट है। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपके अपने गोना शहर की धड़कन रेडियो ज्ञान असली, अपनी आशीर्वती और मेरी को होस्ट सृष्टि के साथ। अब तक आपने एंजॉय किया ज्ञान असली लाइव, अगला कार्यक्रम सेहत या सिंह सुनना मत भूलेगा, और एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। गाना भले ही अधूरा है लेकिन एहसास पूरा है, हमारी अधूरी कहानी अजय सिंह की आवाज़ में।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ सुजाता और आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ गई। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 को। इस वर्ष की थीम है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश, इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। इस विषय पर गहराई से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं एक बहुत ही अनुभवी और सम्मानित शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान, वरिष्ठ सलाहकार वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल डफरेन लखनऊ से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई में।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस वर्ष की थीम के बारे में, जो की है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश। इसका अर्थ क्या है और ये आज इतना प्रासंगिक क्यों है?
1: सबसे पहले मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करा है आप लोगों ने, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस वर्ष की थीम है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश, इसका अर्थ ये है कि अगर हम शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर और शुरू के 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाएं तो हम उसके अच्छे स्वास्थ्य, समुचित विकास और उज्जवल भविष्य की नींव रख सकते हैं। माँ का दूध न केवल पर्याप्त पोषण प्रदान करता है बल्कि बच्चे को बीमारियों से, दस्तों से, कुपोषण से बचाता है। एक स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर एक सशक्त नागरिक बनता है। अगर हम बात करें इसकी आज के समय में प्रासंगिकता क्या है, तो आज भी कई शिशुओं को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान या शुरू के 6 महीने तक केवल स्तनपान अभी भी पूरी तरीके से नहीं कराया जाता। कभी जानकारी की कमी के कारण तो कभी माताओं को पर्याप्त सहयोग ना मिलने के कारण इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में बार बार बीमार पड़ने की और कुपोषण होने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कुपोषण अभी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। वहां माँ का दूध सबसे सस्ता, सुरक्षित और असरदार उपाय है। ऐसे में ये थीम हमें याद दिलाती है कि स्तनपान केवल माँ की ही नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी है। यदि हम स्तनपान में निवेश करते हैं तो हम न केवल बच्चों का बल्कि पूरे देश का भविष्य बेहतर बना सकते हैं।
0: बहुत अच्छे से आपने इस विषय के बारे में, इस थीम के बारे में बताया है। अब हम आगे जानना चाहते हैं आपसे कि जन्म के 1 घंटे के भीतर और पहले 6 महीने तक स्तनपान कराना इतना जरूरी क्यों है?
1: देखिए, बच्चे को जो पैदा होते ही हम लोग कहते हैं कि 1 घंटा क्या, आधे घंटे के अंदर ही उसको दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू के आधे से 1 घंटे में वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब वो खूब तेज़ी से दूध पी सकता है। उसके बाद वो सोने लगता है तो वो दूध पीने में उसको परेशानी हो सकती है। दूसरा, शुरू का जो जब वो दूध 1 घंटे के अंदर अगर माँ का आंचल चूसता है तो दूध बनाने वाले हार्मोन भी बनने लगते हैं, जिससे अगर आगे की जब वो 3 घंटे बाद दूध पिएगा तो उसको दूध बना बना तैयार मिलेगा। बात दूसरी ये रही 6 महीने तक ही क्यों, तो 6 महीने तक माँ के दूध में पर्याप्त पोषण होते हैं जो बच्चे को ज़रूरत है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, और बहुत से खनिज पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो 6 महीने तक सभी ज़रूरतें बच्चे की पूरी करते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि शुरू के आधे 1 घंटे में आप दूध पिला दीजिए बच्चे को, जिसको कहते हैं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जाता है कि माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम क्यों अमूल्य होता है, ये भी कहते हैं कि कोलेस्ट्रम होता है माँ के पहले दूध में, तो वो अमूल्य क्यों होता है और इसे पहला टीका ही क्यों कहा जाता है?
1: जी देखिए, जब से माँ बच्चा पैदा करती है और माँ की जो अभी अब तक की जो उसकी जिंदगी गुजरी है, तो जितनी बार भी माँ बीमार हुई उसकी एंटीबॉडीज जो कि बीमारी से लड़ने की कोशिकाएं होती हैं वो बच्चे को जाती हैं माँ के दूध से। तो माँ के दूध कैसे जाएंगी शुरू के, जब वो कोलेस्ट्रॉम, इसको कहते हैं गोल्ड, कहते हैं गोल्ड है ये, माँ का जो पीला जो कोलेस्ट्रॉम निकलता है जिसे हम आम भाषा में खीज भी बोलते हैं, ये बच्चे के लिए ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन ए खूब अच्छा होता है, उसकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के पेट साफ़ करती हैं, उससे बच्चे को लैटिन अच्छा होता है तो उसको पीलिया नहीं होता। तो अगर हम वो शुरू का दूध नहीं देते हैं तो कई बीमारियों के से हम बचा नहीं सकते उस बच्चे को, इसलिए पहला जो गाढ़ा दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं वो देना ज़रूरी है। और इसको पहला टीका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब बीमारियों के लड़ने की एंटीबॉडीज़ होती हैं।
0: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बता दें कि स्तनपान से बच्चे और माँ किन किन बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं?
1: वेरी गुड, तो बच्चे किन बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं, पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसको दस्त नहीं लगते, पेट खराब नहीं होता, उस बच्चे को एलर्जी नहीं होती, उस बच्चे को कुपोषण नहीं होता, उस बच्चे को मोटापा नहीं बढ़ता। और जो मोटापा अगर बढ़ेगा तो बच्चा तो छोड़िए, जब वो बड़ा होगा तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी जो उसको जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें उसको होने लगेंगी जो बच्चा बच्चा रहता है। अब बात आपकी रहती है माँ किन बीमारियों से बची रहती है, तो माँ के लिए मैं बता दूँ, जब बच्चे को वो दूध पिलाती है तो ऐसे हार्मोन बनते हैं जो माँ को खुश रखते हैं, जो ऑक्सीटोसिन हम लोग कहते हैं। प्लस माँ को कैंसर नहीं होते कुछ, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर, मतलब उसको स्तन कैंसर से बचाव हो जाता है, उसको जो ओवरी यानी अंडाशय का कैंसर है उससे बचाव हो जाता है, और जब वो प्रेग्नेंट यानी जब वो गर्भावस्था में थी तो जो उसका वजन बढ़ गया था वो भी कम हो जाता है। तो जब वजन कम होता है तो कई बीमारियां कम हो जाती हैं औरतों को, जैसे उसको ब्लड प्रेशर कम आराम से ख़त्म हो जाएगा, उसका डायबिटीज़ कम हो जाएगी, उसको मोटापा कम हो रहा है, उसको जो एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस जो कहते हैं बोन की बीमारी, वो कम होती है। तो आप सोचिए कि माँ को कितना फ़ायदा हो रहा है, और खुश रहती है माँ क्योंकि हार्मोन ऐसे बनते हैं, तो ये माँ को फायदे हैं और बच्चे को तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी आप बताएं कि स्तनपान कराते समय माँ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सही स्थिति और जुड़ाव के कुछ आसान स्टेप्स बता दें हमारे श्रोताओं को तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: देखिए माँ को सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, हमेशा बच्चे को छूने से पहले एक बार हाथ धो ले और अपने स्तनों पर भी सफाई रखे। दूसरा, ये आप जिस स्थिति में भी पिलाना चाहें जिसमें आपको आसानी लगे आप दूध पिला सकती हैं, मतलब ये नहीं है कि लेट के पिलाएं साहब ना पिलाएं, लेकिन एक ध्यान रखना है कि लेट के अगर आप दूध पिला रही हैं तो लेटे लेटे सो मत जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सो जाती हैं तो जो आपका स्तन है वो बच्चे के मुंह और नाक को बंद कर लेता, हो सकता बच्चे का दम घुटने से मृत्यु हो जाए, तो हमेशा जगते हुए दूध पिलाएं। देखिए बच्चे को लेने का तरीका मैं आसान वे में बताता हूं कि चार सा होते हैं, वो चार सा क्या हैं, सबसे पहले बच्चे को सहारा दीजिए, पहला सा हो गया। दूसरा सहा है बच्चे को सीधा रखिए, सीधा का मतलब कान कंधा कोनी कूला एक सीध में होना चाहिए। तीसरा सहा है सामने, बच्चे को पूरा घुमा के अपने आंचल के सामने कर लीजिए। चौथा सहा है बच्चा संपर्क में रहे, ये चार चीज़ें हैं जो बच्चे को कैसे लेना है, चार चीज़ें हैं बच्चा कैसे आंचल को चूसेगा। उसके लिए हम बताते हैं कि जो बच्चे की ठुड्डी है यानी चिन, वो उसके माँ के स्तन से जुड़ी हो। दूसरा, बच्चे का मुंह में जो माँ का काला वाला भाग है, खाली निपिल नहीं, जिसको एरियोला कहते हैं हम, काला भाग वो मुंह में जाना चाहिए। देखिए निपिल में दूध नहीं होता, दूध होता है जो काला वाला भाग होता है स्तन का उसके नीचे, वो मुंह में जाना चाहिए। तीसरी चीज, बच्चे का होंठ बाहर को मुड़ा होना चाहिए। चौथा, बच्चे का मुंह बड़ा सा खुला होना चाहिए। ये चार चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चा दूध कैसे पी रहा है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, दूध बनाने का जो हार्मोन होता है वो रात में बनता है, तो रात में ज़रूर दूध पिलाइए। तो ये मेरे तरफ से एक थोड़ा सा ये है कि बीच में मैं बताता रहूंगा कि क्या बातों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी बता दीजिए कि शिशु को कितनी बार और कितनी देर तक स्तनपान कराना चाहिए, हर बार एक स्तन या दोनों स्तनों से दूध पिलाना क्या जरूरी है?
1: देखिए दूध दो तरीके का निकलता है हर स्तन से। शुरू का जो दूध होता है उसको फोर मिल्क कहते हैं, उसमें पानी ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है, उससे बच्चे की प्यास बुझती है। दूसरा जो बात को दूध निकलता है उसको हाइंड मिल्क कर रहे हैं, उसमें फैट ज़्यादा होता है, उससे बच्चे की भूख शांत होती है। तो एक आंचल से पूरा दूध पिलाने के बाद ही दूसरे आंचल पे लगाना चाहिए। अगर इधर उधर आप लगाएंगे तो बच्चा सिर्फ पानी पानी पिएगा और उसकी भूख शांत नहीं होगी और आपको लगेगा कि बच्चा भूखा रह जाता है। तो हमेशा एक आंचल से दूध पिलाने के बाद दूसरे आंचल से लगाइए। एक आंचल में दूध पिलाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, एक 15 से 20 मिनट, और आपको भी पता चल जाएगा अगर आप बच्चा दूध नहीं पी रहा और आप हाथ से दूध निकाल रही हैं तो शुरू का आपको लग जाएगा कि पतला पतला आ रहा, बात को गाढ़ा पीला आ रहा है, तो आप समझ जाइए जिसमें गाढ़ा पीला दूध निकल रहा है वो बात का दूध है। वो पूरा कंप्लीट बच्चा पी ले तभी बच्चे का एक तो वो उसका वजन भी बढ़ेगा और बच्चा आराम से सोएगा भी।
0: अच्छा माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा पर्याप्त दूध पी लिया है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है घर वालों को कि बच्चा रो रहा है तो उन्हें लगता है कि बच्चा भूख से रो रहा है। देखिए बच्चा खाली भूख से नहीं रोता, उसको कई समस्याएं होती हैं जिससे वो रोता है। अगर उसको गर्मी ज़्यादा लग रही, ठंड ज़्यादा लग रही, गीला हो गया, या कई लोग ऐसे आ गए जिनको वो पहचानता नहीं है, तब वो रोएगा। जो भी परेशानी वो रो के कहेगा क्योंकि बोलना तो आता नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए बच्चा भूख से रो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दूध सही हो रहा है? देखिए, बच्चा दूध पीने के बाद 6 से 7 बार पेशाब करेगा, नंबर एक। नंबर दो, बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 2-3 घंटे तक सोएगा। तीसरा, वजन 1 महीने में करीब 500 ग्राम बढ़ना चाहिए, वो बढ़ रहा है। बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रही, माँ को कोई परेशानी नहीं है, तो बच्चा दूध पर्याप्त हो रहा है। तो इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूध पे ध्यान देना चाहिए। तो ये घर वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तो दूसरी समस्याएं सही करिए, दूध तो पी रहा है वो।
0: कभी कभी क्या होता है कि माँ के स्तन में कम दूध बनता है या निप्पल में दर्द होता है, सूजन जैसी समस्याएं आ जाती हैं, तो क्या ये सामान्य है? पर आपकी क्या इस पर सलाह है?
1: हाँ देखिए, दूध कम बनता है तो ये कभी कभी माँ को लगता है ऐसा। दूध हमेशा जितना बच्चा जैसे पैदा होगा, मतलब कम वजन का होगा, कम वजन के हिसाब से बनता है। ज्यादा बड़ा बच्चा पैदा होगा, 3 किलो 4 किलो, उसके हिसाब से दूध बनता है। दूध पर्याप्त बनता है, लेकिन शर्त ये है कि बच्चे को आंचल पे चूसना चाहिए। अगर वो नहीं चूसेगा तो दूध कम बनेगा। अगर आपने दूध के साथ उसको बोतल लगा दी तब भी वो दूध नहीं बनेगा आपका। दूसरा ये है कि निपल में दर्द होता है, तो निपल में दर्द इसलिए हो रहा है, जैसा मैंने अभी बात बताई आपको, निपल में दूध नहीं होता, दूध होता है जो उसका काला भाग है, एरियोला जिसे कहते हैं। अगर बच्चा निपल चूस रहा है तब भी दर्द होगा, तो आप पहले उसको करेक्ट कर लीजिए कि निपल ना देके मुंह में, और उसके जो है पूरा काला वाला भाग दीजिए, तो निपल में दर्द कम हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, निपल में कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं, उसकी वजह से भी दर्द होता है। उसका इलाज क्या है? जो बाद वाला दूध होता है, जैसे मैंने हाइंड मिल्क का है, उस जो आपका निपल में जो घाव हो गया उस पर वो लगा लीजिए, उसी से सही हो जाएगा, अलग से कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे फफूंदी का कहते हैं, उसमें बहुत तेज दर्द होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे के अगर मुंह में झांक के देखेंगे तब भी आपको सफेद सफेद पपड़ी जैसी दिखेगी और आंचल पे भी दिखेगी। तो उसमें इलाज क्या होता है कि बच्चे का भी इलाज करते हैं हम लोग, और बच्चे के साथ उसकी माँ के निपल पे भी हम दवा लगवा देते हैं। तो ये तो निपल के दर्द की। कभी कभी क्या होता है, आंचल सूज जाते हैं। उस आंचल के सूजने का इलाज ये है कि हम आंचल को गर्म पानी से सिकाई करें, कपड़ा भिगो के सिकाई करें, हाथों से दूध निकाल दें, जब मुलायम हो जाए आंचल तो बच्चे को दूध पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद जो गोभी के पत्ते होते हैं उसको आप ठंडा करके या फ्रिज में रख के उससे सिकाई करें, बड़ी राहत मिलेगी। और पैरासिटामोल गोली डॉक्टर से पूछ के आप खा सकते हैं। तो इसका इलाज ये है।
0: अच्छा, तो क्या जो बच्चे 6 महीने से कम के हैं तो क्या उन्हें गाय का दूध या बोतल का दूध देना सही रहेगा?
1: बिल्कुल नहीं। जो बच्चे मैंने बताया 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, पर्याप्त पोषण है, वो एक बूंद पानी भी नहीं देते हैं, क्योंकि 88% माँ के दूध में पानी होता है। अगर राजस्थान में भी बच्चा पैदा हुआ होगा और वहाँ गर्मी देखें आप कितनी पड़ती है, तो उसको भी हम पानी नहीं देते हैं, तो वो माँ के दूध से हो जाता है। तो 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है। गाय भैंस का दूध गाय भैंस के बच्चे के लिए बना है, वो इंसान के बच्चे के लिए नहीं बना, क्योंकि गाय भैंस के दूध में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, और प्रोटीन क्या करती है, शरीर का साइज बढ़ाती है, दिमाग नहीं बढ़ाती। तो अगर हम अपने बच्चे का दिमाग बढ़ाना चाहते हैं तो माँ का दूध दें, और शुरू के 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध और खाना ऊपर का, उससे दिमाग का जो विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपने जानवर का दूध दिया तो दिमाग का विकास हैम्पर होगा, तो उससे उसका मानसिक विकास में बाधा पड़ेगी, तो मत दीजिए उसको गाय और भैंस का दूध। वो सिर्फ उनके बच्चों के लिए है जिनका गाय भैंस का जो बच्चे हैं उनके, इंसान के बच्चे के लिए सिर्फ इंसान का दूध है।
0: हाँ बिल्कुल। और अभी की अगर बात करें बदलते जीवन शैली की, तो बहुत सारी महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, कहीं संस्था में काम करती हैं, कोई महिलाएं खेती किसानी करती हैं, तो उनके लिए केवल स्तनपान कराना कैसे संभव है?
1: देखिए, अब जो एक तो वो था 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, ये तो उनके लिए जो ऑफिस में काम करती हैं, स्कूलों में जाती हैं, टीचर हैं, तो वो ले सकती हैं बच्चों को पालने के लिए। अब जो खेतों में काम करती हैं उनके लिए क्या है कि वो जब भी बच्चे घर पर हों तो बच्चे को दूध पिला के जाएं, और बीच बीच में वो अपना ब्रेक करके अपने घर पे आके दूध पिला सकती हैं, नहीं तो वो अपना दूध निकालती रहें जब भी उनको टाइम मिले, और दूध अपना जो है आपका जो घर का वातावरण है उसमें रख के 4 से 6 घंटे में उसको कोई भी कटोरी चम्मच से पिला सकता है। बोतल तब भी नहीं लगानी है, और डिब्बे का दूध ऊपर का गाय भैंस का दूध नहीं लगाना है। और कोशिश करें अगर आप जहां काम करती हैं वहां कुछ बच्चे रखने की सुविधा हो तो बच्चे को वहीं रखें, और वहीं बीच बीच में ब्रेक करके आप 3-3 घंटे पर दूध पिएगा आपका बच्चा, तो आप आके पिला सकती हैं। और एक दूसरी चीज़ होती है, अगर रात में आप उसको थोड़ा ज़्यादा दूध पिला दें तो दिन में कम भूख लगेगी, तो वो दिन में ज़्यादा दूध मांगेगा भी नहीं।
0: अच्छा, तो आपने जैसे बात करी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपना दूध निकाल के स्टोर कर सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो क्या तरीका है स्टोर करने का?
1: स्टोर करने का देखिए, जिनके घर में फ्रिज है वो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन लेकिन जिनके घर में फ्रिज नहीं है तो जो रूम टेम्परेचर होता है, मतलब कमरे का तापमान 26 से 30 के बीच में, उसमें वो 4 से 6 घंटे रख सकते हैं आराम से, और फ्रिज में अगर 24 घंटे तक हम रख सकते हैं। तो फ्रिज का दूध निकालने के बाद ठंडा होता है, वो एकदम से नहीं पिलाना है, उसको नॉर्मल आने दीजिए। अगर बहुत बच्चा रो रहा है, लगता है कि इसको जो है तुरंत पिलाना है, तो एक गर्म पानी में उसका बर्तन में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें वो जो आपने दूध फ्रिज का रखा उसको रख दीजिए, वो अपने आप थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, उसको आप चम्मच से या कटोरी से पिला दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि माँ को कोई गंभीर बीमारी हो गई, जैसे HIV हो गया, सीजेरियन डिलीवरी हुई, कमजोर या समय से पहले बच्चे का जन्म हो गया, तो ऐसे में स्तनपान कराना संभव है?
1: बिल्कुल। देखिए, जो HIV की बात कर लेता हूँ मैं, जो गाइडलाइन है वो उसके अनुसार तो यह है कि HIV की माँ अगर सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिला सकती है तो सिर्फ उसको अपना ही दूध पिलाना चाहिए, मिक्स फीडिंग नहीं करना है कि हम बोतल भी दे दे रहे हैं और HIV और अपना भी दूध पिला रहे हैं। अगर वो कहती है हम दोनों चीज़ें करेंगे तो फिर अपना दूध ना पिलाए, वो ऊपर का ही दूध पिलाए, फिर नहीं हम अलाउ करते हैं कि दोनों मिक्स फीडिंग, उससे HIV का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन हाँ, अगर वो अपना दूध पिला सकती है तो HIV पॉजिटिव मदर, साथ में कोई भी बीमारी वाली मदर, वो अपना दूध पिला सकती है, उसमें कोई मना नहीं है। अभी आपने देखा था कोविड हुआ था, कोविड में भी हमने बच्चे की माँ का ही दूध पिलवाया था। माँ को अगर ट्यूबरकुलोसिस है, मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर माँ को TB पता चली है, TB वाली माँ अगर 15 दिन के अंदर पता चली, अभी पता चली कि अभी TB थी डिलीवरी बाद, तो कोशिश करें कि दूध निकाल के पिलाएं, और अगर नहीं हो सकता तो अपना जो तरीका होता है मास्क लगा के हाथ धो के, उसमें दवा दोनों की चलेगी, बच्चे की भी चलेगी और माँ की भी चलेगी। और जैसे HIV पॉजिटिव मदर है, उसमें भी बच्चे की भी दवा चलती है और माँ की भी दवा चलती है, तो दूध अपना पिला सकती है। दूसरी चीज़ सिजेरियन, तो मैं जिस अस्पताल से आता हूँ वहाँ सिजेरियन खूब होते हैं, तो वहाँ हम लोग OT में ही, ऑपरेशन थिएटर में ही दूध पिला देते हैं। और उसमें क्या है कि माँ तो लेटी रहती, बैठ नहीं पाती, तो कोई भी घर का या हमारी आया वो बच्चे को मदद करके दूध मतलब माँ सीधी सीधी लेटी है, उल्टा लिटाल के दूध तुरंत हम 1 घंटे के अंदर पिला देते हैं, तो सीजेरियन वाली माँ दूध पिला सकती है। और अगर जिसका बच्चा दूध नहीं पी सकता, वो सीजेरियन वाली माँ अपना दूध हाथ से निकाल के भी बच्चे को दूध पिलवा सकती है घर का। दूसरी रह कम समय या कमज़ोर बच्चे जो कि आंचल को नहीं चूस पाते, जैसे मैंने बताया जो बच्चा 1800 ग्राम से कम का होता है या 34 हफ्ते से कम का होता है, वो आंचल को नहीं सक कर पाता, उसके लिए हम लोग दूध हाथ से निकलवा के और जैसा मतलब बताया कि कटोरी में निकाल के उसको चम्मच कटोरी से कोई पिला सकता है, किसी भी हालत में हमें बोतल नहीं लगानी है।
0: अच्छा, क्या कभी कभी ये भी होता है कि एक बच्चा है और माँ तुरंत गर्भवती हो जाती है, तो क्या ऐसी अवस्था में गर्भवती होने के बाद भी वो स्तनपान करा सकती है बच्चे को?
1: बिल्कुल, अगर ये खतरा ना हो कि उसको पहले प्री टर्म लेबर हुई हो या एबॉर्शन हो गया हो, उस केस में वो दूध नहीं पिला सकती। लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, पूरे दिन का बच्चा हुआ, तो कोई उसमें मना नहीं है, वो दूध कंटिन्यू कर सकती, बच्चे को पिला सकती है।
0: अच्छा, स्तनपान कराने से माँ और बच्चे को क्या लाभ होता है?
1: बहुत लाभ होता है, जैसा मैंने बताया कि बच्चे का संपूर्ण विकास, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो बच्चे का माँ के दूध से ही आता है। दूसरी चीज़, बच्चे का जो मानसिक लेवल है जिसे IQ कहते हैं, वो उन बच्चों में अच्छा होता है जो माँ का दूध पीते हैं। तीसरी चीज़, बच्चा का मोटापा नहीं होता। चौथी, आपका बच्चे को एलर्जी, दमा, ये सब शिकायतें नहीं होती आगे जाके। उसके बाद बहुत सी बीमारियाँ जो हम देखते हैं, आजकल भी देख रहे हैं कि हम लोग बुढ़ापे में जो देखते थे वो जवानी में देखने लगे, वजह यही है कि हम माँ के दूध से दूर हो रहे हैं। तो बच्चे को वो बीमारियाँ जो बुढ़ापे में होती हैं वो जवानी में नहीं होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, और आपका जितना ये गठिया वठिया जितनी सब चीज़ें हो रही हैं, कैंसर वैंसर से बचाव बहुत होता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। माँ को बहुत फ़ायदा है, माँ का जैसे मैंने बताया कि वज़न आपका बिल्कुल संतुलित हो जाता है, दोबारा गर्भवती नहीं हो सकती अगर वो बच्चे को दूध पिला रही, स्पेशली रात में उठ के पिला रही है, शुरू के 6 महीने कहते हैं, लेकिन आइडियली ये कि 6 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ साधन अपना लेना चाहिए, तो ये सोच के ना बैठे कि 6 महीने तक कोई डिलीवरी नहीं होगी, वो मतलब गर्भवती नहीं होगी। इसके बाद माँ को कैंसर, जो मैंने बताया कि आपका ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है,

0: बच्चे के हम कहते हैं शुरू के 1000 दिन, 1000 दिन में हम जो है शुरू के 9 महीने तो पेट वाले मानते हैं, फिर 2 साल हम मानते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद है। तो शुरू के जो 2-9 महीने हैं वो वही बच्चे का दिमाग सही रखेंगे जो माँ ने खाया पिया होगा। तो पोषण माँ का संतुलित होना चाहिए। संतुलित में क्या है कि एक तो जो उसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी घर में बन रहा है सब कुछ पहले खाना खाना है उसको, और अपनी रिक्वायरमेंट और दिनों से ज़्यादा रखना, क्योंकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी खाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बच्चा खुचा पहले बात सब खा लेंगे तो खुद खाएंगे ना, क्योंकि आप 2 जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको जो आप अस्पताल में दिखाते हो उसमें वो जो आयरन और कैल्शियम देते हैं आपको, मल्टीविटामिन देते हैं, वो आप ज़रूर लेते रहिए, क्योंकि वो भी पोषण का हिस्सा है। ये नहीं है कि गोलियाँ तो आप लिया है लेकिन आप उसको ले नहीं रहे। अगर खून की कमी होगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, उसमें भी खून की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी उसमें भी होगी। तो पोषण आप इसलिए अपना अच्छा रखिए कि जो बच्चा पैदा हो वो पूरे वजन का हो और उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। तो संतुलित आहार मतलब क्या है कि जो हम कहते हैं ना अलग अलग रंग का खाना, उसमें क्या होता है आपका हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, प्रोटीन की चीज़ें में क्या क्या आता है, दूध है, मक्खन, घी, ये लीजिए आप। उसके अलावा आपको क्या आता है जो हरे रंग के अलावा पीले रंग की जो चीज़ें होती हैं जिससे विटामिन ए जिसमें होता है, आंखों की रोशनी अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप वो लीजिए। अगर आप मांस खाती हैं तो मांस खाइए, नहीं मांस खाती हैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो कोई बात नहीं, वेजिटेरियन वाला खाना खाइए। सब चीज़ें आप बराबर लेके चलिए, ये नहीं है कि एक ही दिन में सब ले लें, एक हफ्ते में सब कुछ रिपीट करके लेते रहिए। ये नहीं कि दाल पक रही तो 5 दिन दाल ही पक रही है, बदल बदल के खाते रहिए।
1: डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए साथ में कि स्तनपान को सफल बनाने में परिवार और समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है।
0: बिल्कुल सही बात है। देखिए हम स्तनपान जो अभी हमारी दर है वो कितनी है ये मैं बता देता हूँ। हमारी अस्पताल में डिलीवरी 90% करीब हो रही है, और हम जो है माँ का दूध 1 घंटे के अंदर जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा 41% है, 41-42%। हम आधे से भी कम कोई पिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भागीदारी है लोगों की वो नहीं है इतनी अच्छी। तो हमें सभी के समुदाय को आना पड़ेगा, चाहे वो हमारे हेल्थ वर्कर हों, चाहे घर वाले हों, बच्चे को पैदा होते ही दूध शुरू करवा दें। फिर दूसरी चीज़, बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए, वो भी घट गया है, वो दर और घट गई। वजह क्या है? हम बोतल लगाने लग गए। उसमें समुदाय में घर के मेंबरों की बहुत भूमिका है, चाहे वो बच्चे का पिता हो, चाहे बच्चे की दादी हो, चाहे बच्चे की बुआ हो, जो भी घर में रहते हैं उनको उसको टोकना चाहिए कि इसको बोतल नहीं लगाना, ऊपर का दूध नहीं पिलाना है, सिर्फ माँ का दूध पिए। और उसमें समाज की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जागरूकता पैदा नहीं करेंगे इसके बारे में, जैसे कि आप लोग के माध्यम से आप ये लोग कम्युनिटी के लिए कर भी रहे हैं कि हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, सिर्फ माँ का दूध पिलाओ, माँ के दूध के अलावा कोई भी दूध बच्चे को नुकसान करेगा, उसकी मानसिक क्षमता भी कम हो जाएगी। तो ये भागीदारी कैसे होगी? जब सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई, चाहे ये आशा हुई या पंचायत मेंबर हुए, और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, मेन चीज़ जो है डॉक्टर हैं। अगर आप अपने क्लिनिक में बच्चे देख रहे हैं तो पहला ही सवाल पूछें कि कौन सा दूध पिला रहे हो। अगर वो नहीं पिला रहा तो उसको ये समझाएं कि जो दूध तुम नहीं पिला रहे हो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मेरा यही कहना है सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन सफलता तो मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने कहा कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सभी को सामने आना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हम जानना चाहते हैं कि समुदाय स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, पंचायत प्रतिनिधि, SHG महिलाओं का जो गाँव में ग्रुप बनता है, तो ये क्या कर सकते हैं स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए, आप हमें इसके बारे में बताएं।
0: देखिए छोटी छोटी जो अभी माएँ बन रही हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही हमें समझाना है एंटीनेटल पीरियड में। ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया तब हम कह रहे हैं दूध पिलाओ, तब तो उसके समझ में ना आना है। तो जब गर्भवती हो रही है, गर्भवती से भी पहले जब वो लड़की अपनी किशोरावस्था में आती है, तब उसको समझाना चाहिए कि स्तनपान का क्या महत्व है। उसके बाद जब वो शादी होती है, फिर वो अस्पताल जाती है, जब वो गर्भवती होती है, तब से समझाना शुरू करें। तब ये धीरे धीरे उसके समझ में आएगा क्यों जो है वो माँ का दूध ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब वो पैदा हो जाता है बच्चा, तो हमारे हेल्थ वर्कर को जो हमारा डिलीवरी करा रहा है उसे ज़रूर देखना चाहिए, जो मैंने पॉइंट बताए, बच्चा कैसे लिया, बच्चे का जब चूस रहा तो क्या देखना है, बच्चे के मुँह में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, माँ के ब्रेस्ट में कोई तकलीफ तो नहीं है, हो सकता निपिल ही ना बनाओ, तो ये हमारे हेल्थ वर्कर को। उसके बाद जब वो घर जाती है, तो घर जाने के बाद जो हमारी आशा बहन जी हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो घर जाती हैं, उसके विजिट करती हैं, उनको तब समझाना चाहिए कि आप कौन सा दूध पिला रही हो। और जैसा कि मैं बता रहा कि बोतल

0: और किसी भी उसका दूध ऊपर का जा मतलब गाय भैंस का बकरी का ये सब दूध अगर पिला रही तो उसे बताएं कि इससे क्या नुकसान होगा, इसको ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सब लोग अगर मिलके काम करेंगे तभी हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, वरना इतने दिनों से प्रोग्राम चल रहा है और अगर अब समाज की भागीदारी नहीं होगी तो हम कुछ भी कहते रहें बगैर इसके समझ किसी कोई हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।
1: अच्छा, मिथ्स के ऊपर आते हैं, बहुत सारे गाँव में अभी भी मिथ्स है कि बच्चा पैदा होता है तो बुआ आती हैं या चाची आती हैं शहद चटाती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, देखिए शहद अब क्या है, शहद पहली बात तो किन हाथों से बना, कहाँ से उसने स्टोर किया, कितनी गंदगी उस शहद में। फिर बच्चे के पेट में जो माँ का दूध जाना चाहिए था वो आपने दूध की जगह उसको भर दिया शहद से, तो बच्चा दूध क्यों पिएगा? फिर शहद में कितना मीठा होता है, हम कहते हैं मीठा मत दो बच्चे को, उसकी आदत बन जाएगी मीठे की। और माँ का दूध आपका भी देखना है तो माँ का दूध ऐसा होता है जैसे नमकीन जैसा, जैसे पसीना निकलता है हमारा, तो बच्चे की आदत हमने वहीं से बिगाड़ दी, बीमारी दे दी। बच्चे का पेट जब पैदा होता है तो एक मूँगफली के दाने के बराबर होता है, तो या तो हम माँ के दूध से उसको भर दें या शहद से भर दें, तो नुकसान करना शुरू कर दिया, वहीं से इन्फेक्शन दे रहे हैं बच्चे को, हम बच्चे को वहीं से आदत बिगाड़ रहे हैं, वहीं से हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को माँ के दूध से अलग कर रहे हैं। तो जब बच्चा माँ के आंचल पर चूसेगा नहीं तो दूध बनाने के हार्मोन कहाँ से बनेंगे, तो ये सब चीज़ें देनी ही नहीं है। अगर आंचल को चूसने लगे बच्चा उसी से दूध बनने लगेगा।
1: अच्छा, कभी कभी होता है कि जो माँ बनती है नई नई माँ उनको उतना अनुभव नहीं होता है और जब बच्चा रोने लगता है तो उनको लगता है कि बच्चे को भूख ही लगी हो, तो माँ कैसे उसे समझे कि अब बच्चे को भूख लगी है अब उसको दूध पिलाना चाहिए?
0: हाँ देखिए, बच्चा जब भूखा होता है तो सबसे पहले वो अपनी नज़रें घुमाना शुरू कर देता है, इधर उधर देखना शुरू करेगा, मुँह घुमाएगा, मुँह खोलेगा, ठीक है, और हाथ पैर चलाएगा। सबसे बाद में रोता है जब बिल्कुल उसको अब तवज्जो नहीं दी जाती है, तो आप रोने से पहले समझ लीजिए अगर बच्चा मुंह चला रहा है, मुंह खोल रहा है, चूसने जैसा मुंह बना रहा है, आंखें इधर उधर घुमा रहा है, कमरा देख रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको दूध पिलाना है। जब आप उसको आंचल देंगी तो वो फौरन चूसने लगेगा। अगर वो रो गया बच्चा तो समझ लीजिए वो बिल्कुल इंतहा हो गई उसके सब्र की, वो आने मत दीजिए, फिर छुपाने में बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले पहचान लीजिए तो पता चल जाता कि बच्चा भूखा है, और ये माँ जो जिनके बच्चा होता है ना वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पहचानती हैं, उन्हें पता होता है किस बात से रो रहा है, भूख से रो रहा है या कोई परेशानी है, वो बता दें डॉक्टर साहब इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ तुम्हें कैसे पता चला, इसने तो कहा नहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं डॉक्टर साहब हमें लगता है, तो वो सही बात है, माँ पहचान लेती है, तो वो भूख से कब बच्चा तो माँ उसी वक्त दूध दे दे तो बच्चा सही रहता है।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने स्तनपान सप्ताह पर बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक हमारे श्रोताओं को बताया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक आप सुनते रहिए सेहत से ही लाभ कहीं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली। और बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट अपने टाइम पर हम आ गए हैं फिर से आपसे बहुत सारी बातें करने, आपको बहुत कुछ बताने, आपसे बहुत कुछ शेयर करने, क्योंकि भाई आज का दिन है बहुत ही शानदार। अब आप सोच रहे होंगे कि दिन शानदार क्यों है, तो दिन आज का शानदार इसलिए है क्योंकि आज हमारा बहुत ही प्यारा सा डे यानी कि ट्यूसडे आज का दिन जो कि हम मनाते हैं हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अच्छे अच्छे दोस्तों के लिए। लेकिन वो सबसे पहले भाई आदाब नमस्कार कर लिया है और अब आपका हालचाल भी हम पूछना चाहते हैं, कैसे हैं आप सब, फटाफट से बताइए अपना हालचाल। और उसी के साथ आज मस्ती तो चरम पे होने ही वाली है और मस्ती करने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए, आप सभी को बहुत कुछ बताने के लिए हमारे साथ कोई जुड़ने भी वाला है। लेकिन कौन जुड़ने वाला है, क्या बताने वाला है, ये सब अभी के लिए सीक्रेट हम रखते हैं और आपको कह तो देते हैं। पहले आपसे बातें शुरू तो कर दें, आपको कह तो दें जो हम सुन सहेली में हमेशा ही दस्तूर से कहते हैं। यह आपका पसंदीदा शो सुन सहेली शुरू भी हो गया है और साथ ही साथ में भाई दोपहरिया है बहुत ही प्यारी सी और मौसम तो कुछ बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये मौसम हमारे लिए क्या लाने वाला है ये बताएंगे आपको। और अभी अभी हमने कहा था मीठी मीठी बातें लेकर कोई जुड़ने वाला है, लेकिन वो कौन जुड़ने वाला है ये हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि अब भाई सहेलियों का प्रोग्राम है। आप तो जानते हैं कि हमारी सुन सहेली में हम सहेलियों को लेते हैं, दस्तूर भी कुछ सहेलियों का ही होता है। तो अब आज मैं अकेले कैसे आ जाऊंगी, लेकिन जिन्हें मैं साथ लाई हूँ, आप तो जानते हैं कि सुन सहेली में क्या होता है। सुन सहेली में जब मैम होती हैं, यानी कि आपकी प्यारी आर्टिस्ट समता जी होती हैं और मैं होती हूँ, जो कि आज मैम नहीं है बट कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो आ जाएंगी, तो मैं हमेशा दो लाइन बोलती हूँ और दो लाइन से उनका वेलकम करती हूँ और फिर वो अपनी बात शुरू करती हैं। तो भाई मैंने कहा पहले ही कि हमने किसी खास को बुलाया है और कोई खास आया है, तो जब कोई खास आया है तो फिर उसके लिए लाइंस तो बनती हैं, इंट्रोड्यूस कराना भी बनता है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम उन खास पर्सन को यानी कि हमारी जो खास सहेली हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा लेते हैं और फिर साथ में आपको शुभ दोपहरिया बोलते हैं और शुरुआत करते हैं। तो दो लाइंस उनके लिए, देखते हैं उन्हें पसंद आती है या नहीं। अब पसंद आए या ना आए भाई, जैसे मैम हमेशा कहती है ना कि तुम मेरे लिए पढ़ देती हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो अब देखते हैं कि उन्हें कैसा लगता है। तो लाइंस ये हैं कि हमारी स्टूडियो में छाई हुई है खुशी खुशी खुशी, क्योंकि आ गई हैं आपकी अपनी आरजे आयुषी। तो चलिए वेलकम कर लेते हैं।
1: थैंक यू सो मच अंशिका, इतना प्यारा वेलकम किया और मुझे लग रहा था कि तुम खुशी खुशी कर रही हो। ये खुशी नाम की नई लड़की क्या हमारे स्टूडियो में आ गई है, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम मेरे ही नाम को राइम कर रही थी आयुषी से। थैंक यू सो मच,
0: यू वेलकम।
1: सबसे बड़ी बात भाई वेलकम हो गया मेरा, आपने जैसा किया, और साथ ही साथ अब हम दोनों ही का फर्ज बनता है कि हम अपने लिसनर को वेलकम करें।
0: बिल्कुल,
1: देखिए वेरी गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून गुड तब बनती है जब हमारे दोस्तों का साथ होता है, और जो ये सुन सहेली प्रोग्राम है ये उसी साथ के लिए। अभी आप क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग खाना खा चुके होंगे। अब ये वक्त है थोड़ा सा आराम करने का, अवधि में कहें तो थोड़ा सा सुताने का। लेकिन भैया आराम तब होता है जब हम थोड़ी सी दिल को हल्का करते हैं, थोड़ी सी मन की बातें करते हैं और अपने दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो भाई शेयर तो हम भी करेंगे आपसे, और वो भी एक नहीं दो नहीं कई सारी चीज़ें, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि इस जो ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो बातें हो रही हैं, इसको दो तरफा करने के लिए, क्योंकि एक तरफा कुछ भी हो मज़ा नहीं आता। तो भाई आप भी आइए चैट बॉक्स में और हमारे बातों पर अपना मत ज़रूर रखें। साथ ही साथ कैसे हैं आप सब भाई। देखिए लास्ट वीक जो बारिश हुई थी ना, उसमें हम सभी गोंडा वासियों का दिल तो बहुत ज्यादा खुश कर दिया था। मतलब दिल जैसे हो गया था अंशिका कि कहते ना बाग बाग हो गया हमारा दिल,
0: ये तो हुआ।
1: और बारिश में ऐसे अलग से एक एनर्जी आ गई थी हमारे अंदर। लेकिन जब से ये बारिश खत्म हुई है, ये धूप हुई है, इतनी उमस होने लग गई, इतनी ह्यूमिडिटी होने लग गई है कि भाई गर्मी में इंसान की हालत खराब हो गई है।
0: हाँ ये तो है।
1: और इस हालत खराब में हम फिर से याद कर रहे हैं अपनी बारिश को। और बारिश का मौसम तो जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि हमारे जुलाई के आखिर हफ्ते में आएगा
0: जी।
1: लेकिन इसने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और थोड़ा सा पहले आ गया। हम तो भाई यही कहेंगे भगवान से कि इसको अच्छा खासा टाइम दे जिससे कि हमारी धरती ठंडी हो और सबसे बड़ी बात है हम सबका दिमाग ठंडा हो।
0: दिमाग ठंडा होना तो बहुत जरूरी है।
1: कहे कि भैया देखिए ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, और उत्तर प्रदेश को छोड़ो अगर हम बात अपने गोंडा की करते हैं तो गोंडा एक चीज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। बताओ क्या?
0: क्या?
1: गुंडई। गुंडई यानी भैया लड़ाई झगड़ा तो यहाँ होना है और हर गली के कोने में कोई एक ढाबली होगी जहाँ पे अक्सर आपको ये सुनाई देता होगा कि भैया दो गुटों में मारपीट हो गई, दो लड़कों में मारपीट हो गई या कहीं ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा। और अगर वहां भी नहीं सुनाई दे रहा है ना तो एक चीज है जो हम सभी ने सुना है, भैया हमारे गली मोहल्ले की दो आंटी के बीच में अच्छी सी उठा पटक हो जाना। ऐसी उठा पटक होती है ना कि दोनों आंटियों में ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है। ये सारी चीजें तो हम जरूर देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे कितना इंसान का दिमाग गर्म हो रखा है। और गर्मी है तब तो भाई ये तो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग शांत करिए, भगवान मौसम भी शांत करेंगे और आपके दिमाग को भी थोड़ा सा शांत करेंगे। वैसे अपना भी कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा कम, ठीक है, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर की चीजों को यानी हमारी बॉडी के अंदर की चीजों को लाइक आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, इसको बहुत ज्यादा उथल पुथल कर देती है।
0: यानी कि आरजे आयुषी के कहने का कंक्लूजन ये है कि गुस्से को थोड़ा करें थोड़ा सा कम और रहें नरम, राइट?
1: बिल्कुल।
0: तो वही नरम रहते हैं और नरमता की तरफ चलने से पहले हमारा जो रोज का रूटीन है, जो दस्तूर है, वो पूरा कर लेते हैं कि चलिए आप सभी को विश कर देते हैं। हम बारी बारी विश करते हैं, पहले मैं करूंगी और फिर आयुषी कि भाई दोपहरिया बहुत प्यारी है, तो आप सभी को शुभ दोपहरिया।
1: बिल्कुल शुभ दोपहरिया भाई आप सभी को। और अभी जैसे मैं लड़ाई के बारे में बात कर रही थी अंशिका, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लड़ाई याद आई अपने मोहल्ले की, कहो तो मैं सुनाऊं।
0: बिल्कुल नेकी और पूछ मतलब आप कहें और हम ना सुने ऐसा कैसे हो सकता।
1: देखिए मौसम कुछ यही था जुलाई का लास्ट ईयर में, और हमारा जो मोहल्ला है वो थोड़ा सा नगर निगम में नहीं आता है, तो उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं हो रखी है।
0: ओके।
1: रोड जो है वो ईंट की बनी हुई है लेकिन पक्की नहीं हुई है, जो गली वली हमारी है। तो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ एक आंटी हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को बनती हैं, मतलब हर मोहल्ले में होती हैं और हमारे यहाँ भी है कि अरे नहीं ऐसा नहीं, दूसरा अगर अपने ही घर के बगल कूड़ा डाल रहा है या सामने ही कूड़ा डाल ले तो उन्हें बड़ा कष्ट हो जाता था। मतलब वो एक ऐसी आंटी है जिन्हें दूसरे के काम में टांग अड़ाने की बड़ी पुरानी आदत है और उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा था।
0: ओके।
1: एक दिन क्या हुआ कि एक लोगों के घर में जो है उनके यहाँ खुदाई हो रही थी, ठीक है, उनके यहाँ बेसमेंट बन रहा था, तो उनके वो जब खुदाई कर रहे थे तो उनके बेसमेंट में पानी निकलने लग गया जमीन से।
0: ओके।
1: अब वो पानी ज्यादा हो गया, उसको निकालने के लिए उन्होंने मोटर लगा ली। अब मोटर लगाया तो सारा पानी अब वो कहाँ ही फेंके, नाली तो थी नहीं वहां पे, तो उन्होंने क्या किया वो सारा पानी गली में डाल दिया। हालांकि गली में पानी भरा नहीं, वो बह गया सारा और सूख गया धूप के कारण, लेकिन वो आंटी है ना उनको तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा अरे ये देख रहे हैं ये तालाब बन गया है हमारा मोहल्ला, और उन्होंने दूसरी आंटी को बहुत अच्छे से ताना दे दिया।
0: Okay.
1: अब गेस करो कि अगले ही हफ्ते क्या हुआ होगा।
0: अगले ही हफ्ते क्या हुआ,
1: गेस करो।
0: झगड़ा फिर से?
1: अरे झगड़ा नहीं भाई, देखिए सही का साथ ना भगवान हमेशा देते हैं, ये इस कहानी का हालांकि एक लेसन है, लेकिन ये कहानी पूरी होने से पहले मैंने आपको बता दिया। देखिए अगले ही हफ्ते क्या हुआ कि बहुत जोर की बारिश हुई और हमारे मोहल्ले में पानी भर गया।
0: ओके।
1: और उस पे भी सोने पे सुहागा क्या हुआ कि वो आंटी जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के कहीं पे और उनकी गाड़ी फिसल गई और वो उसी पानी में गिर गई।
0: सो सैड। सैड के साथ थोड़ा सा फनी भी था।
1: नहीं भाई देखिए अगले वाले को तो बहुत ही मजा आया क्योंकि पूरा मोहल्ला उस आंटी से परेशान था, लेकिन आंटी को मजा तो चखाया गया भाई, वो भी भगवान की तरफ से।
0: इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी बुरा सोचने से पहले या बुरा करने से पहले थोड़ा सा देख लें, क्योंकि भाई कोई देखे या नहीं देखे वो सब देखता है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए अब चलते हैं, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी हो गई और मजा भी बहुत आया और लिसनर्स को भी आई होप मजा आया। अब हम चलते हैं हमारे स्टार्टिंग वाले सेगमेंट की तरफ जो कि होती है पोएट्री। तो आज पोएट्री क्या है? आज हमारा दिन, जैसा कि हमारे लिसनर्स जानते हैं कि बच्चों के लिए है, तो आज कुछ बचपन को याद करते हैं फिर से। और अभी अभी आयुषी ने कहा था कि बारिश बहुत याद आ रही है, क्योंकि भाई बारिश अभी कुछ दिन पहले तक तो अच्छी हो रही थी बट इधर नहीं हो रही है, तो चलिए कुछ बारिश को याद करते हैं, लेकिन आज बचपन वाली बारिश को याद करते हैं, वो कैसी होती थी। तो मैं कुछ लाइंस अभी पढ़ती हूँ आपके लिए, आपको सुनाती हूँ, तो सुनिए और समझिए कि बचपन वाली बारिश कैसी होती थी। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन कितना प्यारा था, न सुबह की फिक्र थी न शाम का ठिकाना था, थक कर स्कूल से आना फिर खेलने चले जाना, पल में कट्टी पल में बट्टी, वो रूठना और वो मनाना, दादी की कहानियों में डूबा वो परियों का जवाना था, छोटी छोटी बातों पर वो खुल कर मुस्कुराना, मिट्टी में सने हाथ और वो ज़मीन पर सो जाना। अब तो बस यादें बची हैं, अब तो बस यादें बची हैं उस बीते कल की, कोई लौटा दे मुझे वो मेरा प्यारा जवाना, कोई लौटा दे मुझे वो मेरा प्यारा जवाना।
1: क्या पोएम आपने बोली भाई, हमारे लिसनर तारीफ करें। इससे पहले मैं तारीफ कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपके पास ही हूँ और हमारे लिसनर सबसे पहले तारीफ करेंगे, उससे पहले मैं आ जाऊँगी। देखिए भैया, कहानी एक है जो हमारी बचपन की है, और बचपन की जो कहानियाँ हैं इसको एक भाग्य में पिरोना, ये काम हमारी आर्जे अंशिका करती है। यानी कि हर एक एक चीज़ को, हर एक एक इमोशन को ये कुछ पोएट्री में ले आती है, उसको पोएम में पिरो के हमारे सामने लाती हैं। और ये वाली तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे बचपन की याद दिला दिया कि मतलब अब देखिए, बचपन में बारिश में क्या आपने सबसे पक्की नाव चलाई है?
0: सबसे पक्की नाव मतलब?
1: हाँ, अरे कागज की नाव,
0: वो तो बहुत चलाई है।
1: अरे वो इतनी पक्की होती थी क्योंकि उसमें हमारी उम्मीदें रहती थी कि हाँ, क्या ये जो नाव है ये पानी पार कर पाएगा। और पीछे से हमारी मम्मी की आवाज आती थी कि जो कपड़े गंदे हुए ना तो सबसे पहले तुम्हें ही धोया जाएगा,
0: कपड़ों को बाद में।
1: तो ये सारी चीजें हमारे बचपन की हैं जो आपने कहीं ना कहीं मेरे को फिर से याद करा दिया कि हमारे बचपन में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। अब बाकी हम बातें सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले लिसनर के पास भी जाएंगे भाई, बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं।
0: बिल्कुल, तो अगर चलेंगे हम मैसेजेस की तरफ तो सबसे पहले चमन जी जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड एवरीवन, और मैम ने मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। ओके, मैं बोलने वाला था, तो वो बोलने वाले थे, कोई बात नहीं चमन जी, ऐसा होता है कि कभी हम आपकी बातों को कह देते हैं और कभी आप हमारी बातों को कह देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ चमन जी ही आए हैं, तब तक मैं और भी अपने जो भी लिसनर्स हैं उनसे कहना चाहूँगी फटाफट से आइए।
1: बिल्कुल, फटाफट से आइए, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक बहुत ही अच्छी कश्मकश में डाल जाती हूँ मैं।
0: और वो क्या है कश्मकश?
1: अच्छा देखो, कभी हम लोग मिठाइयाँ देखते हैं या रसगुल्ले देखते हैं तो हमारे मुंह में बहुत पानी आता है ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम पानी देखते हैं तो हमारे मुंह में रसगुल्ला आ जाए?
0: मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों नहीं होता।
1: अब ये क्यों नहीं होता है ये हमारे लिसनर पे सोचने के ऊपर डाल देते हैं। आप सोचिए और बताइए कि हम जब पानी देखें तो हमारे मुंह में भी रसगुल्ला आना चाहिए ना, मतलब डील तो बराबर बराबर की होनी चाहिए।
0: हाँ होनी तो चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये सवाल है और सवाल का जवाब आप भी ढूंढ रहे लिसनर, और मैं भी सोचती हूँ ढूंढती हूँ कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, और अभी पोएम हुई, हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की, रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ अभी बाकी है। तो आते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार और आपको बताते हैं कि क्या कहता है आपका आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है? स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक लिसनर, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आयुषी और आज मैं हूँ आपके अपने शो सुन सहेली में और हमारी जो मेन लीड है हमारी अंशिका जी वो भी आ चुकी हैं। भैया देखिए, अंशिका के अंदर ना जब ट्यूसडे आता है तो एक बच्चा उत्पन्न हो जाता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें करती हैं, ऐसे बच्चों वाली बातें करती हैं कि समझ ही नहीं आता। अब आप सोचिए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ के गई थी और हम सभी जानते हैं कि यार ये तो मजाक चल रहा था, कहाँ पानी देख के रसगुल्ला आता है। लेकिन अंशिका पिछले 15 मिनट से बैठ के सोच रही है कि ये तो होना ही चाहिए कि पानी देख के रसगुल्ला आना ही चाहिए। अब आपको पता है कि ऐसा ये क्यों सोच रही थी? मैं बताती हूँ भाई, क्योंकि इनका रसगुल्ला फेवरेट है।
3: ये आपको कैसे पता चल गया?
2: बस पला फेवरेट है।
3: ये आपको कैसे पता चल गया?
2: बस पता चल जाता है दोस्तों को सब कुछ।
3: और पता चला है और बिल्कुल सही करेक्ट पता चला है, क्योंकि वाकई में मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है।
2: अब बात यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन आज हमने ये जो जादू किया ना अंशिका पे, अब इसका असर जाएगा इनके पापा के पास, क्योंकि घर जाते ही डिमांड करेंगे पापा रसगुल्ला ले आओ।
3: और पापा के उधर से जवाब आएगा, बेटा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब मैं कहूंगी क्यों, पापा से क्यों कहूंगी, अभी मैं जाते जाते रसगुल्ले लेते हुए घर जाऊंगी।
2: ठीक है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, कल यहाँ भी ले आइएगा।
3: बिल्कुल सेल्फ, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नो डिपेंडेंसी, और खाने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं खैर, मजाक था, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या है। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है कि करने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ न्यू करने जा रहा है तो उसके लिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली का भरोसा होना चाहिए, उसके अपनों को उस पर ये यकीन होना चाहिए कि अगर आप इसमें जा रहे हैं, न्यूली ट्राई कर रहे हैं तो आप कर पाओगे। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को इतना ज़्यादा बिल्कुल वो कर देते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, यार नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम कोशिश ही मत करो, रहने दो, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाता है। इसलिए आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही है कि अपने बच्चे को ढेर सारा मोटिवेशन दीजिए, उसे पे बहुत ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट और आपका मोटिवेशन ही उसे लाइफ में आगे ले जाएगा और फिर कितनी भी मुश्किल हो सिचुएशन वो डील कर लेगा। तो भरोसा करना बहुत ज़रूरी है।
2: देखिए, भरोसे से मुझे याद आया कि आज का, जैसा कि ये बच्चों का आज शो चल रहा है और जब हम बात बच्चों की करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी ने ये अपने घर में बहुत कॉमन देखा है, और जितने माँ बाप हमें सुन रहे होंगे वो भी अगर अपने बड़ापन की, हम तो बड़े हैं, हम तो गलत हो नहीं सकते, उसको साइड में रख के एक बार को सोचें, बच्चे की जगह खुद को रख के सोचें, तो कितनी बार जाने अनजाने में हम माँ बाप यानी जो घर के बड़े होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं। मतलब वो करना नहीं चाहते पर उनके जो शब्द होते हैं, जो बातें होती हैं, वो बच्चे को बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, लाइक कोई बहुत बड़ा एग्जाम देने वाला होता है और उन्हें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो अपने घर वालों से ऑब्वियसली बात उन्हें बताएगा कि हाँ पापा या मम्मी मुझे ये एग्ज़ाम देना है, तो कई सारे माँ बाप ये बच्चे की पोटेंशियल को इस तरीके से सामने रखते हैं उसके कि बच्चा खुद डीमोटिवेट हो जाता है, अरे ये तो बड़ा टफ एग्जाम है, तुमसे नहीं हो पाएगा, जहन दो फालतू में पैसे ही बर्बाद जाएंगे।
3: राइट
2: तो कहीं ना कहीं वो बच्चे ने ट्राई करने की सोची, उसने अपने से एक कदम बढ़ाया, लेकिन आपने उसे 10 कदम पकड़ के नीचे दबा दिया।
3: बिल्कुल,
2: और इसकी वजह से अगर वो चाहे उस एग्जाम को क्रैक कर भी सकता था, फिर भी उसके मन में डाउट होगा कि शायद ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो 25 साल की उम्र तक लगभग यही चलता है, साइकोलॉजी में भी ये प्रूवन है कि वो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए और दूसरों के लिए जो दूसरे सही समझते हैं वो करने के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप ये कह रहे हैं तो उनके दिमाग में भी ये स्टोर हो जाता है कि शायद मैं ना कर पाऊँ।
3: बिल्कुल, तो इस बात को अपने बच्चे के मन से, उसके दिमाग से निकालें, वो कर पाएगा और बहुत ही बेहतर करेगा। तो चलिए आते हैं आज के हमारे सबसे पहले वाले टॉपिक पे, जो कि है कि आज भाई हम बात कर रहे हैं बच्चों की। तो जब बच्चों की बात होती है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिन की जो पेरेंटिंग होती है वो उनके पेरेंट्स अगर जॉब में हैं तो वो नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो बेबी सिटर या नैनी के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ पलते हैं और उन्हीं के साथ बड़े होते हैं। और अगर ये कंडीशन बच्चों में हो जाती है तो क्या असर पड़ता है इसका उनकी मेंटल हेल्थ पर, और कैसे बच्चे की पेरेंटिंग होती है, कैसे वो बड़ा होता है, किन ख्यालों के साथ, किन बातों के साथ, आज हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ता है बच्चे पे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बच्चे को बेबी सिटर के साथ अगर वो पूरा दिन रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बातें कर रहा है, तो वहाँ जो सबसे पहली प्रॉब्लम खड़ी होती है वो ये खड़ी हो जाती है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर उसके माँ बाप उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो उनसे दूर होने लगता है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि भले आप बेबी सिटर के साथ पूरा दिन रखिए उसे, लेकिन थोड़ा सा टाइम खुद के साथ भी उसको स्पेंड करने दीजिए। क्योंकि जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सी पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है। और अगर वो टाइम उन्हें बिल्कुल नहीं मिलता है तो धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ने

0: लगती है।
1: बिल्कुल, और जब आप बेबी सीटर की बात कर रही हैं तो मैं एक बहुत ही बहुत ज़्यादा अहम चीज़ मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ। देखिए, हमारे गोंडा में भी कई सारे बेबी सीटर हैं और जहाँ से भी हमें लोग सुनना, अक्सर हर शहर में ये होते ही होते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ जितना ये आपके लिए आपको प्रॉफिट पहुंचाते हैं कि आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो आपके बच्चे की देखभाल करते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं आपके बच्चे के लिए हानिकारक भी होता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जो इसके हार्म मतलब आप कैसे जो नेगेटिव इफेक्ट है उसे हम कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही कम कर सकते हैं, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को किसी बेबी सीटर पर दे भी देते हैं कि आप इसका ख्याल रखें या ध्यान रखें आपको, क्योंकि देखिए आप माँ बाप के लिए उनके बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होते हैं उनके लिए, वो उन्हें कहीं अलग जाते नहीं, और बहुत ही दबे मन से माँ बाप अपने बच्चे को बेबी सीटर भेजते भी हैं। तो जब आप अपने दिल के टुकड़े को किसी और के हाथ सौंप रहे हैं दिन के कुछ घंटों के लिए, तो एटलीस्ट आपको वहाँ की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि वो कहाँ है, क्या पहले वो जब से वो स्टार्ट हुआ उसके रिकॉर्ड सही हैं, क्या यहाँ पे पहले कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई है लापरवाही से, या फिर वहाँ के जो मालिक हैं उनके बारे में जानकारी, जैसे आप अपने घर किसी को रखते हैं तो उसके बारे में जानकारी देखते हैं ना, बिल्कुल ठीक उस तरीके से आपको भी वहाँ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ के नंबर, वहाँ के मेन ओनर का नंबर, जो टीचर या जो भी केयर टेकर उनका ध्यान रख रही है उसका नंबर, और यहाँ तक कि आज जो मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे जो पता है दिल्ली और लखनऊ का, तो वहाँ पे आजकल जो माँ बाप होते हैं उनको वहाँ की जो CCTV होती है वो उनके बच्चों को भी उनके पेरेंट्स को भी प्रोवाइड की जाती है कि आप जहाँ भी हैं अपने वर्क से एक बार आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं अपने फ़ोन को कि आपका बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है या कहाँ है या क्या व्यवहार हो रहा है, क्योंकि बेबी सीटर में भी बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जो हम सब सुनते भी हैं और वो कहीं ना कहीं हम सबका दिल भी दहला देते हैं।
0: राइट, बिल्कुल सही पॉइंट्स बताए आयुषी ने अभी आपको कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हमने अभी सुना कि कुछ प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान रखें बहुत संभल करके, और कहीं ना कहीं इसका असर बच्चे की मेंटल कंडीशन पे ना हो इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे
1: आप जब बेबी सीटर में अपने बच्चों को देते हैं तो कई जगह ये भी उनका एक ये भी रहता है कि आपके बच्चे अगर 6-7 घंटा रह रहे हैं तो उनको एक टाइम का खाना भी वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी खाना बना रहे हैं आप ये बिल्कुल से श्योर कर लीजिए कि वो खाना सही से साफ तरीके से बन रहा है या फिर नहीं। अगर आपके बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी है आप उसकी भी डिटेल बताइए, उसके हेल्थ इश्यूज़ अगर है वो बताइए, और साथ ही साथ ये बिल्कुल आप वहाँ पे देख लें कि जो भी इंसान आपके बच्चे के साथ रह रहा है उसकी देखभाल कर रहा है वो प्रोफेशनल हो, क्योंकि कई सारे बेबी सीटर ऐसे भी होते हैं जो रैंडमली लोगों को पकड़ लेते हैं कि आपको बस बच्चे का ध्यान
0: रखना है।
1: लेकिन बच्चे का ध्यान रखना भी एक कला होती है जो हमारे घर के, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे घर में बच्चे आते हैं तो अरे किसी अनुभवी को बुलाओ, हमारी दादी नानी को बुलाओ, क्योंकि उन्हें अनुभव है, उन्होंने कुछ सीखा है और वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेन हो रखे हैं। इसी तरीके से जो वहाँ पे हैं उनको कोई अनुभव है या नहीं, वो प्रोफेशनल है या नहीं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में भी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अब जैसे कि बात आती है तो हम कहते हैं ना कि अरे बच्चे को खाना खिला दीजिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम बेबी सिटर से ही कहते हैं कि आप बच्चे को खाना खिला दीजिए, लेकिन खाना खिलाने का भी क्या तरीका होता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को हर कोई खाना नहीं खिला सकता है, ऐसा नहीं होता है कि अरे उनकी उनकी गोद में भी दे दो वो भी खिला देंगे, उनकी गोद में भी दे दो, कोई एक स्पेसिफिक ही होगा जो बच्चे को आसानी से अच्छे से खिला सकता है। ठीक उसी तरीके से जिसके भी हाथ में बेबी है वो कितना सेफ है, कितना सही है और कितना उनको उस चीज़ पे उनका कॉन्फिडेंस है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं कि इसके ऐसे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो बच्चे पे कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ पे असर डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं बच्चा अपने माता पिता से दूर होने लगता है अगर उसे प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दें। देखिए, जैसे मान लीजिए 7-8 घंटे वो रह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उसे टाइम देना है। जब वो घर आए तो उससे पूछना है कि बेटा आज आपका पूरा दिन कैसा गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी। अगर कोई बात है भी, मान लीजिए वो वहाँ पर किसी के द्वारा तंग किया जा रहा है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो कम से कम वो आपसे शेयर तो करे। या तो ये हो जाता है कि कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हमने बेबी सिटर को दे दिया और अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। बट ऐसा नहीं है, आपको उससे बात करनी है, उसको काउंसिल करना है, कहीं ना कहीं देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि वो जब से बेबी सिटर के पास जाने लगा है, वहाँ रहने लगा है, तब से उसके बिहेवियर में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर उसके बिहेवियर में हल्का फुल्का भी चेंज हो रहा है तो वो आपको ध्यान देने वाली बात है, अटेंशन करने वाली बात है कि हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आ रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम अपने बच्चे के चेंजेस को नहीं देखते हैं और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल। और देखिए, जैसे आप लोगों में से कई लोगों के ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी बेबी सिटर में होंगे या फिर आप देते होंगे उनको, और अगर आपको भी ये बदले हुए व्यवहार नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, पर आप नहीं उसको फिगर आउट कर पा रहे हैं कि ये आखिर क्या चीज़ है, क्यों हमारा बच्चा परेशान है या व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो अगर आपका बच्चा सही से बातें कर लेता है, यानी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर लेता है, तो आपको हमारी तरफ से और इनफैक्ट कई सारे प्रोफेशनल की तरफ से भी यही रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छे से चाइल्ड काउंसलर के पास भेजें। जी हाँ, अब ये क्या होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये एक ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सही तरीके से जाँचते हैं, उसको क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें वो पता लगाते हैं, वो भी एक बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से। इसमें आपके बच्चों को कोई भी क्षति यानी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अब आप सोचेंगे क्या हम अपने बच्चे को पागल वाले के पास भेजें, यानी कि पागलों के डॉक्टर के पास भेजें। देखिए, ये पागलों के डॉक्टर नहीं होते, ये बस व्यवहार में होने वाली चेंजेस को एग्जामिन करते हैं और बस आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखना इनका एक एम होता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जो आपके बच्चे को परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है जो कि नेगेटिव साइड में ले जा रहा है, तो ये कुछ छोटी मोटी थेरेपी, याद रहे थेरेपी में ना तो इंजेक्शन लगता है ना कोई दवाइयाँ होती हैं, बस आपके बच्चे से बातचीत के थ्रू या कुछ ऐसे टेस्ट करा सकते हैं, लाइक उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते हैं। ऐसे कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से वो आपके बच्चे का आकलन करेंगे और जो परेशानी होगी उसको सही ढंग से उसका जो है निदान है वो भी करेंगे, और आपके बच्चा अगर मानसिक रूप से परेशान है तो वो सही हो जाएगा।
0: राइट। तो चलिए, अब बात आती है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही मासूम होते हैं, और इनकी इस मासूमियत को बस यूं ही बनाए रखना है। जो भी अपने बच्चे को बेबी सिटर के पास देते हैं उन्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए, इसी बात के साथ अब चलें। कहाँ चलें
1: यार, बारिश तो हो रही है, मेघालय में बारिश बहुत अच्छी होती है और वहाँ मैंने सुना है कि माहौल बड़ा ऐसा एकदम जम जाता है वहाँ।
0: तो मेघालय चले।
1: लेकिन छुट्टी
0: छुट्टी,
1: अरे यार
0: कहीं नहीं चले, चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक पे।
1: अच्छा, तो ब्रेक पे जाने की बात कर रही थी
0: जी,
1: मुझे लगा कि घूमने का प्लान बना रही हो।
0: आपने अभी घूमने के प्लान में जो एक सबसे बड़ी बाधा है उसका जिक्र भी आपने खुद किया था,
1: छुट्टी नहीं होती। अरे ये तो सिर्फ हमारा नहीं, ये इस भारतवासी या फिर हम कहें पूरी दुनिया में हर एक एक इंसान का है कि भैया मैं काम से छुट्टी नहीं मिलती है।
0: तो हमें छुट्टी मिलेगी नहीं और छुट्टी चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपसे बहुत सारी अभी फिलहाल हमें बातें करनी है। तो चलिए चलते हैं, प्यारे से सॉन्ग को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवन नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आर

0: आज ट्यूसडे है, और इसमें ये जो गाना था कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपने लव्ड वंस या फिर हम सिर्फ अपने प्रेमी के लिए ही नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी हमसे ये गुहार लगाते हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। क्योंकि भाई देखिए, अगर हम अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चे का साथ नहीं देंगे, साथ मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर वो किसी का मर्डर कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उसमें साथ दें। उनकी छोटी छोटी चीज़ों को जो वो अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना रहे हैं, आप उसमें उनका साथ ज़रूर दें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आया है जेन जी और मिलेनियल्स के बीच। देखिए भाई, जेन जी वो हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन जो मिलेनियल्स हैं वो ये हैं जो 2000 से पहले हुए हैं। अब देखिए, इन दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले हम लोग एक फैक्ट पे वर्क करते थे, यानी कि अगर हम ये सोचते थे, फैक्ट कह सकते हैं या फिर हम एक बने बनाए रास्ते पे ही चलना प्रेफर करते थे कि जो लड़कियां हैं वो MBA कर ले, MA कर ले, उसके बाद शादी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पढ़ा लेंगी, उसके बाद उनका करियर नहीं है और किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन जो जेंजी है उनका ये जो दिमाग है वो पूरा खुल चुका है। मिलेनियल्स क्या करते थे, वो या तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, या तो जो है किसी बैंक की तैयारी कर लेंगे। इसके अलावा बहुत रेयरली कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसमें लोग जाना पसंद करते थे या सजेस्ट करते थे, या तो आप कोई सरकारी नौकरी ले लो बेटा, और तो कुछ नहीं हो पाएगा इसके अलावा। लेकिन आजकल के जनरेशन ने जो नौकरी है या ये जो अपनी ज़िंदगी को एक जो दिशा होती है उसके कई सारे रास्ते खोल दिए। आजकल तो भाई सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि अर्चिका स्किल से भी काफ़ी सारी जॉब मिलती हैं और लोगों के करियर बेहतर बन रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे सोशल मीडिया पे ही आज कई सारे ऐसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो अपनी इस उम्र में, दादा दादी नानी नाना नानी इसलिए कह रही हूँ, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो मैं आपको बताऊं तो 50 से ऊपर या फिर 60 से ऊपर के लोग हैं, वो भी अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहे हैं। वहाँ उनकी पढ़ाई नहीं काम आ रही है बल्कि उनके स्किल काम आ रहे हैं। जैसे कि एक बहुत, मुझे उनका नाम नहीं याद है पर उनकी स्टोरी याद है कि एक लेडी थी जो कि 60 साल से ऊपर की थी, यानी कि उससे ज़्यादा उनकी एज थी, और वो उन्हें शौक से, कहते हैं ना अपनी दादी नानी को हमने देखा
1: जी, जी।
0: बुनाई करते हुए वो बुनाई बहुत करती थी।
1: ओके।
0: और उन्होंने अपने घर के हर सदस्य के लिए कोई ना कोई चीज़ बना के रखी थी, और सर्दी आने से पहले ही वो ये पूरे घर में पूछ लेती थी कि किसी के पास किस चीज़ की कमी तो नहीं है। हर एक एक के लिए वो मोजे हो गए, स्वेटर हो गए, स्कार्फ, कैप सब बुन के रख देती थी। अब ये तो उनका प्यार था अपने घर वालों के लिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने घर का ध्यान रखा है, अपने इस स्किल का उन्होंने भरपूर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया था, क्योंकि उनका मन था अपने बचपने में कि वो एक अच्छी जॉब करे, और जॉब से भी ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी कि उन्हें किसी के सामने कुछ थोड़े पैसे के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन उन्हें एक होम मेकर बनना पड़ा स्थितियों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, और उसी में वो बंध के फिर रह गई। पहले शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों का फ्यूचर, फिर बच्चों की शादी, और जब उनकी पोती बड़ी हुई, वो हमारी एज की है, और उन्होंने अपनी दादी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो करती थी, वो जैसे बुनाई हो गया, जैसे ऊन सिलेक्ट करने उसकी नानी जाती
1: जी,
0: थी
1: जी,
0: उसकी दादी जाती थी, तो उनको जब वो मार्केट जाती थी उसका व्लॉग बना के डालने लगी, कैसे कैसे वो बुनाई करती हैं, कौन कौन से रंग को कैसे मिक्स करती हैं, डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वो दिखाती थी। अब धीरे धीरे इससे लोग उनका, उनके जो फॉलोअर्स थे वो बढ़ने लग गए, उनका फेम थोड़ा सा बढ़ने लग गया, लेकिन अभी भी वो जो चाहती थी ना वो नहीं हो पा रहा था, यानी कि उनकी इनकम नहीं जनरेट हो पा रही थी। तो उनकी पोती ने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट पे तो अपलोड किया ही किया, और सोशल मीडिया के जरिए जो भी वो काम करती थी, पहले उन्होंने छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया। उन्होंने ऊन से बने हुए चाबी के छल्ले जी, ऊन से बने हुए फ्रेम्स, ऊन से बने हुए स्कार्फ, ऊन से बने हुए पर्स, बैग्स, छोटे छोटी चीजें जो होती थी उनको वो बनाने लग गई, क्योंकि ये इतने बड़े होते नहीं और बनने में ज़्यादा समय इनमें लगता नहीं है अगर आपका हाथ सेट है तो, पर क्योंकि वो अपनी यंग एज से बुनाई ही करती आ रही हैं तो उनका हाथ पूरी तरीके से सेट था। उन्होंने इसको तैयार किया, और उसके बाद उनकी पोती ने वेबसाइट पे अपलोड किया, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट की, और आज वो लेडी करोड़ों की मार्केट है, अपने 70-80 ईयर्स की वो हो चुकी है।
1: माय गॉड, शायद इसीलिए कहते हैं लिसनर्स कि कोई भी उम्र

0: होती सपनों के पूरे होने की, बस रास्ता चाहिए। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और आपको एक रास्ता मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उम्र कोई भी मायने नहीं रखती।
1: बिल्कुल। अब देखिए, ये कहानी जो एक बहुत रियल स्टोरी है, ये सुन के आपके दिल में कहीं ना कहीं एक बहुत ही सॉफ्ट सी हैप्पी फीलिंग जरूर आई होगी।
0: वो तो आई,
1: क्योंकि एक ऐसी लेडी जो 60 से ऊपर है और इस उम्र में लोग कहते हैं भैया भगवान का नाम लो, कहाँ करियर बनाओगे, लेकिन क्योंकि उनका सपना था तो उनके पोती ने उनका साथ दिया। अब इसी चीज को आप उल्टा कर लीजिए, क्योंकि हमें तो आज बच्चों की बात करनी है। आजकल के जमाने में स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप स्किल में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपने उसमें बहुत अच्छी कमांड कर रखी है, तो आपको वो जीवन भर के पैसे कमा के दे सकती है, या वो जीवन भर उससे आपकी कमाई हो सकती है। लेकिन जो हमारे मिलेनियल्स पेरेंट्स हैं, जो 2000 से पहले हुए हैं, उनका क्या मानना है कि नहीं बेटा, इन सब पे ध्यान मत लगाओ, पढ़ो लिखो और एक फिक्स जॉब कर लो, वही ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे भाई क्रिएटिविटी के बने हैं, वो जॉब करेंगे लेकिन क्रिएटिविटी को कभी भी साइड नहीं रखेंगे, और स्किल्स उनमें बहुत है, बस फर्क है कि आप उसको पहचान लें। और अगर आपने पहचान लिया है, वो ये भी हो सकता है कि वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर मतलब जो है वो बजा रहे, हो सकता है वो लिखते अच्छा हो, या हो सकता है वो उन्हीं दादी नानी की तरह अपनी यंग एज में बुनाई अच्छा कर लेते हो, ऐसे कई सारे टैलेंट हो सकता है कि उनमें बोलने का टैलेंट बहुत अच्छा हो, वो चीज़ों को बयां बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि कब कौन सी चीज़ उसके लिए लाइफ टाइम बेनिफिट बन जाए वो आपको पता नहीं है। और इसी अप्रिसिएशन को बच्चे वेट करते हैं कि उनके माँ बाप भी सपोर्ट करें, और ट्रस्ट मी, माँ बाप का सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है जिसके आगे हर सपोर्ट फीका पड़ जाता है। कहते हैं ना कि अपना भाई बाप बाप होता है, बस बिल्कुल वही। जब आपके माँ बाप का सपोर्ट मिलता है या आपका सपोर्ट आपके बच्चों को मिलता है, तो वो चीज़ उनके लिए बिल्कुल फ्यूल का काम करती है अपने सपनों के लिए उड़ने के लिए।
0: बिल्कुल। और भाई, उड़ने के लिए उन्हें पंख जरूर दें, क्योंकि जब आप उन्हें पंख देंगे तो ही कहीं ना कहीं वो अपने सपनों का आसमां हासिल कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को उसके जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए एक साथ की ज़रूरत होती है, और उसे वो मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका हक है। तो चलिए, बातें काफ़ी हो गई हैं और काफ़ी कुछ हमने आपसे बता दिया है, काफ़ी कुछ बातें कर ली हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए।
1: अब हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, और ब्रेक में हमें कहीं जाना नहीं है, हमें एक म्यूजिक एंजॉय करना है, एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग एंजॉय करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना है कि आपके अंदर कौन सी स्किल है जिसका उपयोग करके, जिसका यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचना चाहते तो एटलीस्ट अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें।
0: तो चलिए सोचिए और इस प्यारे से सॉन्ग को सुनिए, एंजॉय करिए, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम सुन सहेली। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की, क्योंकि आज है दिन मंगलवार। जी हाँ, मंगलवार वही दिन जिस दिन सारी चीजें मंगलमय हो जाती है और हम हनुमान जी से बड़ा प्रे करते हैं कि हनुमान जी हमारे बिगड़े काम प्लीज बना दीजिए। लेकिन आपको पता है कि हनुमान जी क्या सोचते होंगे जब हम मंगलवार को मंदिर जाते हैं?
1: क्या सोचते होंगे?
0: अब देखिए, मंदिर जाने से पहले भी ना कई सारी चरण होते हैं जो हमें क्रॉस करने होते हैं। पहली बात तो हमें अपने घर से निकलना होता है। ये सबसे टफ काम होता है आलसी प्राणियों के लिए, तो उससे भी ज्यादा टफ होता है। उसके बाद घर से बाहर निकले, अब प्रसाद हम 21 का चढ़ाएंगे, 11 का चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे, ये निर्भर करता है कि हम भगवान से डिमांड किस चीज की रखने वाले हैं। अगर हमें कहना है कि भगवान देख लेना मम्मी से डांट ना पड़े, तो हम सोचते हैं कि यार चलो 11 चढ़ा देते हैं, इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, 11 में हो जाएगा।
1: हाँ, चल जाएगा।
0: अगर भगवान पास कराना है, हमें नौकरी लगवानी है, तो भैया अब इतना बड़ा काम है तो भगवान को कम से कम 101 का चढ़ा देते हैं। अब भगवान भी बेचारे बैठ के सोचते होंगे कि भैया ये मुझे प्रसाद चढ़ा रहा है या रिश्वत। और उस पे भी जब हम चले जाते हैं मंदिर में और इतनी सारी सफर, और जिन्हें कुछ नहीं मांगना होता, जस्ट वो घूमने आए, वो कहते हैं अरे प्रसाद के बिना भी काम हो जाएगा, भगवान प्रसाद के भूखे नहीं होते। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो वहां पे हमें पंडित जी दिखते हैं। अब पंडित जी का भी नजरिया थोड़ा सा अलग होता है। आज के दिन शाम को जो भी मंगलवार है तो आज मंदिर जाएगा, वो इन चीजों को नोटिस करे। आप किसी भी मंदिर चले जाए, वहाँ एक पंडित जी बैठे होंगे जो हर जगह हर एक इंसान को देख के बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी स्माइल करेंगे। ऐसा लगता है कि खुद स्वयं हनुमान जी उनके अंदर आ गए हैं। लेकिन जैसे आप खाली हाथ दिखेंगे, आपने बिल्कुल प्रसाद नहीं ले रखा होगा, पंडित जी के अंदर हनुमान जी की जगह
1: रौद्र रूप आ जाता है,
0: माँ चंडी आ जाएंगी वहाँ पे। मतलब पंडित जी ऐसे आपको घूरेंगे ना कि आपको लगेगा कि आप प्रसाद नहीं, आप कोई पाप करके आ गए। लेकिन वहीं अगर आपके बगल वाले ने प्रसाद लिया है और प्लस उस पे 51 रुपए कैश रख दी हो, पंडित जी इतना खुश हो जाएंगे कि सीधा भगवान के गले से माला उतार के आपके गले में डालेंगे, 4-5 लड्डू अंदर से निकाल के आपके में दे देंगे और एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आपको पास करेंगे। उसके बाद एक प्रजाति आती है जिसका एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर फंसा होता है। अब ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप भी ऑब्जर्व करिएगा और बताइएगा। ये प्रजाति बड़ी ही ज्यादा चिंता में रहती है। हो सकता है कि इनका कोई एग्जाम हो चुका हो, आंसर आने वाला हो, और इनका एग्जाम अच्छा नहीं गया हो। हो सकता है कि इन्होंने मैनेजर को गुस्से में बहुत बोल दिया हो, लेकिन अब डर है कि नौकरी जा सकती है। अब ये मंदिर के कोने में आपको हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हुए दिख जाएंगे। अब अगर इंसान शांति से बैठ के कर रहा है तो सोचिए कि नहीं भाई, मामला इतना सीरियस है नहीं। लेकिन अगर वो इंसान बहुत ही स्पीड में पढ़े जा रहा है, आंखों में एकदम झपट रहा है बार बार, समझ लीजिए मामला बहुत सीरियस हो चुका है। या तो भैया इनका मामला बहुत ऐसा वैसा हो रखा है, या तो कुछ ऐसा है जो ये भगवान के अलावा और किसी को बता ही नहीं सकते। ऐसे मामले होते हैं सीरियसली अंशिका, कि जो हम भगवान के अलावा और किसी को नहीं बता सकते।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अब मान लीजिए कि आपकी आपके घर में आपकी कोई भाई बहन है,
1: हाँ है,
0: और वहाँ पे एक चॉकलेट और एक ही चॉकलेट आई है।
1: ओके।
0: अब आपने अपना हिस्सा खा लिया है, मम्मी ने कहा है कि अपने भाई का हिस्सा जो है फ्रिज में रख दो। लेकिन आप तो भैया बड़ी लबड़ दबड़ इंसान है, आपको तो वो आधा भी खाना है।
1: हाँ।
0: अब आप खा लेंगी, लेकिन किसी के सामने ये नहीं कहेंगी कि हमने खा लिया है। आप बस भगवान से कहेंगी, भगवान खा ली है मम्मी, गुस्सा आप देख लेना,
1: आप समझ लेना,
0: लेना। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। लेकिन कभी कभी हम जिंदगी में बहुत बड़े कांड कर देते हैं। जैसे हम बताएं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार गाड़ी सीख रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने पापा की बाइक या स्कूटी ले जाके कहीं से ठुकठुका जाते हैं, और अपना नहीं टूटते हैं, अपना खरोच नहीं आई होती, लेकिन स्कूटी को बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ के आ जाते हैं। अब वो घर आने से पहले एक दफा मंदिर जरूर जाते हैं कि हे भगवान
1: बचा लेना,
0: अब देख लेना। अब उनके हाथ पैर भगवान के सामने ऐसे कांपते हैं। और कभी कभी पता है मेरे अंदर की जो शरारती कीड़ा है वो इतना ज्यादा है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं भगवान जी की जगह होती तो मैं पहले तो इन लोगों को बहुत अच्छे से लपेटती कि देखिए हम सब क्या करते हैं। और इन्हीं चीज को अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली सोचें तो हम लोग भगवान के पास तभी जाते हैं जब हमारे काम बिगड़ जाते हैं।
1: हाँ।
0: और इधर मैं कोई भक्ति पाठ नहीं दे रही हूँ, इसको हम अपनी जिंदगी से भी रिलेट कर सकते हैं कि हम अपने आप से, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग डिवाइन पावर के पास तभी जाते हैं जब चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है,
1: राइट
0: और जब हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान प्लीज देख लो, प्लीज देख लो। लेकिन अगर काम अच्छा हो जाए, जैसे आपकी सैलरी डबल हो गई है, अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया, बहुत अच्छी डील साइन कर लिया आपने, तो हम उसका शुक्रिया अदा करने बहुत कम जाते हैं भगवान के पास,
1: राइट
0: हम सोचते हैं कि इसमें हमारा काम है,
1: हमने मेहनत,
0: हमारी सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक टाइप का अहंकार आ जाता है। और सेम यही चीज होती है हमारे घर में। अब आप सोचेंगे कैसे, अब देखिए यही सेम चीज हमारे बच्चों के साथ होती है। आखिर जो बच्चा मान लीजिए पहली बार गाड़ी सीखने गया है, जिसने गाड़ी को ठोक दिया है, वो अपने आपके सामने आने से पहले वो भगवान के पास जा रहा है। और काफी बार मैंने मंदिर में इतना डर देखा है लोगों की आंखों में कि मम्मी पीट डालेंगे मेरे को। और डर एक होता है कि नॉर्मल लेवल जो हमें सबको पता होता है, लेकिन कई जगह पे जो माँ बाप है वो बहुत ज्यादा आक्रामक बिहेव करते हैं, लाइक इतना ज्यादा कि आप उन्हें डर लगता है कि छोटी छोटी चीज पे शायद हम पीट दिए जाएंगे, जो कि पीटने लायक बात होती भी नहीं है, उसमें भी पीट दिए जाएंगे। वॉयलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये इसके कारण भी कई सारे हैं। अगर हम कारण की बात करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। मम्मी जो घर के सारे काम अकेले करके घर में अकेली रहती हैं, और वो उस चीज से फ्रस्ट्रेट होती हैं,
1: राइट
0: हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके अंदर, उसका फ्रस्ट्रेशन रहता है। पापा जो घर से बाहर काम करते हैं, बाहर से कमा के आते हैं, दिन भर धूप पसीने में रहते हैं, जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनका फील्ड में जाता है, और फिर जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और जब हम शाम को इकट्ठे बैठते हैं ना, तो वही फ्रस्ट्रेशन, और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि हम अपना फ्रस्ट्रेशन अपने से कमज़ोर लोग पर निकालते हैं। जैसे कि अगर आपके मैनेजर ने आपको डांटा है तो आप मैनेजर को नहीं बोलोगे, आप घर जाओगे, घर में आपके से जो छोटे भाई बहन होंगे, आपका पार्टनर होगा, या जो आपसे थोड़े कमज़ोर लोग होंगे, आप उन पे गुस्सा निकालोगे। हो सकता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप घर जाके अपने बच्चों पे चिल्ला दो, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप गुस्सा कर दो, लेकिन आपके लिए तो वो थोड़ी सी रामबाण हो जाएगी कि भैया हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल गया, लेकिन बच्चे के लिए वो ट्रॉमा बन जाती है,
1: राइट
0: जिसकी हाँ जी आप बताइए जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे, और ये जो बच्चों के अंदर जो ट्रॉमा होता है वो आज ही नहीं खत्म होता है, वो कहीं ना कहीं उनके पूरे जीवन भर उनके साथ रहता है जब तक वो उससे निकल नहीं पाते। और मेजर केसेस में क्या होता है दोस्तों, कि जो ट्रॉमा होता है अपने माँ बाप से मिला हुआ या दोस्तों से मिला हुआ, समाज से मिला हुआ, जो चाइल्डहुड में मिलता है, ये पूरा नहीं हो पाता, यानी हम उससे कभी उभर पाते ही नहीं है। मोस्टली केसेस में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमें ट्रॉमा से निकल पाते हैं, स्पेशली जो बचपन से आया हो। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के बिहेवियर पर नज़र रखें, और सबसे बड़ी बात आप खुद भी ये कोशिश करें। देखिए हम दुनिया को चेंज करें इससे पहले हमें खुद में बदलाव लाना चाहिए। आप ये सोचिए कि आपको बस अपने बच्चों का साथ देना है, उन्हें ट्रॉमाटाइज नहीं करना है, उन्हें किसी भी प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि उनको मतलब नॉर्मल भाषा में आप उन्हें ट्रॉमटाइज नहीं कर सकते, आप उनके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल ना करें। एक होता है स्ट्रिक्टनेस, एक होता है कि वॉयलेंट, आपको ना तो अपनी बातों से वॉयलेंट होना है, ना अपनी हाथापाई करनी है, बस आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं, सुधार सकते हैं। स्ट्रिक्ट बनिए लेकिन वॉयलेंस मत फैलाइए, क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है और उसका पूरा इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी पर पड़ता है।
1: वाह भाई, हमें तो सिर्फ यही पता था कि हमारी जो सहेली है, यानी कि आपकी आरजे आयुषी, वो बहुत सारी चुलबुली, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी और शरारती बातें करती हैं, बट आज मुझे पता चला कि ये बहुत सारी सीरियस और अच्छी अच्छी बातें, यानी कि जैसे हम कहते हैं डीप वाला, डीप नॉलेज, वो भी बहुत अच्छी देती हैं। तो वाह भाई, मुझे तो सुन के बहुत मज़ा आया लिसनर्स, और हम जो ध्यान देने वाली बातें हैं उन्हें ध्यान देंगे और अपने बच्चों का भविष्य बहुत ही बेहतर बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और जो भी चीजें मैंने बताई ना आज, वो जाके आज मंदिर में नोटिस जरूर करिएगा।
1: मैं आज जाऊंगी,
0: खुद अगले दिन आके मेरे से कहेंगे कि आयुषी आप बिल्कुल सही कह रही थी।
1: ठीक है, आज तो मैं जाके नोटिस करूंगी क्या क्या था, कौन प्रसाद लाया, कौन प्रसाद नहीं लाया, और कौन हनुमान चालीसा पढ़ा था, मैं आज सब नोटिस करूंगी। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं चैट बॉक्स में और हमारे लिसनर्स को नोटिस कर लेते हैं। तो चमन जी के बाद में के गुप्ता जी हैं जो कि तिरंगा कॉम्प्लेक्स से लिख रहे हैं। दोनों मैम जी नमस्कार, नमस्कार आपको भी। और साथ ही साथ लिख रहे हैं बच्चों को पालना बहुत कठिन काम है, बिल्कुल। और तमन्ना जी आ चुकी हैं जो कि लिख रही है गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। कमल नैन जी भी आ गए हैं और उन्होंने पॉपकॉर्न भेजे हैं और नमस्ते भी किया है, नमस्ते। और सबलू सावन जी आ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून दोनों आरजे आयुषी एंड आरजे अंशिका जी, गुड आफ्टरनून आपको भी और गुड आफ्टरनून नमस्ते। महेंद्र जी ने भी लिखा है, सो आप सभी को। और चलिए अब हमारा जो टाइम है वो भाग भाग करके जो है वो अपनी उस टाइम पे पहुंच गया है जहां पे हमें आपसे बाय-बाय बोलना है। तो आज के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और बारिश का जो मूड है ना वो जब भी बने तो भुट्टे खाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बारिश में भुट्टे ना हो तो फिर कैसी बारिश।
0: और इसी में थोड़ा सा अवधि तड़का लगाइए भैया, भुट्टे खाने के बाद एक कटोरी छाछ जरूर पीजिए, अब ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमारा थोड़ा सा अवधि वाला वो जो सीन है ना वो भी पक्का हो जाता है।
1: तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मिलेंगे कुछ नया लेकर के, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88-40-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी श्रोताओं, तो ट्रैकी वाली ट्यूसडे के साथ में हाजिर है आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा लेकर के आपका अपना, जी हाँ, फोनी फरमाइशी कार्यक्रम जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोंडा। वक्त हो गए हैं पूरे 3:07। अब आप सोच रहे होंगे कि आज आरजे आकांक्षा ने 2 मिनट देर से एंट्री क्यों मारी। तो मैं जस्ट यही सोच रही थी कि अगर मैंने किसी को जबान दी है तो मैं तो अपनी जबान पर खरी उतरती हूँ, फिर भी हमारे पास शिकायतें क्यों आती हैं। अगर सोचिए हम खाली और खाली गाने ही प्ले कर दें, आपको अच्छा लगेगा? वादा किया है, अगर मैं वादे पे अपने खरी नहीं उतरती तो फिर आप शिकायत करिए। और एक ही दिन में मैं कितने गाने बजा लूँगी? हर दिन मैं यही कहती हूँ, भाई एक ही घंटा होता है, 5 मिनट का गाना होता है, पूरे गाने में प्ले भी नहीं करती, एक ही पैराग्राफ प्ले करती हूँ, उसके बाद भी शिकायत थे, क्या करूँ मैं, है ना। ऐसे ही ट्रैकी पना होता है आज के दिन का, यानी कि मंगलवार का, क्योंकि जब हम सप्ताह की शुरुआत करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि हम वीक ऑफ के बाद में जस्ट एंट्री लेके रखते हैं, और पहले दिन मतलब हमें खाली डिज़ाइनिंग करनी, और जब बात आती है पहला कदम उठाने की, स्टार्टअप की, किसी काम की शुरुआत की, वहीं पर सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो ये जो आज का दिन होता है, मंगल मंगल मंगल कराता तो है, लेकिन उस काम को मंगल बनाने से पहले बहुत सारे संघर्ष होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो उम्मीद है कि वो संघर्ष से भी आप पार निकल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को बहुत ही सकारात्मकता के साथ में फेस करेंगे, और जी हाँ, खुद भी खुश रहेंगे और अपने अपनों को भी खुश रखेंगे। वैसे मुझे याद आया कि भैया हमारे अपने जो है वो हमारे श्रोतागण हैं, तो भाई बता देते हैं उनको वही वाला नंबर, जादुई नंबर, जिस पे आपको कॉल करके अपनी डिमांड हम तक पहुंचानी है। वैसे तो लगातार कॉल्स आ रही हैं, डिमांड्स भी आपकी आ रही हैं, और आज की जो पहली डिमांड है बहुत ही सुंदर है, कल की भी उनकी लास्ट डिमांड थी, लेकिन मतलब लास्ट गाना मैंने उनका शायद प्ले किया था, मे बी, या सेकेंड लास्ट था, और आज कि उनकी डिमांड भाई पहले पहुंच गई, और मुझे लगता है आज उनकी शिकायत मैंने खत्म कर दी है फाइनली। तो हर किसी की कोई ना कोई शिकायत हो रही है, जिंदगी है और शिकायतें हर किसी के पास है, उपचार कोई नहीं ढूंढता और शिकायतों में ही पूरी जिंदगी काट देता है, यही हम इंसानों की फितरत है। हम ह्यूमन बीइंग जो हैं वो बस शिकायतों में ही बच जाते हैं, और समाधान हमारे पास होता है, क्या 2 पल का होल्ड लेना होता है, सब्र करना होता है, फिर जब आपकी बारी आएगी आप काफी खुश महसूस करेंगे। फिलहाल हाँ, नंबर बताना है आपको, क्योंकि आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन को। भाई आपकी धड़कन को और इनहेंस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 9 कॉल मिलाना होगा। कॉलिंग नंबर वही है 6933-16429, यानी कि आप धीरे बताते हैं 6393-9131-6429। आज की पहली डिमांड, आइए एंजॉय करते हैं, इसका लुफ्त उठाइए, जिसकी डिमांड की गई है हमारे प्यारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की ओर से। और आज ये क्या सुनना चाहते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, मिलकर सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, देन आते हैं आज की नेक्स्ट डिमांड लेकर के। आज कोई स्पेशल सॉन्ग नहीं, किसी के लिए कुछ भी नहीं, हमारी साइड से तो बिल्कुल नहीं, एंजॉय करिए।

जब जुदाई का वक्त आता है ना दोस्तों, तो मुलाकात दोबारा नहीं होती, खाली ख्यालातों में होती है, बातों में होती है, और कुछ पल ऐसे लगते हैं जब हम किसी से अपने जज्बात को टैली कर पाते हैं, वही मुलाकात होती है। यकीन मानिए, एक बार अगर बाय बोल दिया है तो फिर बाय तक ही रहने दीजिएगा तो सही है, अगर गुड बाय बोल दिया है तो फिर लौट के मुलाकातें वापस नहीं आती हैं। इसलिए कोई अगर आपकी लाइफ में है तो उसे जाने मत दीजिए, बहुत कीमती वक्त होता है। एक छोटी सी तकरार के लिए आप पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उस इंसान को खो बैठते हैं। अब चलते हैं दरक्षा अंसारी जी की डिमांड की ओर। भाई, हमारा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, मोस्टेस्ट सैड सॉन्ग्स में से एक है ये। दरक्षा जी, थैंक यू सो मच। एंजॉय करते हैं, ए दिल है मुश्किल।

वाकई अगर कोई आपके दिल में है तो उसके बिना गुजारा बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अगर कोई है तो थोड़ी सी अगर ऊंच नीच हुई है तो फिर मैनेज कर लीजिए उन खाइयों को। जी हाँ, बाद में दोबारा वो अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आता।

जी हाँ, तो ये हमारी दरक्षा अंसारी जी की ओर से मेरा बहुत ही फेवरेट वाला सॉन्ग था और गुनगुनाने में काफी आनंद प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच, जो मैं सीतापुर से सुनती हैं और उन्हीं के डेडिकेशन में भाई नेक्स्ट वाला सॉन्ग आया हुआ है और उनके साथ में कई सारे नाम और जुड़े हुए हैं, तो फटाफट से आप सभी के नाम पढ़ देते हैं। जी हाँ, महेंद्र देपन जी, राही जी, तमन्ना भाटिया जी, आह तमन्ना आरजू जी हैं और साथ में हमारी दरक्षा जी, इन सभी को डेडिकेशन में आया हुआ ये सॉन्ग है हमारे प्रमुख जी की ओर से। चलिए एंजॉय कर लेते हैं और फिर आते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड लेकर के। और दोस्तों एक बात और, खास करके कल मैंने वादा किया था, तो जिन जिन की डिमांड कल रह गई थी पहले उनकी डिमांड कंप्लीट करेंगे, देन आएंगे बाकियों की डिमांड पे, और देखते हैं फिर आज कौन कौन होता है रेस से बाहर, क्योंकि लगातार आप सभी की कॉल्स भी आ रही है। एंजॉय करते हैं इस दोस्ती वाले सॉन्ग को सभी दोस्तों के नाम। जी हाँ, आप सभी इसमें इंक्लूड हैं, वो तो प्रमुख जी के साइड से उनके दोस्त थे, हमारी साइड से तो आप सभी इंक्लूडेड हैं इस सॉन्ग में। एंजॉय करिए।

बिल्कुल सच बात है कि दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है। हमारे साथ में जुड़ गई हैं भाई रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से, और हमारे प्रेम मौर्य जी भी जुड़ गए हैं सीतापुर से। प्रेम जी आपके लिए स्पेशल सॉन्ग है, मैं वो बारी आने पर जरूर आपको डेडिकेट करूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो अभी के लिए गाने हैं उसमें से एक गाना जो मैंने सेलेक्ट किया है, मतलब सेलेक्ट नहीं किया है, जो जिन जिनकी कल डिमांड रह गई थी उनको प्रायोरिटी दी गई है, बस इतनी सी बात है। तो उसमें से अब बारी आ गई हमारे चांद बाबू जी की, जो हमें सुने हथियागढ़ से। तो भाई हथियागढ़ से मंगाया हुआ ये सॉन्ग है और हमें हमारे दीपक जी याद आ जाते हैं, पता नहीं क्यों हथियागढ़ के नाम पे। खैर आगे बढ़ते हैं और ये

हाँ जी, तो भाई ये डेडिकेशन में सॉन्ग था हमारे प्यारे आरजे अमन जी के लिए, हमारी ओर से, लेकिन ये डिमांड आई थी हमारी चांद बाबू जी की ओर से फ्रॉम हथियागढ़। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये गाना हमारे पास में आया हुआ है उन्हीं का जिनका कल एक सॉन्ग पेंडिंग रह गया था, और ये बारी अब आ गई भाई हमारी प्यारी निशा जी की, और इनका क्या कहना है ये तो आप सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले बता दें ये डेडिकेशन में सॉन्ग हम दे रहे हैं अपने प्यारे प्रेम मौर्य जी को। भाई एंजॉय करिए, प्रेम जी आपके लिए स्पेशली प्रेम भरा सॉन्ग एंजॉय करते रहिए।

0: मुझको।
1: भाई बहुत जरूरी पार्ट है।
0: तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी।
1: भाई निशा जी का यही कहना है, निशा जी का कहना था अगर आपने प्यार से हमें नहीं देखा तो हम शहर छोड़ के जाएंगे। हमने कहा ऐसे नौबत ही नहीं आएगी, एंजॉय करिए।

बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, हमारे प्यारे लिस्नर जी हैं सुरेंद्र यादव जी हैं, गौरा चौकी से मंगाया गया बहुत बढ़िया वाला गाना है। और रईस साहब ने भी भाई आज रईसियत से यही गाना सेम पिंच करते हुए निकाल लिया, तो पिंच सेम पिंच, और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के, भाई आज कोशिश कर रहे हैं कल जिनकी डिमांड रह गई थी फटाफट से वो कंप्लीट करें, देन आते हैं आप लोगों की डिमांड पे। भैया इतना बढ़िया बढ़िया गाना आप लोग लाते कहाँ से, एक भी गाना छूटता है तो हमका दुख होता है उससे ज़्यादा जितना हमारे डिमांडर्स का होता है। लेकिन ये बात हमारे डिमांडर समझते ही नहीं कि एक ही घंटे में आरजे कांक्षा क्या क्या कर ले। कभी सोचिए जनाब, एक बार हमारा भी दर्द समझिए, मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा है, कितना, दो चार बाल्टी नहीं नहीं उससे ज्यादा भी हो सकता है। एंजॉय करिए फिलहाल ये डिमांड। वाह पंजाबी।

क्या बात है भाई, रीना शर्मा जी की तरह होना चाहिए। इन्होंने कॉल मिलाया, आवाज़ नहीं आ रही थी, और इनका कहना है अगर टाइम होगा तो चला दीजिएगा, और अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं। आकांक्षा बेटा, थैंक यू सो मच। फिलहाल बढ़ते हैं इसी गाने की ओर। आए हाय,

वैसे दोस्तों अगर लड़कियां नखरे ना करें ना तो फिर नखरे का होना ही बेकार है, उन पे जचता है नखरा, इसलिए नखरा करती हैं वो और झोर झोर के करती हैं, सरा बोर होके करती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे कमल नयन जी की, गाना बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खास और हमारी प्लेलिस्ट वाला है, तो थोड़ा सा गुनगुनाने का भी हमारा मन होगा तो सुन लीजिएगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा बस सुन लीजिएगा, झेलना तो पड़ेगा भाई, झेलम झेल झेलते रहिए। हाँ जी, आपके अपने शो 3 से 4 के सफर में कॉलर ट्यून गुंडा को

हाँ जी, गाना बहुत ही बढ़िया था और इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, मतलब कि नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये गाना भी कुछ कम नहीं है, हमारी चीची जी पे फिल्माया गया और महेंद्र दीपन जी की ओर से आई हुई ये डिमांड फ्रॉम नागौर राजस्थान। एंजॉय करते हैं। वैसे मुझे जानना है आप शादीशुदा हैं या कवारे ही हैं, एक्सप्लेन करिए प्लीज।

और अगर कुमार टीलर साहब तक हमारी आवाज जा रही है, सुरेंद्र जी अगर वो आपके आसपास है तो उनसे कहिए कि वो अपनी लिंक को हमसे शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे खाली उनका नाम लिखा हुआ है, हमें गाना नहीं दिख रहा है। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई हमारे मुमताज अंसारी साहब की ओर से। गाना बहुत बढ़िया लगा हमको, दीपन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे इस सॉन्ग की डिमांड के साथ, फिर नेक्स्ट डिमांड हम जिनकी लेंगे वो है हमारे अरमान जी, जिनका सॉन्ग रह गया था पिछले 2-3 दिनों से। तो एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक के साथ में, और उसके बाद में वक्त हो जाएगा आप सभी के मैसेजेस की ओर बढ़ने का। फिर देखते हैं आज किस किस की बारी आती है और कौन होता है रेस से बाहर। जी हाँ, शो चला आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉल टू गुंडा।

0: जी हाँ मुमताज अंसारी साहब के।
1: अगर जिंदगी हो तेरे संग हो।
0: इस डिमांड के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड मेरे पास में आई हुई है अरमान जी की। अरमान जी आपका सॉन्ग आप तक पहुंचा, एंजॉय करिए।

जी हाँ, वक्त तो हो गया 3:41, लेकिन अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर और नाम लेने के लिए खाली हम जरूर आएंगे पैगामात की ओर आप सभी के, लेकिन उससे पहले लेंगे हम अपने कुमार टेलर साहब की इस प्यारी सी फरमाइश को।

हाँ जी, तो ये डिमांड थी हमारे गौरा चौकी से प्यारे लिसनर कुमार साहब की, मतलब कुमार टेलर साहब की, और इतना ही गाना था सच में। लिंक चेक करके तब भेजा करिए नेक्स्ट टाइम से। फिलहाल कोई बात नहीं है, अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं उस ओर जो हमारे पास में आप सभी के पैगामात आए हुए हैं और मैसेजेस में देखते हैं किसने हमें क्या भेजा हुआ है। तो सबसे पहला मैसेज जो हम तक आया हुआ है वो हमारे सबलू सावंत जी का, सांत्रा क्रूज मुंबई से, और इसके अलावा है कुमार टेलर साहब गौरा चौकी से, तमन्ना भाटिया जी यानी तमन्ना आरजू जी मलिहाबाद से हैं, दरक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से, महेंद्र देपन जी हैं नागौर राजस्थान से, दरक्षा अंसारी जी सीतापुर से, और इसके बाद में प्रमुख कुमार जी लुधियाना से। ओके, और नेक्स्ट मैसेज है सुरेंद्र यादव जी का गौरा चौकी से, आरजी अमन जी हैं रेडियो हॉट स्टार यानी कि बिहार से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और के गुप्ता जी हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में है हमारे मोहम्मद चांद जी हथियागढ़ से, कमल नैन जी हैं हमारे दिल से यानी कि गोंडा से, और उसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो आप सभी के बड़े ही प्यारे प्यारे और काफ़ी अच्छे मैसेजेस आए, लेकिन मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगी, वक्त मेरे पास में बहुत सीमित होता है और आप सबकी नाराज़गी को झेलते झेलते मैं थक गई हूँ। नेक्स्ट मैसेज में है सबलू सावन जी, और उसके बाद में है नीना जी, नीना जी के बाद में है हमारे आप सभी के फीडबैक, और जी हाँ, और इसी के बीच में है हमारे चमन जी, चमन जी हमारे बड़े ही प्यारे लिसनर हैं, और रामकृष्ण नंदन जी हैं ये हमें सुनते हैं अलाहाबाद से, और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो बहुत सारी फीडबैक, बहुत सारी गॉसिप्स हैं, और इसी बीच में रवि जी हैं लाइट वाले। ओके, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रवि जी, और उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ होंगे। कुमार टेलर साहब है गौरा चौकी से, और नेक्स्ट मैसेज की बात अगर करें तो इंजीनियर अक्षय सिंह जी भी हैं भाई, क्या बात है, 90s नॉट आउट और 90s नॉस्टैल्जिया, क्या बात है भैया, इन्हें 90s के गाने बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमें ऐसा लग रहा है, तो आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये हमारे प्यारे लिसनर है बनारस की गली से, और बनारस की तो बात ही अपने आप में निराली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है के गुप्ता जी की ओर से, तिरंगा कॉम्प्लेक्स है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और जिन जिनकी डिमांड आज नहीं हो पाई है या नहीं हो पाएगी या जिनकी कॉल नहीं उठ रही है उनका नाम भी बता देते हैं, आप कल जरूर कॉल करिएगा, प्रायोरिटी पे आपको ही रखेंगे। रमेश जी हैं जो हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं, सुनीता जी हैं, राजू सलमानी जी आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, अरविंद मौर्य जी हैं, जी हाँ आप लोग की कॉल हमें दिख रही थी लेकिन मैं पिक नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए माजरा चाहूंगी, कल आप लोग प्रायोरिटी पे रहेंगे, और नीना जी आप भी, तो इन सब की डिमांड मैं कल लेने वाली हूँ। रमेश जी, सुनीता जी, राजू सलमानी जी, अरविंद मौर्य जी मनकापुर से, नीना जी हमारे दिल से, तो आप सभी प्लीज कल कॉल कर लीजिएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर।

के 47 मिनट हो रहा है बाई स्टूडियो क्लॉक और वक्त हमारे पास में शेष है 13 मिनट और इसमें मैं जिन जिनकी डिमांड ले पाऊंगी उतना जरूर कोशिश करूंगी और जिनकी डिमांड आज रह जाएगी कल उनको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे और ये नियम बना लेते हैं कि एक दिन जिसकी डिमांड हो जाती है दूसरे दिन उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। बस यही अच्छा होगा आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, मेरे स्वास्थ्य के लिए खास करके, क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती। एंजॉय करिए।

हाँ जी शेष 11 मिनट हमारे पास में, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। केके जी बहुत प्यारी डिमांड थी, 98 से गाना था, और अब बढ़ेंगे आरजू जी की डिमांड की ओर। जी हाँ, आरजू जी की डिमांड की ओर, और आरजू जी की आरजू पूरी करते हैं इस गाने के साथ में। ताली बजाते हुए क्या बात है, एंट्री लेते हैं इस गाने के साथ में।

अब बारी हमारे सांवरे बलम जी यानी कि हमारे सबलू सावंत जी की, और इनका कहना भाई कोयल सी तेरी बोली, लेकिन किसी को अब कौए जैसी लगती है, कुछ लोग हैं, और कर्कश लगती है, इसलिए कल से हम बोलना भी बंद कर देंगे। ये भी अच्छा रहेगा, एंजॉय करिए।

और सबने सावन जी की डिमांड के बाद अब बढ़ते हैं सुनील कुशवाहा जी की डिमांड की ओर, जो हमें सुनते हैं एमपी से। और सलाउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आपने हमें कॉल किया, हमारा हाल चाल लिया। थैंक यू सो मच भाई, थोड़ा सा मूड हमारा अच्छा हुआ। थैंक यू, एंजॉय करिए।

जी हमारे प्यारे श्रोतागण में से एक है हमारे कुमार साहब जो हमें एमपी रीवा से सुनते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है भाई। आपके आते ही हमारे चेहरे पर स्माइल आई, थैंक यू सो मच। और नेहा जी है बहराई से, यानी भाई मंगू जी भी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जितने भी मैसेजेस किए हैं वो सब मैं घर जाके आराम से मुस्कुराते हुए पढ़ने वाली हूँ। और अभी ये गाना आप एंजॉय करें हमारे एमपी से सुनने वाले लिसनर यानी कि सुनील कुशवाहा जी की डिमांड पर। और इसके बाद में नेक्स्ट डिमांड हम लेने वाले हैं राकेश वर्मा जी की, जो हमें सुनते हैं जस्ट बगल से, यानी कि कहाँ से, दुखरन्ना से। भाई आज तो सारी डिमांड कल वाली ही जिनकी पेंडिंग रह गई थी कंप्लीट करते करते वक्त गुजर गया है। और क्योंकि कल कम से कम 12 से 13 डिमांड रह गई थी जो पेंडिंग थी, और अगर आज भी ऐसा मैं करती, मतलब लगभग सारे कॉल्स लेती, तो वो पेंडिंग ही रह जाती। खैर, लेकिन जिन जिन की कॉल जिन जिन ने किया है और कल उनकी डिमांड ज़रूर मैं प्रायोरिटी पर रखने वाली, मैंने नाम भी मैंशन कर दिया है, और लगभग मैंने कल वालों की आज डिमांड कंप्लीट कर दी है।

सलाउद्दीन साहब एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती है आरजे कांक्षा, और साथ ही साथ में चमन जी ने भाई क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन वहाँ कुमार साहब ने बहुत ही सुंदर लिखा है भाई, क्या लिख देते हो यार, लिखा है चूल्हे के करीब हम रहते हैं, करिया सब हमें कहते हैं, क्या लिखते हो। फिलहाल मुस्कान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें हंसाने के लिए ऐसा किया इन्होंने, मुझे मालूम है। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है राकेश वर्मा जी की, और इसी के साथ में वक्त देख रहे हैं तो शेष 3 मिनट और है, तो इस डिमांड को लेंगे, उसके बाद देखते हैं आज के लकी लास्ट डिमांडर कौन है जिनका हम डिमांड लेने वाले हैं, और जिन जिनकी डिमांड रह जाएगी उन सभी से माजरत है, यानी कि माफीनामा जारी करते हैं, लेकिन उससे पहले एंजॉय करिए वाकई बेहद ही खूबसूरत सा सॉन्ग, सैड सॉन्ग में भी एक बहुत ही प्यारा सा ठहराव और सुकून और अपनापन होता है, एंजॉय करिए क्योंकि इमोशन से भरा जो होता है, एंजॉय करिए।

आप सुन रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग्स वाला शो क्या स्टलिंग बेस।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।
3: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, और आप सभी को सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विज्ञान शाला में आप सभी का स्वागत है, और इसी के साथ आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे जीव के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम आपने शायद सुना है, लेकिन वो है क्या उसके बारे में आपको नहीं पता। तो सबसे पहले विज्ञान शाला सुनने वाले लोगों को आपके RJ बीना का बहुत सारा प्यार, एंड आपको कहना चाहूंगी कि बहुत सेफ्टी के साथ रहें, इधर उधर जो गोलगप्पे खाते हैं वो थोड़ा सा गोलगप्पे खाना बंद कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक ऐसे जीव ने हमारे आसपास एंट्री ले ली है, बिल्कुल वायरस की तरह ही, लेकिन ये वायरस नहीं है, ये कुछ और है, वायरस की तरह ही है, लेकिन ये है अमीबा। अमीबा तो नाम सुना ही होगा, ये ना तो किसी फिल्म का विलन है और ना ही किसी अजीब से डांस का स्टेप, बल्कि ये बेहद ही छोटा सा जीव है, और इतना छोटा जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोपिक नेचर का है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमीबा माइक्रोस्कोपिक है, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। आप सभी को पता है हम जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे आस पास मौजूद कितने भी लोग जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े सब कुछ, वो सब कोशिका से बने हैं। आप सभी को पता है कोशिका क्या होती है, हमारे जीवन की इकाई है। जैसे एक घर को बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए कोशिका की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी जीवित जीव दिख रहे हैं आपको, जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो सभी के सभी कोशिका से बने हैं। अमीबा की बात करें तो ये एक प्रोटिस्टा है। जितने भी दुनिया भर के जीव हैं, उसे कई सारे वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया है। तो वर्गीकरण के दौरान एक RH विटिकर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 5 किंगडम बनाई थी वर्गीकरण करके जीवों का। और सबसे पहले किंगडम का नाम था मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया। दूसरे किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा, जिसमें कि अमीबा और बहुत सारे जीव मौजूद हैं। तीसरे किंगडम का नाम था फंजाई, चौथे का नाम था प्लांटाई और पांचवे का नाम था एनिमेलिया, जिसमें हम सभी आते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अमीबा की। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये कोशिका से ही खाना खाता है, कोशिका से ही चलता है और कोशिका के साथ ही प्रजनन करता है। लोगों का कहना है कि अमीबा कभी मरता नहीं, क्योंकि ये पुरानी अपने जीव से दूसरे जीव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अपने जीव को ये दो टुकड़ों में बांट देता है और जो पुराना जीव था वो नए दो बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है, आम भाषा में समझे तो। यानी कि पुराना जीव कभी मरता ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही टूट के नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है। तो लोगों का कहना है कि अमीबा कभी मरता नहीं है। अब इसकी संरचना की बात करें तो शरीर में ये हमारे अनियमित आकार में घुसता है, जैसे कि ये स्थाई शेप का नहीं होता है। अब बात करती हूँ इसके साइटोप्लाज्म की। कोशिका के अंदर एक खाली जगह होती है जो कि जली की तरह होती है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और साथ ही साथ सीडोपोडिया होते हैं जिसे कृत्रिम पैर बोलते हैं, यानी कि भाई फॉल्स फीट, हमने नाम सुना होगा क्लास 10th में। और भाई इसके साथ साथ क्या है, ये किसी की मदद से चलता है, यानी किसे जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक जीव की जरूरत है सनम, तो इसे जिंदा रहने के लिए किसी जीव की जरूरत पड़ती है, इसीलिए तो भाई इसको परजीवी बोलते हैं। और अमीबा खाता कैसे है, खाने के लिए अपने फॉल्स फीट का यूज करता है जिसे सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडोपोडिया के माध्यम से ये फेगोसाइटोसिस करता है, यानी कि भक्षण प्रक्रिया, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि कैसे एक अमीबा ब्रेन ईटिंग अमीबा बन जाता है। तो साइटोप्लाज्म इसका जो है वो खाने को पचा देता है, यानी कि कोशिका इसकी बहुत एडवांस है। यानी कि अगर हम समझें सरल भाषा में तो ऐसी कोशिका जो आपको आंखों से दिख तो नहीं रही, लेकिन वो सारे काम कर रही है जो हम एकदम जीते जागते कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करूंगी अमीबा के प्रजनन की। तो अमीबा प्रजनन कैसे करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन, यानी कि अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है। दुनिया में आए हो तो अपनी संख्या बढ़ाओ, तो ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, ये अपनी एक कोशिका को दो कोशिकाओं में बांट लेता है और नए क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आगे की कहानी सुनेंगे तो आप क्यूट नहीं बोलेंगे, कहेंगे कि ये खराब, इतना दुष्ट, इतना नरभक्षी जीव कहाँ से आया। आगे की कहानी बाद में सुनेंगे, फिलहाल के लिए इसके बारे में जान तो लें कि ये कैसा है, ये कहाँ पाया जाता है। ये तालाब में, ये झीलों में, ये मिट्टी में जहाँ पे नमी होती है, साथ ही साथ समुद्र में पाया जाता है। अमीबा का एक हानिकारक रूप जिसे अमीबा या एंटामीबा हिस्टोलिका बोलते हैं, ये हमारे शरीर में अमीबियसिस नाम की बीमारी को फैलाता है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि अमीबा को जितना आसान हम समझते हैं, अमीबा उतना आसान नहीं है। ये हमारे शरीर में अगर घुस जाता है तो आसानी से निकलने का नाम नहीं लेता। और इसी के साथ आगे की जानकारी भी आपको बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है। अमीबा क्या है, अमीबा ना तो बैक्टीरिया के ग्रुप में आता है, ना ही वायरस के ग्रुप में आता है, ये आता है प्रोटोजोअन के ग्रुप में। जैसे सूक्ष्म जीव हमारा बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक उसी तरह हमारा प्रोटोजोआ भी होता है। अब प्रोटोजोआ का एक आम उदाहरण बताऊं तो प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोअन है जिससे मलेरिया जैसी बीमारी होती है। और अब मैं बात करने वाली हूँ पैम के बारे में। पैन नहीं, पैम, PAM, प्राथमिक अमीबिक मेनिंजो एनसेफलाइटिस, एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण। दुनिया भर में अब लगभग इसके 500 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। नेगलेरिया फाउलेरी से संक्रमित व्यक्ति जो हैं आमतौर पर 2 से 15 दिन के भीतर कहीं ना कहीं बहुत सारे लक्षणों से संक्रमित हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देना चाहूंगी, यानी कि दिमाग खाने वाला परजीवी। अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर का आकार बदल सकता है, लेकिन आज उस अमीबा के बारे में बात करूंगी जो हमारे दिमाग को खा सकता है। पहले तो ये शब्द आपने सुना ही होगा, परजीवी किसे बोलते हैं। परजीवी वो जीव होता है जो एक जीवित व्यक्ति पर या जीवित जीव पर रह के खुद का गुजर बसर करता है। अगर साधारण तौर पे समझना हो तो मच्छर हमें बिना मारे हमारे शरीर से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देता है। इसी की तरह जुएं हमारे सिर में पड़ जाती हैं, जो कि हमारे सर में ही रहती है और हमें बहुत खास नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन हाँ हमें

0: मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण तब होता है जब दूषित ताजा पानी नाक में चला जाता है, यानी कि पानी दूषित तो होगा लेकिन आपको ताजा दिखेगा, और इससे अमीबा साइनस के जरिए मस्तिष्क में पहुंच जाता है, टिश्यूज को नष्ट करने लगता है, यानी कि हमारे ब्रेन में जो ऊतक होते हैं उनको ये नष्ट करना शुरू कर देता है। यह संक्रमण कुओं, स्विमिंग पूल और तालाब के पानी से नाक के माध्यम से जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, नाक के माध्यम से। ये समझ लें कि ये साधारण संक्रमण नहीं है जो साधारण पानी से होता है, बल्कि ये नाक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश करता है। ये संक्रमण नेगलेरिया फाउलेरी नामक दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण होता है। ये दिमाग के ऊतकों को नष्ट कर देता है, जिससे ज्यादातर मामलों में गंभीर मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी से बचाव करने के लिए इसके बारे में सबसे ज्यादा हमें जानने की जरूरत है। अगर हमें ज्यादा जानकारी नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये बीमारी है क्या। तो इस बीमारी के लक्षण और इससे बचने के उपाय मैं आपको बताऊंगी इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपके साथ आपकी आरजे बीना है और आप सुन रहे हैं शो विज्ञान शाला।
1: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
2: जी सर।
1: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
2: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे, और क्या।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: सो वापस से आप सभी का स्वागत है विज्ञानपुर की विज्ञान शाला में। जी हाँ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ नेगोलेरिया फाउलेरी के लक्षण, यानी कि कैसे ये अमीबा हमारे अंदर संक्रमण करता है। प्राथमिक अमीबिक मेनिन्जो एनसेफेलाइटिस, यानी कि

0: ये एक दुर्लभ प्रकार का संक्रमण करता है। दुनिया भर में अब तक इसके 500 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। नेगलेरिया फाउलेरी के संक्रमण व्यक्ति में आम तौर पर 2 से 15 दिन में दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं कुछ इस प्रकार के लक्षण, जैसे कि जो कि आम तौर पे हमें बुखार में या टाइफाइड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेज सर दर्द, बुखार, मतली और उल्टी। मानसिक स्थिति के बदलाव में आपको परिवर्तन दिखेगा, जैसा कि कंफ्यूजन रहेगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगी और साथ ही साथ दौरे। ये बहुत ही गंभीर लक्षण माने जाते हैं, यानी कि आपके अंदर संक्रमण पूरी तरह से हो चुका है तब आपको दौरे आने शुरू होते हैं। अमीबा नाक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश करता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS को प्रभाव पहुंचता है, जिसके कारण मस्तिष्क में सूजन और कोशिकाओं का नुकसान होता है। CDC के अनुसार एक बार लक्षण शुरू होने के बाद संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता है और अधिकतर मामलों में 5 से 7 दिनों के भीतर ही मरीज की मृत्यु हो जाती है। मरीज जल्दी कोमा में चला जाता है और बचाव के लिए तुरंत हॉस्पिटल में एंटी अमीबिक और सपोर्टिव उपचार की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं बात करूं तो हमारे देश में इस अमीबा ने कहां पे अपना संक्रमण फैलाया है, वो भी बहुत तेजी से, तो वो जगह है केरल। केरला में ब्रेन ईटिंग अमीबा का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रूटर की खबर सुने तो केरल में नाइजेरिया फाउलेरी, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, ये काफी तेजी से फैल रहा है। 2024 में सबसे पहले इसका मामला सामने आया था। इस वर्ष 2025 में अब तक 69 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 19 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। 2024 से इस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें 61 मामलों और 19 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले केरल में 2016 से 2022 तक इस संक्रमण के केवल 8 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 2023 से ये संख्या बढ़कर 36 और 36 से 61 पहुंच गई। इस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण खास तौर पे जलवायु है, इसके अलावा बढ़ती गर्मी है, जल निकायों में दूषित पानी का मौजूद होना, स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जल स्रोतों की सफाई, इसके साथ साथ पानी में क्लोरीन आदि डालना शुरू कर दिया है, तब भी ये संक्रमण धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। कैसे हम इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से बच सकते हैं? खास तौर पे हमें कुछ ऐसे उपचार करने पड़ेंगे जिससे कि हम इस अमीबा से बच सके, जैसे कि गंदे या गर्म पानी में तैरने से बचे, यानी कि जहाँ भी गर्म पानी हो या गंदा पानी हो वहाँ पे तैरने ना जाए। नाक में पानी जाने से रोकने के लिए नाक क्लिप का इस्तेमाल करें, यानी कि अगर आप कहीं स्विमिंग करने जा भी रहे हैं तो नाकों पे क्लिप लगाएं। पूल, झील, नदी के स्वच्छ पानी में क्लोरीन का उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध जल स्रोत में नहाने या खेल कूद करने से बचें। किसी भी अनजान जगह, मैं तो यही कहूंगी कि हम सभी कभी भी नहाने के लिए या स्विमिंग करने के लिए ना जाएं। कुछ दिनों के लिए हम स्विमिंग को अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी को संक्रमण और इससे बचने के उपाय तो पता चल गए होंगे, लेकिन मैं इस अमीबा के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये अमीबा कैसा होता है और इसका जो जीवन चक्र है वो कैसा चलता है। सो इसे जानने के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर वापस से मैं आती हूँ, आपको ले चलती हूँ ब्रेन ईटिंग अमीबा की दुनिया में।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: हे क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
5: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
6: ये बच्ची बहुत दिन का भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो।
7: बाबा कल की रोटी चल जाएगी?
6: हाँ हाँ हाँ बहनी, कल की रोटी बिल्कुल चल जाएगी।
7: तो फिर कल आना।
8: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: मिक्सिंग इन द

0: ओ छोटे सुन,
1: पता
0: तू इस साल के कैलेंडर को टच करेगा ना, तो तुझे शॉक लग जाएगा।
1: वो भला क्यों?
0: तुझे नहीं पता?
1: क्या नहीं पता?
0: कि शॉक क्यों लगेगा?
1: क्यों लगेगा?
0: वो इसलिए क्योंकि वो करंट कैलेंडर है ना।
2: श्रोताओं, वापस से मैं आ चुकी हूँ आप सभी के पास ब्रेन ईटिंग अमीबा से जुड़े कुछ प्रश्न और उसके जीवन को लेके कुछ बात करने। कुछ प्रश्नों की बात करूँ तो आमतौर पे लोग ये पूछ सकते हैं कि यदि मुझे मस्तिष्क भक्षी अमीबा यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमण हो जाए तो मैं क्या करूँगा। तो भाई आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो अपना टेस्ट करवाना है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना है और खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि मस्तिष्क भक्षी अमीबा आपके शरीर में ना जाए तो आपको गर्म मीठे पानी में सक्रिय रहने या अपनी नाक की नसें साफ रखने के लिए बुखार या सर दर्द हो तो तुरंत सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। कभी भी ऐसी स्थिति में खुद का इलाज खुद ना करें। अगर मैं बात करूं तो ये मस्तिष्क भक्षी अमीबा यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होने वाली किसी भी बुखार से जुड़ी हुई बात को इतना खतरनाक समझना होगा जितना कि हम किसी महामारी को समझते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये अमीबा आम अमीबा नहीं है, ये हमारे शरीर में अगर गया तो हमारे सीधे सीधे मस्तिष्क पे ही असर डालेगा और खास तौर पे ये हमारे मस्तिष्क के ऊतकों को खाता है, ना कि हमारे रक्त से ये भोषण या फिर भक्षण करता है। अब मैं बात करूंगी इसका रूप कैसा होता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करूं कि ये कैसा दिखता होगा माइक्रोस्कोप में, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये अमीबा है तो ये बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जीवी है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है, इसमें कोई बहुत सारी कोशिकाएं नहीं होती, एक कोशिकीय जीव है जिसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है नेगलेरिया फाउलेरी। ये आकार बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, याद रखिएगा इसका आकार एक जैसा नहीं रहता है। खास तौर पे ये हमारे शरीर के अंदर जाने का जो तरीका होता है वो बदलने के लिए ये अपना आकार बदलता रहता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको इस अमीबा के बारे में जागरूकता फैलानी होगी। जो भी लोग आसपास गंदे पानी में, या मैं गंदे पानी की बात ना भी करूं, हमें तैरने का शौक होता है तो हम कभी भी गांव या घर कहीं भी जाते हैं तो नदियों में या तालाबों में तैरने का एक लुत्फ ही उठाते हैं, मजा आता है, लेकिन उस मजे के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जान पे बन पड़ा है। तो अपनी जान बचानी है तो हमें ब्रेन ईटिंग अमीबा की जो कहते हैं ना सेंसिटिविटी को समझना होगा। तो मुझे लगता है आप सभी को इन चीजों के बारे में काफी अच्छी जागरूकता मिल चुकी है और आसपास के लोगों को भी आप बताएंगे कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है। हो सकता है हमारे आसपास के भी जल स्रोतों में हो, हमें ना पता हो, पर पता करने के लिए हमें विज्ञान शाला तो सुनना ही पड़ेगा ना, और सुनने के बाद सिर्फ सुनना नहीं है और लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना, अपने शरीर में मौजूद किसी भी लक्षण को कभी भी अन्यथा ना ले, कभी भी किसी आम बुखार को ज्यादा दिन तक शरीर में ना रहने दे। आप सभी को पता है कि मौसम में परिवर्तन आने से हमारे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, लेकिन अगर मौसम के परिवर्तन का जो असर है हमारे शरीर पे ज्यादा दिन तक दिख रहा है, इसका मतलब कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। हमें किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के लक्षण को आम लक्षण नहीं मानना है, हमें अपने शरीर को लेके सजग होना है और लोगों को भी सजग करना है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको घर में रखी दवाइयां कभी ना दें, और खास तौर पे 5 साल के अंदर के अगर बच्चे हैं तो एक बार यूज की हुई मेडिसिन उन्हें दोबारा ना दें, कोशिश करें कि ना दें। इमरजेंसी केसेस की बात है तो आप एक्सपायरी डेट देखकर ही उन्हें दवाई दें, और ये छोटे मोटे जो कहते हैं ना कि प्रारंभिक उपचार हैं, ये आपको बड़े से बड़े संक्रमण से बचा सकते हैं। इसी के साथ दे आरजे बिना को इजाजत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान 39.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे थे अगर कुछ ज्ञान का खजाना, तो डेफिनेटली आप सुन रहे थे विज्ञान शाला।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
10: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: अरे ओ मेरे प्यारे शिष्य सद्गुणी
1: जी गुरुदेव,
0: कबीर का कोई दोहा तो सुनाओ।
1: अभी सुनाता हूँ। कबीर तेरे दुनिया में कैसे कैसे हैं ईशु, कोई मांगे कपड़ा लता तो कोई मांगे टिशू टिशू टिशू।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

0: सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल, आप सभी को आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेशली 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला। फिलहाल आज नहीं है आरजे बीना वाला, आज की शाम हम बिताएंगे आपके साथ और उम्मीद है कि आपका भी साथ भी मिलेगा। और जैसा कि बीना जी ने बताया था कि वो मंगलवार को लव स्टोरी कवर करती हैं, तो आइए कुछ लव स्टोरीज की तरफ ही बढ़ेंगे, कुछ प्रेम कहानियां, कुछ किस्से, कुछ यादें, कुछ ऐसा जो हृदय की गहराइयों तक उतर जाए। बात मोहब्बत की करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। तो जी हाँ, तरन्नुम के साथ आपसे बातचीत होगी और छोटी छोटी कई सारी लघु कथाएं जिनमें प्रेम झलकता हो, जिसमें रूहानियत हो, जिसमें आत्मीयता हो, कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका भी साथ हमको मिलता रहेगा। अगर आपका साथ मिलता रहेगा तो हमको लगता है कि ये जो हमारी कहानियां हैं ये थोड़ी सी और प्रासंगिक हो जाएंगी और रोचक लगेंगी। आपकी उपस्थिति हमारे उत्साह को और बढ़ाएगी। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं। भाई मनु सर गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। भाई शुभ संध्या, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे वहां जबरदस्त होंगे। तो चलिए पहले तो प्रेम कहानियां हम लोग सुनते थे, वो किससे सुनते थे, मतलब कहानियां दादी और नानी की कहानियां अगर आपने सुनी होगी तो। तो क्यों ना जब हम किस्सों की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ ऐसे किस्से से शुरुआत करें जो हमने अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से, अपने फोर फादर्स से सुनी हो। और ऐसा ही एक गीत

मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ऐसे ही गीत से करूँ जिस गीत में कोई बता रहा हो कि मेरे नाना कहते थे और क्या कहते थे, वो क्या बताते थे। जी हाँ, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले हम उन गीतों की तरफ बढ़ेंगे जिन गीतों को किसी ने गाया और ये बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, वो क्या कहते थे। और अगर ऐसे गीत पर, ऐसे नगमों पर आवाज़ आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की मिल जाए तो शायद इसी को सोने पे सुहागा कहा जाता है। जी हाँ, आइए शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी शाम की। आज लव स्टोरीज का दिन है और हम आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी लव स्टोरी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म का नाम आप हमें बताइएगा और अगर आप पुराने गीतों के शौकीन हैं तो निसंदेह ये इस गीत को आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सुनते रहिए और रेडियो गन असली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। लेकिन फ़िलहाल ये प्यारा सा नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सभी के लिए।

जी हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं और आज है लव स्टोरी का दिन। चलिए आपको प्रेम कहानी सुनाते हैं। और अगर इस दुनिया में सबसे अच्छी प्रेम कहानी मुझे लगी तो वो ऐसी लगी कि प्रेम कहानी होने के बावजूद वो मुकम्मल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, अधूरी ही रह गई। और अच्छी बात यह है कि वो अधूरी प्रेम कहानी की तस्वीर हम लगभग लगभग हर घर में देख सकते हैं, और वो तस्वीर राधा और कृष्ण की है। शायद इससे अच्छा प्रेम देखने को कम मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो राधा जी से मिलने गए, माँ राधा से, तो देखा तो जा रहे हैं भाई, तो आप इस दुनिया के लिए एक इंसान है लेकिन किसी एक इंसान के लिए उसकी पूरी दुनिया हो सकते हैं। तो जब वो गए मिलने के लिए तो राधा ने कहा कि हमें भी साथ ले चलो कन्हैया, क्या दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है, रीत रिवाजों की, ये लो सिंदूर भरो मेरी मांग में, ले चलो मुझको। इतना कहना था कि भगवान कृष्ण जो है वो पीठ कर लिए अपनी राधा माँ की तरफ। राधा माँ ने कहा कि अरे आपने मुंह फेर लिया हमसे, क्या कारण है, क्या बात है। रोने लगी और जैसे रोते रोते जब कृष्ण ने माँ राधा की ओर देखा तो जो कृष्ण थे वो राधा बन चुके थे। उन्होंने कहा कि विवाह करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, हम और तुम तो एक ही हैं, किससे विवाह कर लूं, स्वयं से। अब माँ राधा मौन, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। सोचिए शायद इससे बड़ा एग्जाम्पल प्रेम का शायद ही कहीं खोजने से मिले, मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी है। और इसके पश्चात जब लौटे वो भगवान कृष्ण तो लोग कहते हैं कि मेला लगता था तो द्वारिकाधीश, तब तक वो बन चुके थे, छोड़कर गए और बहुत वर्षों के बाद वो लौटे। मेले का अवसर था, गोकुल में धूम मच गई कि कान्हा आ रहे हैं। तो जब ये पता चला तो माँ राधा की एक सहेली थी विशाखा, उन्होंने जाकर बताया कि राधा तेरा कान्हा आ रहा है। तो राधा जी ने कहा कि अभी जग भर आया है, अभी जग भर आया है, बाह भर आएगा तो मान लूंगी कि आ गया। जग भर आने का मतलब यह हुआ कि दूसरों तक पहुंचा है। हम में से जितने भी लोग काम करते हैं, बाहर निकलकर काम करते हैं, क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन अक्सर हम में से जब लोग घर पर पहुंचते हैं तो 50% पहुंचते हैं, बहुत अधिक पहुंचे तो 75% पहुंचे, क्योंकि ऑफिस की बात, दोस्तों की बात, कल क्या काम करना है, जो परिवार में हम पहुंचते हैं तो पूरे नहीं पहुंचते, आधे पहुंचते हैं जहां तक मुझको लगता है। तो हम लोग जग भर ही आ पाते हैं, बाह भर नहीं आ पाते परिवार में। राधा ने उत्तर दिया अभी तो जग भर आया है,
बांह भर आएगा तो मान लूंगी आगे। कहानी कहती है कि भगवान कृष्ण राधा से मिलने उनके द्वार पर पहुंचे तो माँ राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कान्हा को छुआ, स्पर्श किया, तो देखा जिस सर पर कभी मोर का पंख लगा होता था वहां राज मुकुट है। कहा, आ गए द्वारिकाधीश? कृष्ण ने कहा, रे राधा, मैं तुम्हारा कान्हा हूं, द्वारिकाधीश कैसे कह रही हो? अग्नि कहा, अगर आप कान्हा होते तो आपके सर पर मोर पंख होता, ये सोने का मुकुट है, कान्हा नहीं हो सकते। फिर जैसे स्पर्श किया और स्पर्श करते करते उंगली तक उनके हाथ गए। भगवान कृष्ण की तर्जनी को जब देखा तो उसने कहा, आ गए द्वारिकाधीश? कहा, मैं कान्हा हूं राधा। कहने, अगर आप कान्हा होते तो हाथों में बांसुरी होती, चक्र चलाते चलाते आपके ये हाथ कब द्वारिकाधीश हो गए आप समझ ही नहीं पाए। कान्हा नहीं है आप, आप जाइए, महाभारत के कई सारे युद्ध आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको लड़ना है। अब ऐसी स्थिति में जहां पर कोई वश नहीं चल रहा था और भगवान कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने जीवन में तीन बार रोए थे, एक सुदामा के साथ और एक यहां। तो उन्होंने कहा, जाओ भाई, अब आपको गीता कहनी है, गाओ, दुनिया को रिझाओ। और याद दिखेगा, जो गीत गा सकता है वही गीता गा सकता है, जो गीत नहीं गा सकता गीता गाना उसके बस की बात नहीं है। और गीता गाने के लिए आपको त्यागी होना पड़ेगा। त्यागी त्यागी जो कहे, गीता गीता होए। आप जल्दी जल्दी त्यागी कहिए, गीता अपने आप आ जाएगा। त्यागी त्यागी त्यागीता ना हो तो आप करके देखिए, त्यागी त्यागी कहिए, गीता गीता अपने आप हो जाएगा। यानी गीता कहती है कि त्यागी बनो। अगर आप त्यागी नहीं है तो आप गीता आपने पढ़ी फिर आपने गीता को जिया नहीं। भगवान कृष्ण के मुख से साक्षात निकली हुई गीता। तो जब माँ राधा ने कहा कि जाओ गाओ, आवश्यकता है अभी इस देश को आपकी, समाज को आपकी आवश्यकता है, मेरी मेरा क्या है, मैं तो सब कट ही गया लगभग लगभग। भगवान कृष्ण ने एक गीत सुनाया माँ राधा को, मतलब वास्तव में नहीं सुनाया, ये कवि की कल्पना है कि सुनाया होगा, कुछ ऐसा ही कहा होगा। और लव स्टोरी में मुझे लगता है कि अगर हम 16 कलावतारी को मान लें तो उनसे बड़ा शायद शायद ही कोई प्रेम करने वाला रहा होगा। कृष्ण ने राधा को जो सुनाया, जो कहा, वो मैं आपसे एक कविता के माध्यम से कहता हूँ। ये प्रेम कथा है राधा और कृष्ण की। अब दर्द देखिएगा, कविता का भाव देखिएगा और पहुंच पाइएगा तो गहराई तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा।

तो जब माँ राधा ने कहा कि गीत सुनाओ, जाओ गाओ, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि

दर्द देखिएगा। हम लोग नसीब वाले हैं कि अपनी माँ ने जिस माँ ने पैदा किया उसका प्रेम रस पिया है, स्तनपान किया है, दूध पिया है, वो तो भगवान होकर ये भी नहीं नसीब हुआ। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, पिछला जन्म कौन है? राम और सीता का है। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता, महासमर में रीता रीता, अकेले अकेले महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक

अब जीवन का हाल देखिए कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, छोटे से थे पूतना आ गई मारने के लिए। सोचिए सटकासुर वक्रासुर पर शुरुआत से ही आक्रमण, गेंद लेने गए तो नाग का मर्दन, कि बचपन से प्रभुता का भोजा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा न पहचानी। गाते ना अधरम मधुरम, सबने मेरे होंठ की मुस्कुराहट देखी लेकिन पीड़ा कोई नहीं पहचान पाया। इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अंतिम बंद कविता का कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, अपराध को सोचिए, एक तरफ नारायणी सेना अपनी ही सेना भेज दी कौरवों की तरफ और एक तरफ अकेले, कितना मुश्किल रहा होगा। सोचकर देखिए कि एक राजा के लिए कि वो अपने ही सैनिकों के साथ युद्ध कर रहा है, क्या था, एक तरफ हम रहेंगे और एक तरफ हमारी सेना, कुछ न कुछ दोनों को चाहिए था, तो नारायणी सेना दुर्योधन ले गया। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने खाया चोर हम ही कहलाए। माखन चोर केवल कृष्ण को कहा जाता है जबकि सब खाते थे, लेकिन अकेले चोर माखन चोर वही होते थे।

राधा कब तक गीत सुनाऊं। तो ये लव स्टोरी है, प्रेम प्रसंग है माँ राधा और भगवान कृष्ण का। अब एक मनुष्य की लव स्टोरी पर भी आएंगे, प्रेम कथा पर आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आपको गीत सुनवा दें। जी हाँ, हमारे साथ श्रीमती सविता शास्त्री जी जुड़ चुकी हैं। चरण स्पर्श आपको, शुभ संध्या। और कमल लैन जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग मनुष्य, शुभ संध्या आपको भी। और धर्मेंद्र लिखते हैं, जो मन को माल से बचाती है, पापा के डांट से मुझे बचाती है, वो कोई और नहीं, वो मेरी प्यारी दादी माँ कहलाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आइए अब चलते हैं, सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 एफएम है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में? क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जी हाँ, तो लव स्टोरी की संध्या में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। एक कहानी हमने सुनाई आपको जो सबसे अच्छी लगी हमको, प्रेम कथा राधा और कृष्ण की, माँ राधा और भगवान कृष्ण की। और अब चलते हैं दूसरी प्रेम कहानी की तरफ। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पर नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था और वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन, अपने चेहरे से ये नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगीं, धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगीं। लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने उस लड़की को बताया कि उस दीवाने की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के के कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया और अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया। अब जो 4 पंक्ति बोल रहा हूं वो मोहब्बत की गहराई है, अगर आप इसे महसूस कर पाए। तभी कब्र में से आवाज आई, ए दोस्त, ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। जी हाँ, इसके पहले उस लड़की के चेहरे पर नकाब हुआ करता था, आज इस लड़के ने हमेशा के लिए नकाब ओढ़ लिया, मिट्टी में जाके लेट गया। रोज नया एक किस्सा कहने वाले लोग कहते कहते खुद किस्सा हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेजुबा हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। जी हाँ, तो जो कहानियाँ सुनाते हैं वो खुद कहानी बन जाते हैं। और अनिल शास्त्री जी, दादा चरण स्पर्श करते हैं आपको, कैसे हैं आप? शुभ संध्या, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मुस्तफ़ा जी सऊदी से आदाब करते हैं आपको। कमल नैन जी को भाई गीत पसंद आ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए भाई चलते हैं और आपको सुनाते हैं एक प्यार सा गाना और मिलते हैं इस मीठे से नगमे के तत्काल पश्चात। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, अगर फूलों का महत्व है तो फूलों के साथ पत्थरों का भी अपना एक महत्व है। तन्हाइयों की राह में घर बना लिया, सुना है यहाँ पत्थरों को पूजते हैं लोग, इस वास्ते इस दिल को पत्थर बना लिया। जी हाँ, कहीं कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि न चाहते हुए भी हम अपने दिल को पत्थर बना लेते हैं। और कहा जाता है कि समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, मिटाए वेदना को जो उसी का सम्मान होता है, सृजन में चोट खाता जो हथौड़ी और छेनी से, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जब तक पत्थरों को भी छेनी और हथौड़ी का साथ नहीं मिलता, वे मूर्त नहीं बन पाते। ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है जी, जो ज़िंदगी की कड़वाहटें हैं, जो यादें हैं, जो हमारा माजी है, वो हमें परेशान करता है। और जब परेशान करता है तो हम क्या कहते हैं कि इस भरी दुनिया में अब अपना दर्द हम किससे बयां करें। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दर्द बयां करता हुआ ये प्यारा सा नगमा आप सभी के साथ। और इसके साथ ही अब आपसे लेते हैं अनुमति, और इसके बाद कार्यक्रम चलेगा भाई आपकी फेवरेट आरजे सिंपल, वो इज़ नॉट सो सिंपल, आपकी फरमाइश लेने के लिए हो चुकी हैं तैयार। जी हाँ, चलते चलते ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आसमान वाले ने चाहा तो अभी ठीक 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन।

वेलकम इन योर शो पर माय शिव विद यू आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो स्टे ट्यून्ड। जब किसी को बहुत चाहते हैं और चाहते हैं हद से ज्यादा पार हो जाती है।

0: स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए और आज मंगलवार के दिन अपनी फरमाइशी में सब कुछ मंगल कर देने के लिए प्यारा सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी है दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, सबलू सावंत मुंबई से, अनुष्का श्रावस्ती से, मुस्तफा साउदी से, जुगल किशोर वर्मा मीन्स चक्कू दादा एमपी से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, राही नवाबों के शहर लखनऊ से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, उदालक शर्मा मनकापुर से, शुभम यादव शायद गोंडा से, रूपाली एन दीपाली गोंडा से, नवीन राजपूत जी एमपी से, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, अरमान पटेल नगर गोंडा से, सबीहा गोंडा से, चांदनी गोंडा से, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो फरमाइशी में। और चलिए एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। सो दोस्तों, पहली फरमाइश तो है प्रमुख कुमार जी की लुधियाना से, और प्रमुख कुमार जी को लुधियाना से सुनना है गाना सपने में रात में आया मुरली वाला री, और मेरे मन में बस गया श्याम जपू मैं माला री। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हम सब के बचपन वाला श्याम जी का लिफाफा एल्बम का, हमारे प्रमुख कुमार की फरमाइश पर, जो कि वेरी वेरी वेरी डिवोशनल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से। सो दोस्तों, ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: राधा,
0: अरे ओ राधा,
1: देख तेरा कान्हा तुझे पुकार रहा है।
2: राधा, ओ राधा।

हमने एंजॉय किया है ये सुपर डुपर डुपर हिट डिवोशनल सॉन्ग हमारे प्रमुख कुमार की फरमाइश पर जो कि है लुधियाना से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। एंड दोस्तों हमारे पास में जानते हैं किसकी फरमाइश है अगली। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा की सऊदी से, और मुस्तफा को सऊदी से सुनना है गाना अल्ताफ रजा का। सो एंजॉय करते हैं। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे, और तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुस्तफा की फरमाइश पर जो की है सऊदी से। दोस्तों नो डाउट ये गाना भी मेरी प्लेलिस्ट का है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

क्योंकि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या ही निभाओगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने और अल्ताफ प्रजा ने और इसी के साथ में मुस्तफा जी ने जो की है सऊदी से। चलिए चलिए चलिए चलिए एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी एक चीज कि इस गाने को सुनने के बाद में मैं मुस्तफा जी से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने दुश्मन को बहुत याद किया करते हैं। क्यों जनाब, अपने दुश्मन को बहुत याद किया करते हैं हम, उन्हीं के दिए जख्मों को आबाद किया करते हैं। क्या खूब, सही कहा ना। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना आंखों में मोहब्बत। सो एंजॉय करते हैं अजय देवगन रवीना टंडन का ये गाना, गैर पिक्चर का, सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज में अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र दीपेन राजस्थान से।

प्यार तुझे कर लूं चाहत का महीना है। हमने एंजॉय किया है ये गाना अनुष्का की फरमाइश पर जो कि है श्रावस्ती से। लेकिन अनुष्का मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आप प्यार तुझे कर लूं चाहत का महीना है, सो चाहत का क्या कोई स्पेसिफिकली महीना होता है? अगर कौन सा महीना होता है चाहत का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें से कोई भी महीना अगर होता है चाहत का तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और अगर होता है चाहत का महीना सो क्या उसी महीने में चाहत होनी चाहिए, उसी महीने में चाहत मिलनी चाहिए और किसी महीने में चाहत मिलनी नहीं चाहिए? जैसे कि मौसम डिसाइडेड है पतझड़ के लिए, ठंडी के लिए, गर्मी के लिए, है ना, हर एक चीज़ के लिए, ऐसे चाहत के लिए भी समय डिसाइडेड है। वाह, इस गाने ने पहली बार मुझे बताया है, अभी तक मुझे नहीं पता था। मुझे तो ऐसा लगा था कि चाहत उसका तो कोई समय ही नहीं होता है, जब दिल ने चाह लिया वही चाहत आ गई ना। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों जग्गू दादा की, और हमारे जग्गू दादा को हमारे जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। सो एंजॉय करते हैं इलाका मूवी का ये गाना मोहम्मद अजीज आशा भोसले जी की आवाज में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आवाज विकास गोंडा से रवि आपका स्वागत है, और महेंद्र देपेन राजस्थान से वेलकम इन योर शो, जिशान वेलकम इन योर शो फ्रॉम गोंडा स्टेट।

मेरी आंखें जहां तक देखें तेरा ही चेहरा नजर आता है। हमने एंजॉय किया है मोहम्मद अजीज और आशा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ, हमारे एमपी से जग्गू दादा की फरमाइश पर। चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि बिना कहे ना मुझे ऐसा लगता है कि अगला गाना जो अगली फरमाइशी गीत को प्ले करना होता है ना, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा। अब एक चीज़ मुझे और नहीं समझ में आ रही है दोस्तों, कि चाहे गाना हो, चाहे बातें हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे दुख हो, चाहे रोना हो, चाहे हंसी हो, चाहे खुशी हो, ये सब कुछ मुझे जल्दी डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है। और मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आती कि

तेरे आशिक बने आशिकी का मजा आ गया। हमने एंजॉय किया है ये गाना राही की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। उनको सुनना है गाना जिंदगी 100 बरस की। सो किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा आवाज पिक्चर का राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

कि जिंदगी 100 बरस की सही, जिंदगी का भरोसा नहीं। और वैसे जिंदगी का नहीं भरोसा, जैसे जिंदगी का अभी तक हमको भरोसा नहीं रहता था, वैसे तो अब लोगों को इंसान का भरोसा नहीं रहता। क्यों? आपको तो मेरे से बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, आपको मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, कि आपका लोगों को लेके क्या राय है, मतलब आपकी लोगों को लेके क्या राय है, आपकी अपनों को लेके क्या राय है, आपकी गैरों को लेके क्या राय है, और आपकी समाज को लेके क्या राय है, मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश है सबलू सावंत की मुंबई से, उनको सुनना है सुपर फास्ट हनुमान चालीसा। सो एंजॉय करते हैं शंकर महादेवन की आवाज में हमारे मंगलवार के दिन में हमारे बजरंगबली जी का, हमारे हनुमान जी का सुपर फास्ट चालीसा। सबलू सावंत की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आप सबके कष्ट को हरे हमारे संकट मोचन हनुमान। जय बजरंगबली।

राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु सियावर रामचंद्र की जय। हमने एंजॉय किया है ये डिवोशनल सॉन्ग हनुमान चालीसा हमारी सबलू सावंत की फरमाइश पर जो की है मुंबई से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवास विकास गोंडा से। और आवास विकास गोंडा से धर्मेंद्र मोहन को सुनना है गाना मस्त बहारों का मैं आशिक। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये नगमा है ओल्ड इज गोल्ड और आप जानते हैं आवाज किसकी है, आवाज है मोहम्मद रफी जी की। सो एंजॉय करते हैं ये सुनहरा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

सर पे है कसम, मैं जो चला गया सनम ये रुत भी चली जाएगी। मतलब सनम को प्रूफ भी किया जा रहा है, तो सनम की ही कसम को खाकर प्रूफ किया जा रहा है कि मैं अगर चला गया तो दिक्कत का विषय हो जाएगा, है ना। मतलब बताओ, सनम भी सोच में पड़ गया होगा कि बलि का बकरा भी बनाना है, तो सनम को ही बनाना है और उस बलि के बकरे को बनाकर प्रूफ भी किसको करना है, उस बलि के बकरे को ही प्रूफ करना है। क्या बात है ना। कुछ लोग होते हैं दोस्तों आपके यार जो सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह कि कहीं से कुछ भी निकाल लेंगे अगर निकालने की जरूरत पड़ी ना। इतना प्यारा गाना था, ओल्ड इज गोल्ड नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में। लेकिन एक झटके में एक शब्द ने सब पूरे मतलब को चेंज कर दिया ना। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश हमारे पास में थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास से। अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से। उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना चोरी चोरी मैंने भी तो अखियां मिलाई रे। अच्छा जी, तो हम भी तो अखियां मिलाते रहते हैं और चोरी चोरी चुपके चुपके क्या सामने सामने भी हम अखियां मिलाने को आपसे बोलते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अखियां मिला किससे रहे हैं। वो चाहता है सामने वाला अगर आप अखियां मिलाएं तो 24 घंटा अखियां मिलाए खड़े रहे, ना चाय की जरूरत, ना पानी की जरूरत, ना नाश्ते की जरूरत है, नेचर्स कॉल की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर सामने वाला नहीं चाहता है कि आप अखियां मिलाएं, सो प्लीज अपने दिल की भावनाओं को अपने दिल में कैद कर लें, क्योंकि एक तरफा प्यार जिंदगी भर एक तरफा ही रह जाएगा और एक तरफा अखियां मिलाना ही जिंदगी भर अखियां मिलाना ही रह जाएगा। इससे अच्छा आप जाके वहां अखियां मिलाएं जहां सामने वाला आपसे अखियां मिलाना चाहता है। सो एंजॉय करते हैं उदालक शर्मा की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। बिन सर पैर की बातें करानी हो तो कोई आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल से करा ले। क्यों, सही कहा ना।

फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी उदालक शर्मा की तरफ से, जो कि है मनकापुर से। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शुभम यादव की गोंडा से, और शुभम यादव को गोंडा से सुनना है गाना मोहब्बतें पिक्चर का। पैरों में बंधन है और पायल ने मचाई शोर, इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार नगमा हमारे शुभम यादव की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तमन्ना आरजू, आपका स्वागत है। मुमताज अंसारी जी गोंडा से आपका भी स्वागत है। निशा पटेल नगर गोंडा से वेलकम इन योर शो। आपको पता है निशा मुझे बहुत प्यार करती हैं, मतलब सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये जब भी मेरे पास फ़ोन करेंगी हेलो हुआ सब कुछ हुआ ठीक है, लेकिन ये अपनी फरमाइश पहले नहीं बताएंगी। मैं पूछूंगी भी कि पहले फरमाइश बताइए अपनी, लेकिन उसके पहले ये पूछेंगे कि मैम आप ठीक तो हैं ना, मैम आप कैसी हैं, मैम मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो निशा आई लव यू टू। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है शुभम यादव की, और इंजॉय करेंगे सुपर डुपर हिट नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पैरों में बंधन है, हमने एंजॉय किया है मोहब्बतें का ये नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की फरमाइश की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। सो ये तो फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी मोहब्बतें मूवी के गाने की, शुभम यादव की तरफ से, जो कि है लखनऊ से। बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है गाना, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और क्या कहूँ कि शर्म से हैं लब सिले हुए। एंजॉय करते हैं ये एआई वर्जन सिलसिला मूवी का, ये रोमांटिक गाना हमारे नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। कमल नयन आपका स्वागत है, और अक्षय सिंह आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिलसिला का, हमारी नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर जो कि है एमपी से, और ये था एआई वर्जन। ओरिजिनल वर्जन भी बहुत खूबसूरत है। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी। सो एंजॉय करेंगे झनकार बीट्स के साथ में रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में ये वाला एवरग्रीन नगमा सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर, और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ दोस्तों हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। जाते जाते प्रमुख कुमार जी ने लुधियाना से कुछ पेश किया है। इनका कहना है कि पहले गानों को देती थी छोटी सी छुट्टी, सुनने वालों की रह जाती थी दिल में खट्टी मीठी कचौटी। अब पूरा गाना प्यारी मुस्कान और शानदार अंदाज, सिंपल मैम आपकी प्रस्तुति पर दिल से है नाज। अच्छा जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंजॉय कर लेते हैं ये वाली फरमाइश, मिलते हैं सीधे 9 बजे। सो जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है अभी तक, कब पेट पूजा करोगे? सोने के पहले पेट को थोड़ा समय चाहिए होता है खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। सो आप भोजन खा लो, फिर आराम से एंटरटेनमेंट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फरमाइशी गीत सुनेंगे, बाहरी गजल सुनेंगे, फिर उसके बाद में स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे, है ना दोस्तों? शरीर भी फिट, हम भी फिट, और खुशियां ही खुशियां। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: बाद आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत और यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
5: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
6: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title The Voice of Justice is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

क्या खूब कहा है कि खामोशी को खामोशी ना समझो, इसमें बहुत कुछ छुपा होता है। खामोशी को खामोशी ना समझो, इसमें बहुत कुछ छुपा होता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र दीपेन राजस्थान की से, और महेंद्र दीपेन को राजस्थान से सुनना है गाना पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। से एंजॉय करते हैं उदित नारायण अलका यामिनी की आवाज में महेंद्र दीपेन की फरमाइश पर ये वाला गाना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, मनीष शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा। से एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवा देने वाली बातों को सुनते रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी महेंद्र बीन की राजस्थान से, और महेंद्र को राजस्थान से सुनना था। ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना पा लिया है, प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरी सोना तुम मेरी हो ना। सो एंजॉय करेंगे अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले महेंद्र दीपेन का राजस्थान से कहना है कि नागौर की धरती से भेजा संदेश गोंडा स्टेशन पर आज रंग लाया है, मेरी दिल की फरमाइश को आज सिंपल मैम ने बड़े प्यार से बजाया है। गूंज उठा जब वो पसंदीदा नगमा, तो महेंद्र का दिल झूम उठा, सुरों की इस मीठी महफिल ने आज की शाम को बेहद खास बनाया है। सो ये लाइंस थी महेंद्र की तरफ से, एंजॉय करते हैं आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

खोएगा और मेरी तरह तू भी एक दिन किसी को खोएगा। बात खोने की नहीं होती है, इंसान हैं हम, मैं भी इंसान हूँ, आप इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। और अगर मैंने इतनी छोटी सी उम्र में ये सीख लिया है दोस्तों कि जिंदगी का नाम ही है कुछ पाना और कुछ खोना, सो ये सबको समझ में आ चुका होगा शायद। क्योंकि अगर मेरे जैसा इंसान मेरे जैसा केयरलेस इंसान मेरे जैसा अपने में

तुझको ही चाहे है वो मेरे यार। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज में हमने एंजॉय किया है संग्राम का ये गाना, जिशान की फरमाइश पर। और जिशान ने डेडिकेट किया था इस गाने को अरमान को, और अरमान है पटेल नगर गोंडा से। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है दोस्तों गाना, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनुराधा और उदित नारायण की आवाज में हमारी निशा की फरमाइश पर, जो की है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। फिलहाल दिल देने का और दिल लेने का सिलसिला हम यही खत्म करना चाहेंगे। क्यों निशा, सही कहा ना मैंने? इतना लंबा गाना, इतना ज्यादा म्यूजिक ही हो गया कि पूरा का पूरा समय तो आपकी म्यूजिक नहीं ले लिया। कोई बात नहीं, कल एंजॉय कर लेंगे आपकी। आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो आप सभी के पास रोज आती है। सो दोस्तों, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश, जिसके साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से लेना चाहेगी अलविदा। सो हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है हमारे मुमताज अंसारी जी की, जो कि है गोंडा से। उनको सुनना है गाना, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा और कुछ भूल गए कुछ याद रहा। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। और रवि का कहना है कि ऐ दोस्त, तेरी वजह से मेरा दिल टूटा है, तेरा भी रिश्ता तेरी गर्लफ्रेंड से तुड़वाऊंगा, वेट कर कुछ दिनों फिर मजे से कुरकुरे खाऊंगा। अच्छा जी, तो आपका ब्रेकअप उनकी वजह से, उनका ब्रेकअप आपकी वजह से, कर्मा, कर्मा इज अ डैश डैश डैश। सो एंजॉय करते हैं अगली परमाइश, लेते हैं अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। So guys, have a very very very great night. Take care of yourself and your family as well. Someone special का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी और एक छोटे से सरप्राइज के साथ में मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800 8919 144416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 144416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें यार आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गैनसली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल चुका है बहारे गजल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी ये गजलों की दुनिया है, ये बहारों की दुनिया है, ये ख्वाबों की दुनिया है, ये ख्यालों की दुनिया है, ये अपनों की दुनिया है, बेगानों की दुनिया है, चांद तारों की दुनिया है और इस दुनिया में खो जाने का एक अलग सा खुमार है, एक अलग अजब सा नशा है। रात का वक्त लगभग हो गया, 9:30 बज चुके हैं और रात बहुत प्यारी होती है। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं, आप सभी जानते होंगे कि उन फूल कौन से होते हैं। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो चाहने वालों की इस रात में, इस शाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन, वंदन, इस्तकबाल। हम बहुत ही मशगूल और मगनून हैं आप सभी के कि आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और जी आप की उपस्थिति हमारे उत्साह को और बढ़ाती है। जी हाँ, तो किसी शायर के बारे में बात करते हैं और हम जब बात करते हैं तो न्यू की ईंट की बात करते हैं। म्यूजिक इन्होंने दिया, फिल्म ये थी, डायरेक्टर ये थे, इनके ऊपर फिल्माया गया, इन्होंने गाया, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो वो जो शब्दों का जादूगर होता है ना, वो कहीं उस भीड़ में अकेला तनहा सा गिरा होता है जिसके दम पर वो फिल्म हिट होती है। जी हाँ, कई सारी फिल्में तो अपने गीतों की वजह से, अपने गजलों की वजह से हिट हुई, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता और उन्हीं की बात करने के लिए हम आते हैं कि वो कौन से शायर, वो कौन से कवि, वो कौन से दानिश्वर जिन्होंने क्या लिखा और अमर कर गए। हम सभी को पता है कि होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ये फिल्म प्रेम गीत का है, राजबब्बर पर फिल्माया गया, जगजीत सिंह साहब ने गाया, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को हो सकता है पता हो कि होठों से छू लो तुम ये गीत लिखा किसने। तो ये वास्तव में न्यू की ईंट वही है जो लिख रहे हैं, बाकी सब भी महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन उन महत्वपूर्ण स्तंभों में एक स्तंभ वो भी है जो दिख नहीं रहा है, जमाने की नजर जिस पे नहीं जा रही है, लेकिन वास्तव में काम उसने बड़ा किया है। तो जी हाँ, इसीलिए हम कलमकारों की बात करते हैं। कहा जाता है कि जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे, जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कलम में हथियार से ज़्यादा ताकत होती है। तो आइए बात करते हैं कलमकारों की और आज किस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं ये आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस संगीत में अंतराल के पश्चात। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शास्त्री जी, चरण स्पर्श है, गुड इवनिंग आपको भी, शुभ संध्या। और इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ हैं, आदाब करते हैं आपको। सविता शास्त्री जी भी हैं, चरण स्पर्श आपको भी और शुभ संध्या। जी हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और अच्छी बात यह है कि ये जो गज़ल गा रहे हैं इन्होंने एक गीत बहुत अच्छा गाया था और जब इन्होंने वो गीत गाया था तो मुझे ये लगा था कि ये मुकेश कुमार की आवाज़ है।
बाद में मुझे पता चला जब मैं फिल्म देख रहा था, मतलब तो जब ये गीत गाया गया तो मुझे लगा ये मुकेश कुमार की आवाज़ है। लेकिन बाद में कई वर्षों के बाद हम जान पाए कि ये मुकेश कुमार की आवाज़ नहीं है, और मैं आश्चर्यचकित था कि ऐसा एक व्यक्ति जिन्होंने गीत को गाया और आवाज़ एकदम मुकेश की निकाल दी, वो कौन है। जी हाँ, उन्हीं की गाई हुई एक गज़ल आपको सुनाते हैं, और आप जरा अनुमान करके बताइए, गूगल मत कीजिएगा, खाली आवाज़ को पहचानिएगा, और आवाज़ को पहचानने के बाद हमको बताइएगा कि ये गज़ल किसने गाई है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, सुपूजा जी हमारे साथ आ चुकी हैं। हेलो सर। जी हाँ, तो आप गूगल नहीं करना है, आपको आवाज़ पहचाननी है और पहचान कर बताना है कि इस गज़ल को गाने वाले कौन हैं। देखते हैं आप इस आवाज़ को कहाँ तक गेस कर पाते हैं। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, और ये आवाज मैंने पहली बार तब सुनी थी जब मैंने ये गीत सुना था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। आप इस आवाज को, उस आवाज को मैच कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, उसमें लगेगा एकदम मुकेश कुमार ही हैं। बिलहाल बिल्कुल सही जवाब दिया हमारी श्रीमती सविता शास्त्री जी ने कि मनहर उदास। जी हाँ, बिल्कुल मनहर उदास की आवाज़ है ये। मोहम्मद मुशीफ जी हैं, गुड इवनिंग डियर आर जे मनु भाई, कैसे हैं आप? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मोहित वर्मा जी हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं भाई, क्या बात है मनु सर, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और आइए अब आपको ले चलते हैं, आज शायर की बात नहीं करेंगे, आज शायरा की बात करेंगे। बहुत ही कम उम्र में, कुछ लोग कहते हैं कि जो जिंदगी होती है उसमें आपने कितने लम्हे जिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कितने लम्हे गुजर गए वो दूसरी बात है, जीना है कितने लम्हे गुजर गए वो दूसरी बात है, जीना दूसरी बात है। तो बहुत ही कम उम्र में हिमांशी बावरा ने एक बहुत ही बड़ा नाम मुशायरों की दुनिया में हासिल किया। अभी मुश्किल से मुझे लगता है 25-26, ज्यादा से ज्यादा 30 साल की बेटी है, और यहां से लेकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के वे देश जहां हिंदी और उर्दू समझी जाती है वहां पर उनको बावकार शायरा की हैसियत से बुलाया जाता है। और बहुत ही सादे लफ्जों में, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को कह देने का हुनर हिमांशी बावरा के पास है। मोहब्बत, मोहब्बत पर लिखती हैं, आशिकी पर लिखती हैं, दोस्ती पर लिखती हैं, वतन पर लिखती हैं। उन्होंने लिखा, तुम आओगे नुमाई से सामान देखकर, तुम आओगे नुमाई से सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। एक बार मनोवर राणा को मैं सुन रहा था कानपुर में, तो उन्होंने ऐसी कोई बात हुई तो किसी ने शेर पढ़ा कि मोहब्बत में मिला क्या और हमने दिया बहुत कुछ, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मोहब्बत बनियों के बस की बात नहीं है। वहाँ पर बनिए से उनका सेंस ये था कि जो ये समझते हैं कि हमने इतना दिया और इसके बदले हमको क्या मिला, अगर कुछ दे करके कुछ लेने की भावना आपके मन में है तो फिर आप मोहब्बत के लायक नहीं हैं। बहुत प्यारी पंक्ति थी उनकी। तो वही हिमांशी बावरा कहती हैं, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। ठीक है, नुकसान होगा देखा जाएगा। नखरे उठा रही हूं तुम्हारी तलाश के, नखरे उठा रही हूं तुम्हारी तलाश के, रुकती नहीं हूं रास्ता वीरान देखकर। अक्सर रास्ते वीरान होते हैं तो इंसान रुकता है, लेकिन कहते ना, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स। अब यहां पर गौर कीजिएगा, द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। कभी कभी हमको जिस इंसान से अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं अगर वो उन पर खरा न उतरे तो हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। हिमांशी बावरा कहती हैं कि सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। हमने सोचा था कि मेरी मुसीबत में आप काम आएंगे, लेकिन आपने भी मुंह फेर लिया। वो मेरा, वो तेरा लम्स, लम्स मतलब नजदीकियां,

वो तेरा लम्स, वो तेरी बाहों की खुशबुएं, लौटी हूँ जैसे कोई गुलिस्तान देखकर। पंक्तियाँ आप शानदार हैं, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। पशेमान मतलब शर्मिंदा। आप दुनिया में कुछ भी गलत करके सबकी नजरों से बच सकते हैं, लेकिन अफसोस स्वयं की निगाहों से नहीं बच सकते। तो तू लाख बेवफा है, उसको एहसास तो होगा ही, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। जो खो गया था फिर से किसी मोड़ पर मिला, जो खो गया था फिर से किसी मोड़ पर मिला, हैरान हो गया मुझे हैरान देखकर। और अंतिम पंक्तियां कि जाहिर न हो, जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है। आपने एक अलग दुनिया बसा ली, हमको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन जाहिर ना हो, इसे कहते हैं रिश्ते, जाहिर ना हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देखकर। जी हाँ, नका सबकी निगाहें आपको देख रही हैं, जरा सतर्क रहिएगा। जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी गज़ल हिमांशी बावरा जी गाती हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं। और आइए अब आपको ले चलते हैं मखमली आवाज़ के पास। और जब मैं मखमली आवाज़ कह दूँ तो सिर्फ एक आवाज़ है जो मुझे बहुत मखमली लगती है, और वो है जगजीत सिंह साहब की आवाज़। फिल्म का नाम शरफरोश, और पर्दे पर हैं जगजीत सिंह साहब। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल। अभी आपने मन हर उदास को सुना, अब आपको ले चलते हैं जगजीत सिंह साहब की दुनिया में इस प्यारी सी गज़ल के साथ। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन।

जी, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। और वास्तव में मतलब कहा जाता है कि अगर आपने हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपको दिल टूटने का एहसास नहीं हुआ, तो आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा गंवा दिया। जी हाँ, हमारे साथ भाई विशाल बेदर्जी जी भी हैं, लिखा है गुड इवनिंग मनु सर, श्रोतागण में हम भी हैं हमेशा की जैसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और राधे जी हैं, हेलो सर जी गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। और लवली सिंह गोंडा से हैं, गुड इवनिंग मनु सर जी, जी हाँ आपको भी शुभ संध्या। और गज़ल अच्छी लगी मोहम्मद मुसीब जी को, जी बिल्कुल, नासिरुद्दीन साहब पर्दे पर, जगजीत सिंह की आवाज़ और आमिर खान के साथ सोनाली बेंद्रे, बहुत ही प्यारी गज़ल। अभी पंक्ति चली कि इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। हिमांशी बावरा ने इश्क किया और समझा कि जिंदगी क्या है। उन्होंने कहा कि दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, मतलब मुब्तला का मतलब होता है कि दुखी हो जाना, मोहब्बत में गम भी बहुत है ना। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में। वो रो रहा था ऐसे, वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। इंतकाल मतलब जब हम किसी की डेथ हो जाती है तो जाते हैं, तो वो इंतकाल कहते हैं उर्दू में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, निगहबानी मतलब कि आप ही हमारे रक्षक हैं। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रे गुजार दूंगी तेरे देखभाल में। और पंक्ति है कि वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, अटकी हुई हूं मैं मगर उसके सवाल में। अब मतलब मोहब्बत अपनी पाकीज़गी की चरम सीमा पर है, पैरामाउंट पर है। उसने लिखा कि लोग तो लोग हैं लोगों की तरह देखते हैं, लोग तो लोग हैं लोगों की तरह देखते हैं, और हम हैं तुझे बच्चों की तरह देखते हैं। बच्चों जब किसी को देखेगा तो छल कपट की दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं क्या होता है। लोग तो लोग हैं लोगों की तरह देखते हैं, और हम हैं तुझे बच्चों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं, हम तो देखते हैं कि अगर ये पेड़ कटा तो इस पर कितने परिंदे का घर चला जाएगा। हम इतने अच्छे ख्याल के हैं, लेकिन दुनिया हमको समझती है कि ये पेड़ काटने वाली है, जबकि हम पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं आंखें मेरी, मैं जो देखूं तो झपकती नहीं आंखें मेरी, मतलब आंख मिली तो पलक नहीं झपकती। और हजरत जिसको वो देख रही हैं, और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी, तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं, और तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे। कज़ा होता है जब आप नमाज 5 वक्त की होती है, और किसी वक्त की नमाज अगर छूट जाए तो कज़ा के साथ उसको पढ़ लिया जाता है। लेकिन वो कहती हैं कि तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे,
हम तुझे फर्ज नमाजों की तरह देखते हैं। मतलब आप में हमको रब दिखता है, ईश्वर दिखता है, और ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जी हाँ, आइए। और अब तो जब इंसान इस स्थिति में पहुंचता है तो फुर्सत के दिन वो ढूंढता है कि मतलब आज की लाइफ, आज का जीवन, आज की ज़िंदगी इतनी मसरूफियत है हमारे पास, इतनी व्यस्तता है कि फुर्सत नहीं मिलती है। आइए इसी फुर्सत की बात पर आपको भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर इन दोनों की गाई हुई एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल मौसम फिल्म में है, आपको सुनाते हैं। सुनिए ये प्यारी सी गज़ल। हम आपसे मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे

0: जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं तो लगता है तेरी महफिल है। जी हाँ, और अब कभी कभी इंसान जानता भी है और उसके बावजूद मोहब्बत कर बैठता है। लिखा कि क्या होगा मोहब्बत का असर जानता हूं मैं, क्या होगा मोहब्बत का असर जानता हूं मैं, दिल पर ही बरसेगा कहर जानता हूं मैं, यादों में मेरे हर पल दिन रात तुम ही हो, यादों में मेरे हर पल दिन रात तुम ही हो, पर तुझको नहीं है खबर जानता हूं मैं। दिल की तसल्ली के लिए बैठा हूं किनारे, दिल की तसल्ली के लिए बैठा हूं किनारे, ना आएगी मोहब्बत की लहर जानता हूं मैं, कितने ही दफा तुमसे मिलने की दुआ की, कितने ही दफा तुमसे मिलने की दुआ की, ना भूलूंगा वो शामो सहर जानता हूं मैं, नाकाम हसरतों को लिए जी रहा हूं मैं। देखिए हसरतें इस दुनिया में, जरूरतें भिखारियों की भी पूरी हो जाती हैं और हसरतें नवाबों की भी अधूरी रह जाती हैं। शाहजहां का एक सपना था कि जहां ताजमहल है उसके ठीक सामने वो सफ़ेद संगमरमर से था, वो चाहते थे कि सामने जो है वो ब्लैक वाले पत्थर से उनकी समाधि बने, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो ख्वाहिशें तो अधूरी ही रहती हैं। नाकाम हसरतों को लिए जी रहा हूँ मैं, एक दिन तो पीना है जहर जानता हूँ मैं। जी हाँ जानता हूँ, लेकिन फिर भी इश्क पर जोर नहीं। चलते हैं मानसी बावरा की तरफ। उन्होंने कहा, वो देखता है मुझको मगर बेहया नहीं, वो देखता है मुझको मगर बेहया नहीं, मैं देखने लगूं तो मुझे देखता नहीं, तकदीर मेरी हो गई उस फूल की तरह, तकदीर मेरी हो गई उस फूल की तरह, मुरझा गया तो फिर कभी फूला फला नहीं, उठ के तुम्हारे दर से कहाँ जाऊंगी भला, उठ के तुम्हारे दर से कहाँ जाऊंगी भला, इस शहर में कोई भी मुझे जानता नहीं, बेहतर तो अब यही है तुझे भी मैं छोड़ दूं, बेहतर तो अब यही है तुझे भी मैं छोड़ दूं, इस रास्ते के आगे कोई रास्ता नहीं, और तन्हाइयों के बीच रही मैं तमाम रात, तन्हाइयों के बीच रही मैं तमाम रात, फिर भी तेरा ख्याल मुझे छू सका नहीं। हालांकि उन्होंने कहने की कोशिश ये की है कि तन्हाई रही और आप नहीं रहे, जबकि मुझे लगता है कि जब हम तन्हाई में होते हैं तो हम बिल्कुल तन्हाई में नहीं होते, उस समय किसी की याद हमारे साथ होती है। और मेरा अपना मानना यह है कि गले लगाने से पहले ये काम करना था, जब लगा लिया गले से तो आजमाना क्या। पहले जो है वो इंसान परख ले और इसके पश्चात सफर की शुरुआत करे तो शायद सफर कुछ आसान हो सकता है। जीवन साथी बनाने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। जी हाँ, और जब बात यहाँ आ चुकी है तो फिर मुझे एक प्यारी सी गज़ल याद आ रही है। जी हाँ, लता जी की आवाज़ है इसमें और उनके साथ एक मेल की भी वॉइस है। अब आपको बताना है कि वो मेल वॉइस कौन है। फीमेल वॉइस हमने आपको बता दी है कि लता जी हैं भाई। और आइए अब सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा नगमा, ये प्यारी सी गज़ल। सुनते रहिए और रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: बिजलियां चमके कभी।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमत लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, चमन जी हैं भाई मेरे पसंद का गीत ये रहा। धर्मेंद्र मोहन जी ने आवाज़ सुकाश से बहुत सारे दिल दिए भाई, और बहुत देर के बाद हमको दिखाई बड़े। प्रबल मिश्रा जी भाई, सर राधे कृष्णा जी, आपको भी राधे राधे। कहाँ रहते हैं प्रभु, थोड़ा समय से आइए आप। जी हाँ मिश्रा जी, जब बुलाऊंगा तब कायनात जी आएंगी। देखिए कायनात जी भी आ चुकी हैं भाई। और अब जी हाँ, धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं, ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, मिट जाते हैं उनकी हस्ती, क्या चलती है रेल पर कश्ती से कश्ती। सर जी क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लिखा आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। कल है बुधवार, अपने खजाने को रखिएगा तैयार, आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मिलेंगे आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी महफूज। देवांश का ट्रांसफर अचानक ही चमोली में हो गया। यहाँ पर आकर उसे नया एक्सपीरियंस हो रहा था। एक तो पहाड़ी इलाका, उस पर जान पहचान का कोई भी नहीं। पहाड़ी इलाकों में मकान बहुत दूर दूर होते हैं। दिल्ली जैसे शहर में रहकर देवांश को ट्रैफिक का शोर, गानों की आवाजें और लोगों की बातचीत के तेज स्वर सुनने की आदत सी पड़ गई थी, लेकिन यहाँ तो किसी को देखने के लिए भी वो तरस जाता था। जिस किराए के मकान में वो रह रहा था वो दो मंजिला था। ऊपर वाले घर से कभी कभी एक बच्चे की मीठी सी आवाज सुनाई देती थी, पर कभी भी आते जाते किसी से सामना नहीं हुआ था उसका। उस दिन संडे को नाश्ता करके वो बाहर लॉन में कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। पास ही मेज पर उसका लैपटॉप रखा हुआ था। वो सुबह की कॉफी के साथ अपने ऑफिस का काम निपटा रहा था, तभी अचानक मेज पर रखे उसके कॉफी के मग में छपाक की आवाज आई। देवांश ने कप उठाया और एक तरफ जाकर घास पर उसने वो कप उड़ेल दिया। इतनी देर में पीछे से एक बच्चे की प्यारी सी आवाज सुनाई दी, अंकल मेरी बॉल। देवांश ने मुड़कर बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पास रखे टिश्यू पेपर से उसकी बॉल को साफ करने लगा। लाइए अंकल, मैं कर लूंगा, कहते हुए बच्चे ने अपना नन्ना सा हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन देवांश ने बॉल को अच्छी तरह से साफ करके उस बच्चे को थमा दिया। वो बच्चा अपनी बॉल को ऐसे अलट पलट के देख रहा था जैसे वो कितनी कीमती चीज हो। फिर उसने कुछ रुआसे से स्वर से बोला, मेरे पास सिर्फ एक ही बॉल है, ये खो जाती तो। उसकी उदासी दूर करने के लिए देवांश बोला, अरे तुम्हारी बॉल तो कॉफी में स्विमिंग करने आई थी। मुझे लगता है तुमने अपनी बॉल को नहलाया नहीं था, इसीलिए वो कॉफी में स्विमिंग करने आ गई थी। पर कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें टू और बॉल्स दिला दूंगा और किसी से भी तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा कि तुमने मेरी कॉफी में बॉल फेंकी थी, वो गलती से तुम्हारे हाथ से छूट गई थी ना। हाँ अंकल, मैं हाथ में पकड़कर ऊपर से आपको देख रहा था और वो पता नहीं कैसे गिर गई, बच्चे ने भोलेपन से कहा। अगर गलती से खो जाती तो पापा तो आपको दिला देते ना। अच्छा वो सब छोड़ो, आज से हम फ्रेंड्स।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है महफूज। अब तक आपने सुना, देवांश का ट्रांसफर चमोली हो गया था। दिल्ली जैसे शहर में रहने के बाद चमोली में उसे बड़ा खाली लगता था। कम लोग, कम ट्रैफिक, पहाड़ों पे दूर दूर घर। जिस घर में वो रहता था उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक बच्चा रहता था। एक दिन उस बच्चे की बॉल नीचे गिरी और उसके बहाने देवांश ने उससे दोस्ती कर ली। अब आगे उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से बोला और देवांश से हाथ मिला लिया।
1: वैसे अंकल, मेरे पापा तो बहुत दूर रहते हैं, कभी मुझसे मिलने भी नहीं आते।
0: ये कहते हुए बच्चे की आंखें डबडबा गईं। देवांश को बच्चे पर तरस आ गया। प्यार से उसके गालों को थपथपाते हुए बोला,
2: चलो हम दोनों अभी बाजार चलते हैं, मैं दिला दूंगा तुम्हें 2 नहीं 4 बॉल्स।
0: अच्छा, पहले अपना नाम तो बताओ।
1: अंकल, मेरा नाम चुन्नू है।
0: तो चुन्नू चला जाए बाजार।
1: चुन्नू बोला, पर अंकल मेरी मम्मी नहीं मानेगी ना।
0: उसने नाक चढ़ाते हुए ऊपर अपने घर की तरफ इशारा करके कहा,
2: अरे आपकी मम्मी को मैं मना लूंगा, हम दोनों तो अब दोस्त बन गए हैं ना। देखो, तुम्हारा नाम चुन्नू और मेरा नाम देवांश, चलो तुम्हारे घर चलते हैं।
0: कहते हुए देवांश ने चुन्नू का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे पर खड़ी आकर्षक महिला शायद चुन्नू की माँ ही थी और उसका इंतजार कर रही थी। देवांश को देखकर वो एक बार तो सकपकाई, फिर मुस्कुराकर अंदर आने का इशारा करके आगे चल दी। भीतर आकर देवांश ने उसे अपना परिचय दिया, पर उसके बारे में वो सिर्फ इतना ही जान पाया कि उसका नाम सोनल है और पास ही के एक स्कूल में पढ़ाती है। चुन्नू ने बॉल वाली पूरी घटना अपनी मम्मी को एक सांस में बता दी और साथ ही ये भी बता दिया कि अंकल ने उसको पूरी 4 बॉल्स लेके देने का प्रॉमिस किया है। सोनल रसोई में चली गई और देवांश चुन्नू से बातें करने लगा। उन लोगों ने साथ बैठकर शाम को बाजार जाने का प्रोग्राम भी बना लिया। सोनल को भी बाजार में कुछ काम था, तो पहले तो वो साथ जाने में थोड़ा सा झिझकी, पर देवांश के आग्रह करने पर वो तैयार हो गई। तीनों शाम को देवांश की कार में बाजार गए और रात को बाहर से ही खाना खाकर घर लौटे। बाजार में चुन्नू देवांश की उंगली पकड़े ही रहा। देवांश भी कई दिनों से अकेलेपन से जूझ रहा था, इसलिए उसे भी उन दोनों का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। सोनल के चेहरे पर आई चमक को देवांश साफ साफ देख पा रहा था। वो खुश था कि पड़ोसी एक दूसरे के साथ किस तरह परिवार की तरह एक साथ हैं। उस दिन से चुन्नू अक्सर देवांश के पास आ जाता, देवांश भी कभी कभी उनके घर जाकर बैठता। अब उसे चमोली भी अच्छा लगने लगा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है महफूज। अब तक आपने सुना, देवांश का ट्रांसफर चमोली हो गया था। दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में रहने के बाद इस सुनसान से पहाड़ी इलाके में उसे बहुत अकेला लगता था। जहां पर वो रहता था उसके ऊपर वाले फ्लोर में एक महिला अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसकी बॉल नीचे गिरी और देवांश ने उससे दोस्ती कर ली और फिर उसके बहाने उसकी दोस्ती उसकी माँ से भी हो गई। धीरे धीरे दोनों परिवार एक दूसरे से काफी घुल मिल गए। अब आगे, देवांश को सोनल ने बताया कि उसके माता पिता हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ससुराल पक्ष के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया। देवांश भी अक्सर उनको अपने माता पिता और छोटी बहन के बारे में बताता रहता। पिता दिल्ली में एक बिजनेसमैन थे और छोटी बहन अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती थी। एक दिन देवांश के ऑफिस में बाहर से कुछ लोग आए थे और वो उनके साथ व्यस्त था। तभी उसके फोन पर बार बार चुन्नू के फोन से फोन आने लगा। देवांश ने 3-4 बार तो फोन काट दिया, पर बार बार फोन आने पर वो अपनी मीटिंग छोड़कर बाहर गया और उसने बात की। चुन्नू को तेज बुखार था। सोनल ने डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिला दी थी और उसके पास ही बैठी हुई थी, पर चुन्नू को तो जैसे दवाई नहीं सिर्फ देवांश ही चाहिए था। वो बार बार बस देवांश को बुलाने की ही जिद कर रहा था। देवांश ने मीटिंग में जाकर सबसे सॉरी कहा और अपनी जगह किसी और को बैठाकर ऑफिस से सीधा चुन्नू के घर पहुंच गया। उसे देखते ही चुन्नू खेल उठा। सोनल ने भी मन ही मन राहत महसूस की। चुन्नू ने देवांश को उसके घर कपड़े बदलने तक नहीं जाने दिया और उस रात देवांश को चुन्नू के घर पर ही ठहरना पड़ा। सोनल ने इंसिस्ट किया तो देवांश ने रात का खाना भी उन लोगों के साथ ही खाया। तेज बुखार की वजह से चुन्नू की नींद बार बार खुल रही थी, इसलिए सोनल और देवांश उसके पास ही बैठे रहे। अपनेपन की एक डोर दोनों को बांध रही थी। अपने जीवन के बीते हुए दिन दोनों एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। देवांश का जीवन तो सामान्य ही बीता था, पर सोनल एक भयंकर तूफान से गुजरी थी जो उस रात देवांश को पता चला। कुछ सालों पहले वो अपनी दादी के घर हिमाचल के एक बहुत दूर गांव में गई थी। उनका गांव एक्चुअली में एक टूरिस्ट प्लेस था जहां पे हर साल हजारों टूरिस्ट आते जाते हैं। एक रात वो एक पहाड़ी कच्चे रास्ते पर टहल रही थी, तभी अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। पीछे से किसी ने उसका मुंह दबोच लिया और उस रात के बाद उसकी जिंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। अंधेरे में वो उस दानव का चेहरा भी नहीं देख पाई और वो तो उसे एक बेजान गुड़िया सा वहीं छोड़कर चला गया। उस काली भयानक रात का एक खूबसूरत सच था चुन्नू, जो अब सोनल की जिंदगी का एकमात्र सहारा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है महफूज। अब तक आपने सुना देवांश चमोली आ गया था और यहाँ उसे बहुत अकेलापन लगता था। फिर एक दिन उसकी दोस्ती उसके घर के ऊपर वाले फ्लोर में रहने वाले परिवार से हो गई, जिसमें सिर्फ एक माँ और उसका छोटा सा बेटा चुन्नू था। जब वो थोड़ा करीब आए तो उसे सोनल की दर्द भरी दास्तां पता चली। प्यारा सा चुन्नू किसी प्यार की नहीं बल्कि एक काली रात के हादसे की निशानी था। अब आगे माता पिता ने सोनल पर चुन्नू को अनाथ आश्रम में छोड़कर शादी करने का बहुत दबाव बनाया, पर वो नहीं मानी। लोग तरह तरह की बातें बनाकर उसके माता पिता को तंग न करें, इसलिए वो घर से दूर रहने का निर्णय करके यहाँ आ गई। चुन्नू उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा बढ़कर था। चुन्नू का बुखार कम हुआ तो दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। देवांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रह रहकर सोनल के बारे में सोच रहा था। कितनी दर्द भरी जिंदगी जी रही थी वो, जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। इतनी पीड़ा सहकर भी चुन्नू का पालन पोषण ऐसा किया था कि वो बाग का खिला हुआ फूल लगता था, टूटकर मुरझाया हुआ नहीं। एक आदमी के इतने गंदे रूप को देखने के बाद भी तुम मुझसे अपना दर्द बांट पाई? तुम शायद ये जानती हो कि हर पुरुष एक सा नहीं होता। तुम्हारे इस विश्वास के लिए मैं तुम्हारा जितना सम्मान करूं वो कम है। खुद इतना नेगेटिव जीवन जी रही हो और दूसरों में पॉजिटिविटी भरती हो। तुम कितनी अच्छी हो सोनल। सोनल को मन ही मन इस तरह सराहते हुए देवांश उस दिन से उसका सबसे बड़ा फैन बन गया। 2-3 दिनों में चुन्नू का बुखार कम होने लगा। ऑफिस के अलावा देवांश अपना सारा समय चुन्नू के साथ ही गुजारता। सोनल के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी इसलिए बाहर से सामान वगैरह भी वही ले आया करता था। उसका सहारा सोनल के लिए एक परिपक्व वृक्ष के जैसा था। फूलों से लदी बेल सी वो उसके बिना अधूरा महसूस करने लगी थी खुद को। स्त्री एक लता ही तो है जो पुरुष का आश्रय पाकर और भी खिलती है और निस्वार्थ होकर सबके लिए फलना फूलना चाहती है। चुन्नू का बुखार उतरा तो काम वाली बाई बीमार पड़ गई। दोनों घरों का काम वही तो करती थी। उसने सोनल को फोन करके सूचना दी और ये बात जब देवांश को वो देने पहुंची तो सिर पकड़ के बैठ गया। उसी रात को उसकी माँ और उसकी बहन आने वाले थे। अब तो लगता है उन दोनों को यहाँ आकर काम ही करना पड़ेगा, देवांश ने निराश होकर सोनल से कहा। तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं सब देख लूंगी। सोनल के इन शब्दों से देवांश को कुछ राहत मिली और वो घर की चाबी सोनल को सौंपकर ऑफिस चला गया। शायद देवांश सोनल पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करने लगा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है महफूज। अब तक आपने सुना देवांश की दोस्ती सोनल और उसके बेटे चुनमुन से हो गई और फिर उसे पता चला कि सोनल बिल्कुल अकेली है। उसे तो चुन्नू के पिता का नाम तक नहीं पता। फिर एक दिन देवांश की माँ और बहन आने वाले थे और देवांश को ऑफिस में बहुत जरूरी काम था, तो सोनल ने उसके घर की और उसकी माँ और बहन के स्वागत की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। अब आगे देवांश की माँ और बहन उसकी अनुपस्थिति में ही घर पहुंच गईं। सोनल के रहते उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देवांश के आने पर भी सारा घर संभला हुआ था। दो दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। जाने से एक रात पहले सोनल ने सबको अपने घर खाने पर बुलाया। घर की साज सज्जा, खाने का स्वाद, रहने का सलीका, सब कुछ, हर चीज ने देवांश की माँ को बहुत इम्प्रेस किया। देर रात वो लोग उसके घर से अपने यहाँ वापस आए और अपने घर आकर भी वो सोनल और चुन्नू के बारे में ही बातें कर रहे थे। मौका पाकर देवांश ने सोनल की जिंदगी की दुख भरी कहानी दोनों को सुनाई और सोनल को घर की बहू बनाने का आग्रह किया, लेकिन उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी माँ ने भी इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। वहां से तो मना करके माँ लौट आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके दिमाग में भी पूरे वक्त सोनल और चुनमुन का चेहरा घूम रहा था और साथ में उनकी दर्द भरी दास्तान। आखिर क्या कसूर है सोनल या चुनमुन का? सोनल को क्यों ये अधिकार नहीं कि वो भी बुरे समय से निकलकर नई खुशियों को गले लगाए? क्यों वो उस शैतान का दिया हुआ दुख ढोती रहे जिंदगी भर? सोचते हुए माँ ने एक फैसला किया और रात में ही देवांश को फोन मिला दिया। हाँ माँ, क्या हुआ, इतनी रात को फोन क्यों किया? देवांश ने उठते हुए फोन उठाकर कहा। माँ बोली, बेटा छुट्टियां प्लान कर ले और अगले महीने आ जा, मैंने तेरी शादी तय कर दी है। जिस महीने में जन्मदिन होता है उसी महीने में शादी हो तो बहुत अच्छा होता है। ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर आना, तारीख में तुझे जल्दी बता दूंगी। अरे माँ, क्या हो गया है आपको? मेरा बर्थडे तो अभी पिछले महीने ही था ना। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? देवांश बोला। मैं कब कह रही हूँ कि दूल्हे का ही जन्मदिन पड़ना चाहिए, दुल्हन का भी तो हो सकता है ना। सोनल के जन्मदिन के बारे में चुन्नू ने बताया था मुझे। देवांश को एक बार तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर आश्चर्य और खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, पर माँ सोनल से पूछने तो दीजिए। मैंने पढ़ ली थी उसकी आंखें बेटा, माँ ने छोटा सा उत्तर दिया। सुबह होते ही देवांश सोनल के पास पहुंच गया। चुनमुन सोकर उठा ही था, देवांश को देखते ही उससे लिपट गया। देवांश चुनमुन से बोला, आज तुम्हारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है ना, क्या मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा पापा बनकर? चुनमुन प्यार से देवांश के गाल पर चूमने लगा और सोनल अंदर के कमरे में चली गई। एक कोने में हाथ जोड़कर खड़ी सोनल की आंखों से टप टप बहते आंसू सारी सीमाएं तोड़ देना चाहते थे। सोनल मुड़कर वापस आई तो देवांश के आगे सिर झुका लिया। देवांश ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मानो कह रहा हो, कह दो आंसुओं से कि दूर चले जाएं, तुम्हारी आंखों में अब ये कभी नहीं आएंगे, तुम मेरी हो, अब सिर्फ मेरी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी महफूज। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सोम फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

दोस्तों, इतनी सारी गानों की आवाज सुन के अभी तो आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या लेके आई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ कि आज मैं

मैं जिस शो में आपको लेके आई हूँ और जिस सिंगर की बात करने वाली हूँ वो है क्या। दरअसल हम बात करने वाले हैं जो 2025 में जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। जी हाँ, शो चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी आरजे अनोखी। और आज हम उस सिंगर की बात करने वाले हैं जो अपने दौर में बहुत ज्यादा चर्चित रही, कभी अपने गानों को लेके तो कभी उन गानों के तरीकों को लेके, और आज भी वो उतनी ही प्रिय हैं हम सभी के बीच। वो हैं कौन, इनकी क्या कहानी है, बाकी सब क्या है ये जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक सॉन्ग हो जाना चाहिए। सुन लेते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, ये खनक वाली आवाज, जी हाँ, है किसकी, आप जानने को बिल्कुल उतावले होंगे और कुछ लोग तो जान भी गए होंगे जिनकी ये फेवरेट रही है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे भूले बिसरे गीत में पूर्णिमा जी की। जी हाँ, जिनका बचपन का कुछ और ही दौर रहा है, और जब ये अपने जवानी में आई, मतलब जब इनके करियर का दूसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ, तो वो दौर कुछ और ही रहा। जी हाँ, 90 के दशक की खोज कही जाने वाली पूर्णिमा जी, 9 साल की उम्र में ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था, फिल्मी सॉन्ग्स, और जैसे कि ये गाना

तेरा वादा। और 70 के दशक में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत ही फेमस रही हैं पूर्णिमा जी, और बचपन में इनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, जो कि बड़े होकर इन्होंने खुद ही बदल दिया। और इसी तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारी गॉसिपिंग भी रही इनकी लाइफ को लेके, क्योंकि जब ये बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो इनके गाने का तरीका कुछ और था, और जब ये बड़ी हुई तो इनके गाने का तरीका कुछ और ही रहा।

कहा जाता है पूर्णिमा के गाने फिल्मों को हिट करवाने में बहुत हेल्पफुल माने जाते हैं, जो बेहद अपीलिंग और खनकदार माने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ डबल मीनिंग और अश्लील गानों के लिए इन पर आरोप भी लगे और बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, जैसे सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, कबूतरी बोले कबूतर से, ऐसे ही बहुत सारे गाने इन्होंने गाए, जिसके चलते इनको वो हक और सम्मान नहीं मिला जो बाकी क्लासिक सिंगर्स को मिलना चाहिए था या मिला। और इनके दशक में हमारे पास में हमारे 90s के जो सिंगर्स रही हैं, अलका याग्निक जी हो गई, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी बहुत सारी दिग्गज कलाकारा रही हैं, फिर भी इन्होंने अपना मकाम बखूबी हासिल किया। तो आइए बढ़ते हैं इन्हीं के एक और गीत की।

अब हमारी पूर्णिमा जी पूरे 64 साल की हो गई हैं और पिछले ही साल यानी 2025 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। पूर्णिमा जी ने क्षेत्रीय भाषा के अलावा नेपाली, मराठी आदि भाषाओं में भी गीत गाए। ये केवल बॉलीवुड की सिंगर नहीं है बल्कि इन्होंने हर तरह के गानों को गाया है, जैसे कि गजल, भाव गीत या फिर बच्चों के गीत, जो कि फिल्मी दुनिया से अलग होते हैं। और भारत की शान जिसमें ये जज भी रही हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको कोई फिल्म फेयर अवार्ड आज तक नहीं मिला। कारण बस वही गानों की आलोचनाएं और इनका गाने का तरीका। फिलहाल इनके एक पुत्र श्रेष्ठ भी हैं जिनका नाम है निशान चंद्रा, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो चलिए इन्हीं के एक और गाने को सुनते हैं और फिर आते हैं और इनकी कहानी के बारे में जानते हैं।

पूर्णिमा, जिनका असली नाम सुषमा श्रेष्ठ है, एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने 1990 के दशक में बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए हैं और सुषमा श्रेष्ठ के नाम से बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें इतनी शक्ति हमें देना दाता और बोल राधा बोल जैसे गानों के लिए जाना जाता है और उन्होंने कई सारी भाषाओं में अलग अलग गाने गाए हैं। इनका जन्म 6 सितंबर 1960 में हुआ और ये नेपाल से बिलोंग करती। शुरुआत इन्होंने बाल कलाकार के रूप में 1971 की फिल्म अंदाज से की, जिसमें है ना बोलो बोलो ये वाला गाना इन्होंने गाया था। 90 का दशक इनके लिए वर्चस्व का दशक रहा, जब इन्होंने बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में एंट्री ली। 1971 की फिल्म अंदाज से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जिसमें इन्हें गाना मिला था है ना बोलो बोलो ये वाला गाना। जी हाँ, इनके कई सारे प्रसिद्ध गीत रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस माने गए कुछ गीत हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बोल राधा बोल, तुतु तु तु तु तारा, जो कि आई थी 1992 में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मूवी था अंकुश और मूवी आई थी 1986 में। इसके अलावा हीरो नंबर 1 का टाइटल ट्रैक, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मैंने पैदल से जा रहा था उन्हें मोटर से आ रही थी, शाम है धुआं धुआं, गजब सीटी मारे, सजन रे झूठ मत बोलो, ऐसे बहुत सारे गाने गाए, जिसकी वजह से माना जाता है इन्हीं गानों के कारण कहीं ना कहीं मूवीज भी हिट होती थी उस वक्त, जब पूर्णिमा जी के गाने उन मूवीज में हुआ करते थे। तो चलिए आनंद लेते हैं कुछ और गीतों का, जिसको गाया है पूर्णिमा जी ने।

अब बात करते हैं पूर्णिमा जी के निजी जीवन के बारे में, जिसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है मुझे। कारण है कि इन्होंने अपनी जानकारी आज तक कभी किसी से साझा ही नहीं की। इनकी शादी के उपरांत ये बिल्कुल से अपने करियर पे स्टॉप लगा के बैठ गई थी। माना जाता है कि जब इनकी शादी हुई उसके बाद इन्होंने ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस दिया, ना ही किसी गाने से इनका कोई ताल्लुक रहा। लेकिन इनकी अगर निजी जीवन की बात करें तो इनका एक बेटा है जिनका नाम है निशांत चंद्रा, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है। और बाकी अगर इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने ज्यादा कभी किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी इंटरव्यू में इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो चलिए बढ़ते हैं इन्हीं के एक और गीत की ओर और पुनः से आते हैं आज के

दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जान लिया पूर्णिमा जी के बारे में, लेकिन एक चीज तो रह गई, वो है पुरस्कार। जी हाँ, इनको पुरस्कार की बात करें तो वैसे तो कोई खास पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन जो पिछले वर्ष मिला, जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो उस पुरस्कार ने इनके बाकी पुरस्कारों को छोटा साबित कर दिया। फिलहाल जान लेते हैं फिर भी किन किन पुरस्कारों के लिए इन्हें नामांकित किया गया। सन 1974 में फिल्म फेयर सर्वोत्तम महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार, जो की था सॉन्ग तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, आ गले लग जा मूवी से, इसके लिए इन्हें नामांकित किया गया। दूसरा है 1978 में दिया गया पुरस्कार, जो कि है फिल्म फेयर सर्वोत्तम महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, जो आया था हम किसी से कम नहीं मूवी के लिए, और इसमें भी ये केवल नामांकित होके रह गई। फिर तीसरा गाना आया जो सन 1998 में इन्हें मिला। पुरस्कार का नाम है जी सिने पुरस्कार, गाना है सोना कितना सोना है, जी हाँ, हीरो नंबर वन का टाइटल ट्रैक, इसके लिए भी ये केवल नामांकित होकर रह गई। आखिरकार वो दिन आया जब इन्होंने कोई पुरस्कार अपने हाथ में प्राप्त किया, वो था 2017 का वक्त, और इनका पहला पुरस्कार है मोहम्मद रफी पुरस्कार, जो इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति जी ने प्रदान किया। फिर 2020 में चित्रपट संगीत महोत्सव पुरस्कार, जो कि जीवन गौरव पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ये पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर इन्हें मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि इन्हें प्राप्त हुआ सन 2025 में। तो अंततः अपने जीवन के दौर में इतना कुछ करने के उपरांत इनको ये गौरव प्राप्त हुआ। चलिए, इन्हीं के द्वारा गाए गए कुछ फेमस सॉन्ग्स में से एक मैं आपको सुनाती हूँ।

तो दोस्तों, आज हमने जिस सिंगर की बात की वो हमारे बॉलीवुड की पहली बाल कलाकारा के रूप में जानी जाती हैं। इन सभी के बावजूद इनका दौर दो भागों में बटा रहा, मतलब इनका करियर दो भागों में डिवाइड हुआ, एक तो बाल कलाकार के रूप में और दूसरा यूथ की हार्ट टोन मानी जाने वाली, जी हाँ, पूर्णिमा जी। और बचपन में इनका नाम सुषमा श्रेष्ठ रहा, बड़ी होकर इनका नाम पूर्णिमा पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए, कारण था इनके गाने का सलीका। और आलोचनाओं से काफी घिरी रही हमारी पूर्णिमा जी, पर अंततः बोलते ना कि अंत भला तो सब भला, अंततः इन्हें वो अवार्ड मिला जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में जो इन्हें प्राप्त हुआ। अब चलते चलते इन्हीं के एक गाने को मैं आपको बतौर तोहफा देती जा रही हूँ, तो एंजॉय करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे किसी और गायक को लेकर या किसी और टॉपिक को लेकर, जिसमें हम आपको वो दौर पूरा का पूरा याद कराने की कोशिश करेंगे आपके अपने शो भूले बिसरे गीत के साथ। बने रही है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो गैनेस्ट 89.6 FM के साथ। मुझे अब इजाजत दीजिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।